सुप्रभात। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई सन 2026 प्रातः के 5:59 होने को है। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार कुछ ही समय में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉ जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और

0: निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए, वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकैना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमरीका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना के आरंभ में लीजिए सुनिए समूह स्वर में मातृ वंदना।

इसी के साथ आज की वंदना अब संपन्न होती है। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद 6:35 पर खेती किसानी के कार्यक्रम में आज का विषय होगा मुर्गियों का संतुलित आहार। श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण होगा 6:40 पर। गायक स्वर होगा शोभा जोशी का और संगीत संयोजन होगा सतीश भाटिया का। आज का चिंतन आप सुनेंगे 6:50 पर। प्रातः 7:20 पर हिंदी महक कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर LC अनुरागी से हिंदी का विपाठ। फिल्मी गीत आप सुनेंगे प्रातः 7:30 पर, शाम 5:30 पर और रात 8:00। प्रातः 8:30 पर सुनिएगा संग्रहालय से के अंतर्गत अली सरदार जाफरी से अनूप सोनी की बातचीत। प्रातः 9:00 लोकरंग कार्यक्रम में कलाकार हैं ब्रजलता मिश्रा। पर सुनेगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति सहयोग होगा डॉक्टर सविता धमीजा का और प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की। पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम भवदीय सुनेगा 10:30 पर, प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की। बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर, इसमें बाल साथी सुनेंगे बाल मन से के अंतर्गत स्टूडियो में आए रियांश प्रजापति और अक्षांश प्रजापति से की गई बातचीत के अंश, साथ ही होगी रोचक जानकारी। संतकालीन सभा में शाम 6:00 भजन संध्या के कार्यक्रम में कलाकार हैं जगजीत सिंह। 6:15 पर सुनेगा कबीर अमृतवाड़ी का पहला भाग, गायन स्वर होगा डॉक्टर LC अनुरागी का। शाम 6:30 पर लोकधारा कार्यक्रम में कलाकार हैं जगदीश कुमार जोशी। 7:20 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे ग्राम सभा कार्यक्रम, इसमें सुनिएगा धारावाहिक चिट्ठियां देवर भौजाई की का पांचवा भाग, विषय होगा ऊर्जा संरक्षण। वाचक स्वर होगा प्रीति पित्रे का और प्रस्तुति होगी शंभुदयाल अहिरवार की। एक वार्ता सुनिएगा, विषय होगा किसानों की आय सृजन में मधुमक्खी पालन का योगदान। वार्ताकार होंगे डॉक्टर राम कुमार। आज की सीख का विषय होगा तन पे नैया लत्ता पान खाएं कलकत्ता। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित कार्यक्रमों की श्रृंखला में आप सुनेंगे दिन में 11:00 फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। 12:00 सुनिएगा आपकी फरमाइश कार्यक्रम। 12:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से। दिन में 1:00 का समय होगा महिला कार्यक्रम महिला सभा का। लोक संगीत सुनिएगा 1:30 पर, सुगम संगीत का प्रसारण होगा 1:45 पर। दिन में 2:00 सुनिएगा फिल्म संगीत। शाम 5:02 पर युवा साथियों के लिए युववाणी कार्यक्रम का अनुप्रसारण होगा। दिल्ली केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रमों में सुनिएगा 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम। 9:30 पर सुनेगा रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और 10:00

0: बजे सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद करा दें, आज प्रातः 8:30 पर सुनिएगा संग्रहालय से के अंतर्गत अली सरदार जाफरी से अनूप सोनी की बातचीत, और 9:30 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति सहयोग होगा डॉक्टर सविता धमीजा का और प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम भवदी सुनेगा प्रातः 10:30 पर, प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है खेती किसानी कार्यक्रम, इसमें आज का विषय है मुर्गियों का संतुलित आहार।
1: पंचो, आज हम अपन खा जानकारी दे रहे हैं खासतौर से उन पंचन के लाने जो उनके मुर्गी पालन कर रहे हैं। तो मुर्गी पालन करवे के लाने अपन जो जानबूझ हुई बहुत जरूरी है कि उनकी आहार व्यवस्था कौन प्रकार से कैसी करी जाए। भैया, अगर अपन मुर्गियन की उचित वृद्धि और अच्छे उत्पादन से लव चाहू थे तो उन्हें संतुलित आहार में भोजन देवो जरूरी है। अब इनमें सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा, लवण, विटामिन और पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अपन ने देखो हुए कि जो मुर्गी होती हैं उनके बिया दांत नहीं होते, वे जो अपना भोजन है वे जो पीसती हैं उन्हें चबाउती हैं, जो उको जो पूरा जो काम है वो आमाशय करते है। तो इसे जो अधिक रेशेदार वस्तुएं हैं उनको पाचन मुर्गी जो है ठीक से नहीं कर पाती है। तो अपन का जो है जो ज्यादा रेशेदार चीजें हैं उनको कम से कम मात्रा में उपयोग करने हैं भोजन के लिए। मुर्गी के आहार में मुख्यतः जैसे अनाज है, अनाजन की बनी और जो छोटी मोटी चीजें हैं, खरी है, मछली का चूर्ण है, मांस है, अस्थि चूर्ण है, दूध के उत्पाद हैं, लवण मिश्रण, विटामिन, ऐसे जो तमाम प्रकार के जो हरे चारे हैं छोटे उनको जो है उपयोग अपन कर सकते हैं। इके लाने अलग अलग से अगर अपने तक कम मात्रा में मुर्गी है तो उके लाने अलग विधि है। ज्यादा मात्रा में एक मुर्गी फार्म के रूप में अगर अपन जो है अपनी मुर्गियन का पाले हो तो उके लाने अलग प्रकार से अपन जो है आहार व्यवस्था बना सकते हो। हम अपन बता दें कि अपन कौन सी मात्रा में कितने तत्व की पूर्ति के लाने भोजन व्यवस्था अपनी मुर्गियन के लाने बनाने है। तो भैया, जैसे अपन ने मान लो पीलो मक्का लो, तो पीलो मक्का 25%, चावल 26%, जौ 7%, गेहूं की भूसी 7%, मूंगफली की खली 18%, मक्का ग्लूटेन चूर्ण 5%, मछली का चूर्ण भाप लगो भविष्य 6% और भाप लगो मांस को चूर्ण 3%, भाप लगो हड्डी को चूर्ण 1%, कैल्शियम 1.5% और नमक 0.5%। ई के अलावा विटामिन ए 2%, विटामिन बी 2 0.5%, विटामिन बी 3 0.3% और मैग्नीज सल्फेट को अपन खा अच्छी तरह से जो आहार अपन बना रहे हो इखा उपयोग करने हैं। कोनो भी आहार अपन ने बनाओ है उखा अच्छी तरह से जो है अपन तब बना सकते हैं जब जिस सभी तत्व में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, लवण है, एक निश्चित अनुपात में हमारे बताए अनुसार अपन उनको उपयोग करो। तो जो मुर्गी है अपनी, जब उन्हें सभी प्रकार के पोषक तत्व सूक्ष्म तत्व उन्हें मिले तो निश्चित है कि उनको विकास हुए। अपन ने भी ये देखो हुए कि एक प्रौढ़ मुर्गी जो है 100 से 120 ग्राम दाना एक दिन में खा जाते है। वही हिसाब से अपन का जो है इको उपयोग में लाने हैं। तो अपन क्या करने हैं कि जो मान लो सप्ताह के अनुसार अगर अपन इनको देखें तो अगर 1 से 2 सप्ताह तक के चूजा हैं, अपने बच्चा है मुर्गी के, उन्हें 14 से 18 ग्राम, 3 से 4 सप्ताह के हैं तो उन्हें 27 से 31 ग्राम, 5 से 6 सप्ताह के हैं तो उन्हें 40 से 50 ग्राम, 7 और 8 सप्ताह के हैं तो 55 से 64 ग्राम, और 9 और 10 सप्ताह के अगर भी हो गए तो 60 से लेकर 68 ग्राम, और 11-12 सप्ताह के हैं तो 72 से लेकर 75 ग्राम, 20 सप्ताह तक के हो गए हैं तो उन्हें 100 ग्राम। इस प्रकार से अपन खा बनाओ भाव अपनो सभी पोषक तत्व को मिलो भाव ई भोजन को उपयोग करने है। तो अगर कहूँ अपन ने हमारी बताई भाई बातन पे ध्यान देखें, अपनी मुर्गियन के लाने उचित आहार की व्यवस्था करी तो निश्चित है कि अपन उनको अच्छा उत्पादन ले पाओ। इतने भैया एक बात हम अपन खा जाओ और बता दें कि जो जन अपने चूजा होते ना उनमें 50% तक नर पक्षी होते हैं, तो जितने जल्दी हो सके अपन उनकी जल्दी से जल्दी पहचान करके उन्हें अलग कर ले। और ऐसी स्थिति में जबकि अपने जो नर पक्षी हैं

0: उनकी आयु अगर 12 से 16 सप्ताह की हो गई तो फिर उन्हें बेच दो चाहिए। कैसे भैया कि जब ज्यादा उम्र के जो पक्षी हो जाते हैं तो फिर बाजार में उनकी कीमत गिरन लगत है। गर्मी होवे पे अंडन की कीमत गिरन लगत है। तो ऐसी अवस्था में जो उन कम अंडा देवे वाली मुर्गी हैं उनका राखबे में कोनो फायदा नहीं है, तो आर्थिक दृष्टि से वे लाभ अपन का नहीं पहुंचाउते। इसे ऐसी मुर्गियन खा भी अपन का बाजार में ले जाके बेच दो चाहिए। इस प्रकार से अगर अपन ने हमारी बताई भाई बातन पे ध्यान दे के मुर्गी पालन करो तो निश्चित है कि अपन का फायदा होगे।
1: अभी किसान भाइयों के लिए खेती किसानी का प्रसारण किया जा रहा था। इसमें आज का विषय था मुर्गियों का संतुलित आहार। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान। गायक स्वर है शोभा जोशी का और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

भगवान शंकर के विवाह का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने इन शब्दों में किया है। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। शिव ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, देवताओं ने हर्ष ध्वनि की, श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और सर्वत्र आनंद छा गया। विदा के समय जामाता को अनेक उपहार देकर हिमाचल ने हाथ जोड़े, हे शिव, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। हिमाचल पत्नी मैना ने विनती की, उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, आप इसके सभी अपराध क्षमा कीजिएगा। और बेटी के लिए मां के वचन थे, हे पार्वती, तुम सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। तत्पश्चात शिव पार्वती कैलाश पर्वत के लिए विदा हुए।

0: श्रोता अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक स्वर था शोभा जोशी का और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: मनुष्य का जीवन कठपुतली के समान है। कठपुतली की तरह हमारी डोर भी किसी और के हाथ में है और वो जैसा चाहता है हमेशा वैसा अभिनय करवाता है। हमें सिर्फ उसके निर्देशन में अभिनय करते जाना होता है। हमारे जीवन की कहानी वो पहले ही लिख चुका है, इसीलिए जीवन में कभी उतार चढ़ाव आए तो हमें न बहुत ज्यादा भयभीत और न ही बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। हमें अपने जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को उस निर्देशक की आज्ञा माननी चाहिए और फिर उसी के अनुरूप अभिनय करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य एक सीमित अवधि के लिए इस संसार में आता है और परमपिता ने हमारे हिस्से में जितना सुख या दुख लिखा है उसे हमें हर हाल में भोगना ही पड़ता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की नियति तय है और यही प्रारब्ध यानी भाग्य है। हम कभी ये सोचने पर विवश हो जाते हैं कि आखिर हमें इतने दुख क्यों मिले, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमको इतने सुख क्यों मिले। यदि हम दुनिया को देखें और दुनिया की तुलना दुनिया के उन दीन दुखियों की तुलना अपने आप से करें तो हम पाएंगे कि हम उनसे लाख गुना बेहतर हैं। हमारे प्रारब्ध से हमारा पुरुषार्थ यानी कर्म जुड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच गहरा रिश्ता होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जब प्रत्येक मनुष्य की नियति तय है और उसके भाग्य में जो लिखा है वही होना है तो फिर कर्म करके क्या लाभ। इसी तरह दूसरे मत के लोगों का मानना है कि भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती, जितना और जैसा कर्म किया जाता है उसी के अनुरूप फल मिलता है। असल में प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों की ही अपनी अपनी महत्ता है। प्रारब्ध के बगैर पुरुषार्थ अधूरा है और पुरुषार्थ के बगैर प्रारब्ध। एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। एक लुटेरा उस राह से गुजरा। उसने गाय की मदद नहीं की, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसे एक आभूषण मिल गया। कुछ देर बाद एक साधु भी उसी राह से गुजरे। उन्होंने गाय को दलदल से बाहर निकालने में मदद की, लेकिन कुछ दूरी पर वे स्वयं एक गड्ढे में गिर गए। यह नजारा देख रहे नारद मुनि सीधे परमपिता के पास गए और शिकायत करते हुए कहने लगे कि प्रभु, धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। जो धर्म कर रहे हैं उन्हें बदले में सजा और जो अधर्म कर रहे हैं उन्हें पुरस्कार मिल रहा है। इस पर परमपिता ने जब यह कहा कि ऐसा संभव नहीं है तो नारद मुनि ने यह किस्सा उन्हें सुनाया। परमपिता ने कहा कि लुटेरे के प्रारब्ध में खजाना था, लेकिन उसने अधर्म किया इसलिए उसे एक आभूषण ही मिला। संत के प्रारब्ध में मृत्यु लिखी थी, लेकिन उन्होंने धर्म का कार्य किया तो उनकी मृत्यु हल्की चोट में बदल गई। असल में मनुष्य के पूर्व में किए गए कर्मों का फल प्रारब्ध है। इसलिए हमें यही कोशिश करना चाहिए कि हम सत्कर्म करें, सत्मार्ग पर चलें और किसी को हमसे दुख ना पहुंचे। हम लोगों की जितनी सहायता और मदद कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। निश्चित ही आपकी ये कर्म

0: आपके आने वाले भविष्य को बेहतर और बेहतर से बेहतर बनाएंगे और आप अपना जीवन सुखमय तरीके से जी सकेंगे। आवश्यकता है ये सोचने की कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो कितने सार्थक हैं, हम किस मार्ग पर जा रहे हैं, हमारा व्यवहार क्या है और हम भविष्य के लिए क्या सोचते हैं।
1: ये था आज का चिंतन। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने वाले हैं। समाचार कुछ ही समय में हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमी संस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट सेमीकण्डक्टर संयन्त्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रान्तेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाष निर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकण्डक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 26,000-2,000 यावत् भारते 5 सेमीकण्डक्टर संयन्त्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रान्तरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21वीं शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्ति पत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः सानन्दक्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयन्त्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक संजालीय तन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकास यात्रायामेष

0: एषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य दशदिनांकं यावत् कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्ष नेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीय सम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीन सत्रमस्य मासस्य विंशति दिनांकात् अगस्त मासस्य त्रयोदश दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजू सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलाई मासस्य विंशति दिनांकात् संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्वचषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् अद्य अन्त्यद्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया दलम् सम्मुखीकरिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय समयानुसारं रात्रौ अष्टवादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि जोधपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन मारवाड़ क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर से संशोधित उड़ान योजना शुरू होने से छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों तक हवाई संपर्क बेहतर होगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण से काम कर रही है और हर क्षेत्र तथा हर नागरिक के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले श्री मोदी ने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। बाद में गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र की में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि यह विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों में 5% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र

20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्वी अमरीका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सानंद में सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया, कहा यह भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का अगला कदम। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और प्रदेश में मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के सानंद में अत्याधुनिक सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विशाल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को पहले ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने इसे विकसित भारत की रूपरेखा और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम बताया।
1: मुझे बताया गया है कि यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में निर्मित चिप्स का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में निर्मित चिप्स जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज शिवपुरी में अडानी समूह द्वारा स्थापित किए जा रहे लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान के औद्योगिक विकास के विजन को नई गति मिलने की आशा है। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि रक्षा क्षेत्र के संयंत्र से इस इलाके में विकास को गति मिलेगी।
2: पूरी में डिफेंस रक्षा क्षेत्र का संयंत्र प्रोपेलेंट गैस और अनेक उपकरणों का 3,000 करोड़ का भूमि पूजन किया जा रहा है। ये एक अपने आप में एक इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की डिफेंस कॉरिडोर के साथ शिवपुरी को जोड़ा जा रहा है। एक नया इतिहास औद्योगिकरण की सूर्य की किरण के रूप में अब स्थापित होने जा रहा है। इस रक्षा के संयंत्र से हमारे देश के रक्षा करने वाले वीर जवानों को नई टेक्नोलॉजी के अस्त्र शस्त्र मिलेंगे।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि

0: वर्ष 2025-26 में यह 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जो कि 2014-15 की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है।
1: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल इंदौर में कहा कि बूथ लेवल अधिकारी चुनाव आयोग के आधार स्तंभ होते हैं। उन्होंने इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधे संवाद में कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव कर्मियों और बीएलओ ने मिलकर एसआईआर का काम बहुत अच्छा किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आज ओंकारेश्वर और महेश्वर के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने के लिए केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, संबंधित मंत्रालयों, नागरिक समाज और जनता से सामूहिक तथा समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। स्कूल शिक्षा विभाग ने 5,017 नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें माध्यमिक शिक्षकों के 4,067 एवं प्राथमिक शिक्षकों के 950 पदों को नियुक्ति प्रदान की गई है। विभाग द्वारा ये नियुक्ति आदेश 3 और 4 जुलाई को जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी नवनियुक्त शिक्षकों से अपेक्षा की है कि वे अपने दायित्वों का निष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक न्याय दिव्यांगजन मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को शिक्षा, तकनीकी और गतिशीलता से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग को सरल और सुलभ बनाएगी। उन्होंने पात्र विद्यार्थियों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने तथा जिलाधिकारियों को योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बड़वानी और खरगोन जिले सबसे अधिक प्रभावित रह सकते हैं, जहां पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने इंदौर और जबलपुर संभाग के जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं देवास, सीहोर सहित 13 जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मैहर जिले के रामनगर ब्लॉक में रीवा बाणसागर और सीधी बाणसागर मल्टीविलेज जल प्रदाय योजना के कार्यों का जमीनी निरीक्षण किया। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इंदौर के सावेर में 27 करोड़ की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कॉलेज भवन के निर्माण का निरीक्षण किया। वहीं इंदौर में कल युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी के बरगांव में आज सुबह 10 बजे से विद्यार्थियों के लिए एक विशेष कैरियर गाइडेंस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा के ओंकारेश्वर के प्रसिद्ध ममलेश्वर मंदिर में विकास कार्यों की तैयारी तेज हो गई है। मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। आगरमालवा के सुसनेर में सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को साइबर अपराधों से बचने के तौर तरीके सिखाए। और झाबुआ कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में आयुष्मान भारत, सिकल सेल और टीबी उन्मूलन के लक्ष्य तय समय में पूरे करने के निर्देश दिए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारंद में सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया। कहा यह भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज शिवपुरी में

2,500 करोड़ की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और प्रदेश में मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं हिंदी महक कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर एलसी अनुरागी से हिंदी काव्य पाठ।

0: आइए सुनते हैं हिंदी महक कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर एलसी अनुरागी से हिंदी काव्य पाठ।
1: मैं बुंदेलखंड महोबा के गोरखगिरी पर्वत के महत्व पर प्रस्तुत करना चाह रहा हूं।

धाम। अगली रचना बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत और उसके ऐतिहासिक महत्व पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारत भूमि।

कहानी की अगली पंक्तियां बुंदेलखंड की भूमि के महत्व पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें गोरखगिरी की भी महत्वता सम्मिलित है। धन

0: है मिटाउने।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी महक कार्यक्रम। इसमें आज आपने सुनी डॉक्टर एलसी अनुरागी से हिंदी काव्य पाठ। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप

श्रोताओं, अभी आपने सुना आशा भोसले बप्पी लहरी व साथियों की आवाज में मेरा साथी फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे थे हिंदी वर ने, संगीत दिया था

0: बप्पी लहरी ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
2: सच?
1: हाँ हाँ सच, लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
2: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए तो
1: बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
2: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
1: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए नाचे मयूरी फिल्म का गीत लता मंगेशकर व साथियों की आवाज में। गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लीजिए अब सुनिए मर मिटेंगे फिल्म का गीत किशोर कुमार, अनुराधा पौडवाल व साथियों की आवाज में। शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
4: अरे अरे अरे अरे अरे, तेरा सारा सत्यानाश। अरे जेनी, अरे लड़की, ये तूने क्या किया? अरे मुझ लड़के को मझधार में तन्हा छोड़कर तू अकेली किनारे पर उछल पड़ी। बेवफा, बेरहम, बे मुरव्वत, तेरी ये हिम्मत।

प्रेम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए बप्पी लहरी की आवाज में प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे इंदीवर ने, संगीत दिया बप्पी लहरी ने।

हम संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर, मोहम्मद अजीज व साथियों की आवाज में SH बिहारी का लिखा गीत, संगीत बप्पी लहरी का, फिल्म का नाम कब तक चुप रहूंगी।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए इलाका फिल्म का गीत, मोहम्मद अजीज व आशा भोसले की आवाज में। गीत के बोल लिखे समीर ने, संगीत दिया नदीम श्रवण ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। कुछ ही समय में हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में

0: एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
1: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
2: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
3: मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला।

0: ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये परिचर्चा आकाशवाणी एफएम गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज सवेरे 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमरीका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कम्पेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री

एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस नेक्स्ट फेज ऑफ रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम विकसित उड़ान टू गिव फिलिप टू एयर ट्रैवल इन टियर टू एंड टियर थ्री सिटीज। Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to 2,125 rupees per quintal to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udaan in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udaan scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: Prime Minister Modi also inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport, marking a major push to India's civil aviation infrastructure and regional connectivity. Mr. Modi highlighted that the architecture and interior of the new terminal are trending on social media.
1: Jodhpur mein naye

0: 7,500 crore rupees. The advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi said that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
1: भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। पांच साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: Mr. Modi also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
1: यहाँ से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी। आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है। यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: Early upon reaching Sanand, the Prime Minister toured the high-tech plant and inspected the production process. He also interacted closely with engineers and operators working inside the facility.

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संग्रहालय से। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं अली सरदार जाफरी से अनूप सोनी की बातचीत।
1: अली सरदार जाफरी साहब, आपका बहुत स्वागत करता हूं।
2: शुक्रिया।
1: और आज ये मौका हमें मिला है कि थोड़ी देर के लिए हम आपसे बातचीत करें।
2: जो हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन बनी और एक तरह के बहुत सारे उस जमाने के लेखक उसमें जुड़े, हिंदी के भी उर्दू के भी, तो और उसके शुरुआती दौर से ही आप उसके साथ रहे हैं, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए।
3: देखिए, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन जो कि लंदन में इसका पहला मैनिफेस्टो तैयार हुआ था सन 1935 में, डॉक्टर मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, हेजन मुखर्जी, डॉक्टर तासीर पांच में इसके बनाया था। तो चूंकि पहला ड्राफ्ट अंग्रेजी में था तो उसका नाम प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, उर्दू में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफी और हिंदी में प्रगतिशील लेखक संघ उसका नाम हुआ। ये मेरी नजर में हिंदुस्तान की 5000 बरस की जो परंपरा है और तारीख है उसमें एक यूनिक तजुर्बा है। हमारे यहाँ ये 15-20 बड़ी जबानें तो सदियों से मौजूद हैं। संतों की और सूफियों की गोष्ठियां होती थी लेकिन वो महदूद इलाके में, बनारस में होगी, अयोध्या में होगी, लखनऊ में होगी, कानपुर में होगी, तो फासले होते इस वजह से भी नहीं होता। तो पहली बार हमारे देश की 20-22 बड़ी जबानों के बड़े अदीब एक साथ एक नॉन रिलीजियस और प्योरली सेकुलर और रिवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म पर आके जमा हुए और नाम इतने बड़े हैं, टैगोर, वालाथोन, इकबाल, हिंदी से सुमित्रानंद पंत, निराला, उमाशंकर जोशी, मामा वारेरकर और इनमें से मैं लोगों से मिला भी। तो ये एक बहुत बड़ा इंकलाबी कदम था और इसमें जो हमारे सामने आइडियल था वो हिंदुस्तान की आजादी और सोशलिज्म। तो हमारे यहाँ तो अमल हुआ क्योंकि शायरी करनी है, अफसाना लिखना है, तो ये पहली बार हम लोग जो इस पर जमा हुए और जो मुंशी प्रेमचंद ने स्लोगन दिया उसमें बड़ी गहराई थी कि हमको हुस्न का मेयार बदलना है और उसकी उन्होंने तफसील ये बताई कि सिर्फ वो औरत खूबसूरत नहीं है जिसका चेहरा पाउडर से और लिपस्टिक से सजा हुआ है, बल्कि वो औरत भी खूबसूरत है जो खेत में काम कर रही है, पसीने में डूबी हुई है और उसका बच्चा मेंढ पे सो रहा है। तो ये जो इनकलाब था, जबकि प्रेमचंद गंगाल लिख चुके थे, इकबाल लिख चुके थे उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, टैगोर लिख चुके थे, वालाथोन लिख चुके, उसके बाद ये स्लोगन जो है इसने हमारी आदत की काया पलट दी। और उर्दू में देखिए आप कि प्रेमचंद के बाद कृष्णचंद्र, इसमत मंटो, इसमत चौकताई और उसके राजेंद्र सिंह बेदी, ख्वाजा अहमद अब्बास, उपेंद्र नाराज, तो बेशुमार 100-150 राइटर। और इनमें से आप देखिए कि हर एक का अपना स्टाइल अलग है, इसी तरह के दूसरी जबानों में मौजूद है। लेकिन उर्दू और हिंदी को जो बहुत बड़ा फायदा है वो ये है कि बंगाल का अदीब बंगाल की सरहद में महदूद हो जाता है, मराठी का मराठी सरहद में, हिंदी और उर्दू वाला जो है वो उसमें विशालता एक ऐसी आती है, फैल जाता है पूरे हिंदुस्तान में। तो ज्ञानपीठ अवार्ड हमसे पहले 32 राइटर्स को मिले, लेकिन जो रिस्पांस मुझे मिला है वो मुझे ज्ञानपीठ वाले बताते हैं कि और किसी को नहीं मिला। उसकी वजह क्या थी कि मेरा नाम उर्दू सरहद से बाहर भी लोग जानते थे लेकिन बहुत बड़े बंगाली अदीब का नाम वहां की सरहद से बाहर लोग नहीं जानते, तो उस वजह से। तो ये जो हमारी बनी इसने नए एक्सपेरिमेंट्स किए

0: हुई है, फैज की बेहतरीन शायरी 49 के बाद की है, कृष्णचंद्र के बेहतरीन अफसाने, इस्मत के बेहतरीन, बेदी के मंटो का तो ठीक से
1: लोग इससे जुड़े रहे हैं,
0: जो जुड़े रहे हैं ये अच्छा, ऐसा भी रहा है कि जुड़े भी रहे हैं और क्रिटिसाइज भी करते रहे हैं, ये भी हुआ है।
1: हम जो एक हेल्दी एटीट्यूड होता है,
0: लेकिन जो हमारे मुखालिफ हैं वो दरअसल इस चीज की मुखालफत नहीं है उनको कि हम इंतहा पसंद हो गए थे, उनको तो मुखालफत हमारे कंटेंट से है, हमारी जो वैल्यूज है उसकी मुखालफत है असल चीज। ये तजुर्बा मुझे अभी ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद ये हुआ कि 60 बरस मेरी मुखालिफत हुई है उर्दू का, 70-80 मजामीन मेरे खिलाफ लिखे गए हैं, लेकिन ये मैंने वो स्टैंड नहीं छोड़ा जिस पर मैं खड़ा हुआ था। और क्यों नहीं छोड़ा, हमें कहा हम दूसरी तरह के लिखने का काबिल ही नहीं है, हम उस तरह के लिख ही नहीं सकते, तो हम काय को कोशिश करें, हम जो लिख सकते हैं वो लिख रहे हैं। आपको पसंद है बड़ी बहुत अच्छी बात, नहीं पसंद है हम इन्फ्लिक्ट नहीं करते आप पर, लेकिन यही गालिब के साथ रहा
1: जी।
0: मेरा और गालिब का कोई मुकाबला नहीं है, मैं मिसाल बता रहा हूँ, मेरा जो सबसे बड़ा शायर उनके रहा, इसी तरह से इकबाल की मुखालफत हुई, आप क्या हिंदी में हमें मालूम है।
1: थोड़ा सा आप अपनी पोइट्री के बारे में भी बताइएगा, एक जो किताब मैंने आपकी देखी है प्यास की आग जो 1964 में या 60 में छपी है, और उसमें आपने भूमिका में लिखा भी है कि पिछले 30 साल की पोइट्री उसमें कलेक्ट की गई है और उसके बाद और 30 साल 40 साल बीत गए हैं, तो उसमें जो कविता है आपकी उसके बाद जो कविता है या अपनी पूरी कविता में किस तरह के चेंजेस आप देखते हैं?
0: मेरे ख्याल देखिए मैं इसको आइडियोलॉजी के सतह से जब बयान करूं
1: जी
0: तो बात बड़ी साफ हो जाएगी। मैंने सबसे पहला सबक इसका आजादी का और इंसाफ का और कुर्बानी का इमाम हुसैन से सीखा। दूसरी चीज ये थी कि बलरामपुर की रियासत में मेरे बचपन के खिलौने बंदूक और किताब थी, तो उसमें मैंने वहां की मुफलिसी और गरीबी देखी, जुल्म देखा फ्यूडलिज्म का
1: जी,
0: जो किसान पर होता था, उससे एक रिवोल्ट। अब उसको और कलवरा को मैं आइडेंटिटी यानी जोड़ नहीं पाता था, वो मुझे मार्क्सिज्म ने दिया। तो जब मैं अलीगढ़ आया तो वहां मैंने पहली बार बुर्जुआ का लफ्ज सुना, मुझे मनी नहीं मालूम थे उसके, तो मैं लाइब्रेरियन के पास गया और मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे उसके मानी भी बताए और उन्होंने लेजेंड की बायोग्राफी मुझे पढ़ने को दी, तो वो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज था। तो मैंने उसके लिए लिखा है कि अपने बालों से पेड़ों की शाखों में लटकी हुई किसान औरतें मुझे उतरती हुई नजर आई लेनिन को पढ़ने के बाद, तो मैं मार्क्सिज्म वहां तक गया। इसके बाद मैंने जब कबीर पर काम किया और उससे पहले मीर पर जब काम किया, तो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई, वो मेरी जहालत थी वरना मुझे जानना चाहिए था, और हमारी तहरीक की कमजोरी थी कि मिडिल एजेस का रेवोल्यूशनरी लिटरेचर जो है वो मिस्टिक लिटरेचर है, भक्ति और सूफीज्म का लिटरेचर,
1: हम मुख्य रूप से उसको वही माना जाता है
0: वो है। अच्छा, उसको हमने इग्नोर कर दिया, मैंने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने यहां, और जब मैंने उसकी ज्यादा डीप स्टडी की तो एक अजीब चीज सामने आई जो कबीर के यहां भी है और रूमी के यहां भी है और मार्क्सिज्म में भी है कि इंसान जो है वो मुकम्मल नहीं है, तो उसकी स्ट्रगल उसको मुकम्मल करती है, नेचर के खिलाफ वो स्ट्रगल करता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए और उसमें कुछ चेंज होता है। तो ये जो है इंसान की तकमील की मंजिल, ये मार्क्सिज्म और सूफीज्म दोनों में हमको मिल जाते। अच्छा, सूफीज्म में दो स्टेजेस हैं, एक है जिसको डेथ कहते हैं, निर्वाण उस शक्ल का कि जहां यानी फर्द जो है व्यक्ति वो कुल में मिल जाता है एब्सोल्यूट में, और एक वो है कि मिलता नहीं है, समंदर में मोती की तरह रहता है, सारी समंदर की ताकत को उसने अपनी अंदर जज्ब कर लिया है, तो इसको हम कहते हैं मकाम बका, जिंदगी का वहां।

0: नहीं जाती।
1: अजीब सा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आपको जब भी देखा है बहुत लंबे बालों में आपको देखा है, तो बच्चों की तरह ये पूछना चाहता था कि आप ये लंबे बाल क्यों रखते हैं?
0: कोई अच्छा भाई नहीं है, हम कहते हैं हम तो
1: जाफरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से। इसमें आज आपने सुनी अली सरदार जाफरी से अनूप सोनी की बातचीत। मीडिया वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको बता दें आज प्रातः 9:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति सहयोग होगा डॉक्टर सविता धमीजा का और प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की। पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम भवदीय सुनिएगा प्रातः 10:30 पर। प्रस्तुति रविंद्र कुमार प्रजापति की होगी।

श्रोता बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा आप सुनेंगे दिन में 2:38 पर। इसमें बाल साथी सुनेंगे बाल मन से के अंतर्गत स्टूडियो में आए रियांश प्रजापति और अक्षांश प्रजापति से की गई बातचीत के अंश, साथ ही होगी रोचक जानकारी। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियावेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और आकाशवाणी के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं लोकरंग कार्यक्रम। इसमें आज कलाकार हैं ब्रजलता मिश्रा। कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए इनसे सुनिए ये देवी गीत।

लोकरंग कार्यक्रम आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं। इसमें आज कलाकार हैं ब्रजलता मिश्रा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ब्रजलता मिश्रा से ये लांगुरिया लोकगीत।

लोकरंग कार्यक्रम आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं। इसमें आज कलाकार हैं ब्रजलता मिश्रा। अभी तक इनसे आपने सुनी सबसे पहले देवी गीत, उसके बाद लांगुरिया, अभी आपने सुना लोक भजन। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए ब्रजलता मिश्रा की आवाज में ये बिलवारी लोकगीत।

इसी के साथ लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसमें आज कलाकार थी ब्रजलता मिश्रा। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम। हेलो फरमाइश, प्रस्तुति सहयोग डॉक्टर सविता धमीजा का और प्रस्तुति रविन्द्र कुमार प्रजापति की।

0: हेलो फरमाइश प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। ये कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले आप सभी श्रोताओं को अपना नंबर बता देते हैं। हमारे साथ यानी कार्यक्रम हेलो फरमाइश के साथ जुड़ने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 2415888 पर 298029 पर। एसटीडी कोड है 07682। हमारे इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है हर शुक्रवार 11 से 11:30 तक। इसी दौरान आप हमें कॉल करके अपनी फरमाइश के गाने सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण आप सुन सकते हैं रविवार सुबह 9:30 से 10:30 तक। हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, हेलो फरमाइश में आपका स्वागत है।
1: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी कौन बात कर रहे हैं?
1: छोटी माता मंदिर के निकट कोटा जिला जालन उत्तर प्रदेश से आपका नियमित श्रोता मैं तिवारी बात कर रहा हूँ।

0: जी तिवारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तो हम लोगों के पत्रे पलटी रहती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और जी मान के चलिए कि आज आपसे बात हो रही है तो बहुत ही आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है मैम।
0: जी जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बातचीत हो रही है। और आप जैसे प्यारे प्यारे श्रोता जब जुड़ते हैं तो हमारा खून भी जो है वो दुगना हो जाता है, खुशी जो है वो दुगनी हो जाती है।
1: सर जी का अथक प्रयास के बाद, क्योंकि हम लोगों की भी एक इच्छा थी कि मतलब एक समय आप लोग मन भावन में आपकी पसंद में आते हैं तो कभी आप लोगों से रूबरू होंगे या नहीं होंगे, लेकिन चलो अब लाशा वो पूरी होती है बसवर।
0: बिल्कुल। तो तिवारी जी, आज आपकी भी हम तक पहुंच चुकी है और अब हम जानना चाहेंगे कि आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
1: भ्रष्टाचार फिल्म मिल जाएगी, मोहम्मद अजीज साहब की आवाज में है। यही दिल की है आवाज, बंद करो भ्रष्टाचार।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार।
2: इस दुनिया

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन बात कर रही है?
1: मैं प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से बोलती हूँ। वी पूनम नायडू
0: जी। पूनम जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत दिल से शुक्रिया मैडम जी।
0: जी क्या हाल चाल है आपके?
1: मस्त, बारिश का मजा ले रहे हैं मैडम जी। इधर तो रनिंग शुरू

0: गई है, लगभग हो गए 10 दिन
1: जी,
0: लगातार बारिश हो रही है, साथ में यहाँ पर फार्म हाउस से वहाँ पे खेती का काम भी चल रहा है, प्लस हम लोग का स्कूल भी बहुत अच्छा चल रहा है मैडम जी, क्योंकि मैं एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका हूँ छोटे बच्चों की।
1: जी बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि आप एक शिक्षिका का रोल भी अदा कर रही हैं, घर भी संभालती हैं, खेतों में भी काम करती हैं, है ना?
0: कैसा पड़ता है मैडम जी, सब परिवार जन मिल के करते हैं, मामा मामी।
1: बहुत अच्छा जी, इसी तरह हम सब परिवारजनों को एक दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए, एक दूसरे के साथ हाथ बंटवाना चाहिए, है ना?
0: हाँ, और सब मिलके करते हैं मैडम जी, कोई अकेले नहीं करते, और सभी सर्विस में है, सभी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं हमारे घर में।
1: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके पूनम जी। और अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप गीत कौन सा सुनना चाहेंगी?
0: हाँ, तो बारिश का मौसम है मैडम जी, तो जाहिर है मैं बारिश से ही संबंधित कोई गीत सुनना चाहूंगी। मैं तो कुछ नए गीत सुनती हूँ मैडम जी, लेकिन मेरे परिवारजन है सभी लोग ना पुराने गीत पसंद करते हैं, तो मैं आज उनके पसंद का ख्याल रखते हुए फिल्म 2 झूठ का गीत सुनना चाहूंगी मैडम जी। उषा मंगेशकर जी और किशोर कुमार जी की आवाज में, गीत के बोल में थोड़ा बता दूं क्या?
1: बिल्कुल।
0: तेरी नखोल उड़ जाएगी, हवा तेज है, ये वाला गीत मैडम जी।
1: जी सो पूनम जी, आपकी फरमाइश पे आपके लिए हम ये गीत जरूर सुनाएंगे, फोन करने के लिए शुक्रिया।
0: शुक्रिया, दिल से शुक्रिया मैडम जी, कॉल शामिल करने के लिए और इतनी प्यारी बातें करने के लिए।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: छतरी न खोल,
3: क्यों
2: उड़ी जाएगी, हवा तेज है,
3: खोलने दे
2: ना,
3: भीग जाएंगे।

0: हाँ जरा पास तो आओ, आओ ना।
1: हेलो फरमाइश
2: जी। मैम नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैं, मायर एमपी से।
1: जी कुशवाहा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद मैम।
1: और बताएं क्या हाल चाल है?
2: बस ठीक है मैम, बस आपका शो का इंतजार कर रहे थे मैम। आओ मशीन चलाते हैं जेसीबी।
1: जी ओ, तो आप काम के साथ साथ रेडियो का आनंद ले रहे हैं?
2: जी हिंदी रेडियो।

0: जो मैं सुनते रहते हैं मैम, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम ही सोचे चलो अभी टाइम है तो फोन लगाते, फोन भी लग गया मैम
1: जी। सुखुशवाहा जी, आप हमारी आकाशवाणी छतरपुर की कौन कौन सी कार्यक्रम सुनते हैं और कौन सा कार्यक्रम आपको पसंद है?
0: सबसे ज्यादा मैम यही फोन इन फॉर हमारे सुनते हैं मैम, बाकी थोड़ा अच्छा लगता है दोस्तों के बातचीत करने का, थोड़ा अच्छा वो लगता है मैम, तो इसी थोड़ा जाते सुनते फोन इन फॉर हमारे
1: जी। तो आपको फोन इन कार्यक्रम ज्यादा अच्छे लगते हैं?
0: जी जी जी मैम
1: जी। तो अब खुशवाहा जी, क्योंकि हमने आपसे बात कर ली है, अब हम पूछेंगे आपसे कि आप गीत कौन सा सुनना चाहेंगे?
0: जी फिल्म जानवर से अवगाने के बोल है, मौसम की तरह तू नहीं बदल तो न जाओगे।
1: जी तो आपकी फरमाइश पे ये प्यारा सा गीत आपके लिए हम जरूर लेके आएंगे फोन करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया खुशवाहा जी।
0: जी फोन शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम
1: जी, शुक्रिया।

0: वेलकम। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं सुरनपाल सिंह गुर्जर, ग्राम बाहुपुरा, तहसील कोट, जिला जालौन से बोल रहा हूँ।
0: जिला जालौन से कौन बात कर रहे हैं?
1: सुरनपाल।

0: सिंह गुर्जर
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
0: थैंक यू।
1: और बताएं क्या हाल चाल है?
0: कुछ नहीं, विद्यालय खुल गए, मैं शिक्षक हूँ, साक्षात्कार चल रहा है समय।
1: जी बहुत बढ़िया। तो अब आप क्योंकि बहुत सारी छुट्टियों के बाद जो बच्चे हैं दोबारा लौटे होंगे, तो आपको उनमें उत्साह किस तरह का नजर आ रहा है?
0: नया उत्साह उनमें बहुत है
1: जी।
0: हाँ, नए क्लास में आए हैं ये बच्चे।
1: जी
0: उनमें बहुत सा उत्साह है।
1: बहुत अच्छी बात है। तो जब बच्चे क्योंकि छुट्टियों के बाद आते हैं तो उनमें बहुत सारी उमंग होती है, हॉलीडे होमवर्क का जो है एक उत्साह होता है कि ये चेक होगा, और एक नए उत्साह के क्योंकि ब्रेक मिलती है हमें, तो उसके बाद वो आते हैं।
0: जी
1: जी। अब क्योंकि हमने बातें कर ली है, आपसे पूछेंगे कि आप गीत कौन सा सुनना चाहेंगे?
0: मुझे प्रतिज्ञा का सुनना है।
1: जी कौन सा गीत?
0: अमला पगला दीवाना।
1: जी बहुत ही प्यारा गीत आपने चुना है सुनने के लिए, और आपकी फरमाइश पे हम ये गीत आपको जरूर, आप हमारे साथ जुड़े हैं, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना।

होलार में मेले में अकेले गिरी बाजार सर में कौन सा बनाना बहाना बहाना बहाना मैं जत यमला।

ना छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना प्रेम दरोग पुराना पुराना पुराना है जट यमला पगला दीवाना हो

0: पाठ यमला बगला दीवाना।
1: हेलो फरमाइश।
2: हाँ हेलो फरमाइश
1: जी, कौन बात कर रही है?
2: मैं ग्राम मढ़ियाई मौजा रसिन जिला चित्रकूट से सरोज बात कर रही हूँ।
1: जी सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: जी मैम।
1: जी क्या हाल चाल है आपके?
2: ठीक है मैम।
1: और चित्रकूट के क्या हाल चाल है?
2: बढ़िया है।
1: बढ़िया है। मौसम कैसा है वहाँ पे?
2: मतलब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है।
1: जी बिल्कुल, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और ऐसे में हम सबको चाहिए कि जितना जरूरत हो उतना बाहर जाएं और हाइड्रेटेड रहें, यानी कि पानी की मात्रा को एक बैलेंस में रखें, पानी पीते रहें और अपने साथ साथ अपने साथियों का भी ध्यान रखें।
2: जी मैम, आपका नाम जानना चाहते हैं, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं डॉक्टर सविता बोल रही हूँ। सरोज जी, जी सरोज जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
2: राम तेरी गंगा मैल का है, एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा।
1: जी बहुत ही प्यारा गीत आपने चुना है सुनने के लिए और आपकी फरमाइश पे आपको एक गीत जरूर सुनाएंगे। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़ेंगे सरोज जी।
2: जी मैम, नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: जी हेलो, फरमाइश से बोल रहे हैं।
1: जी मैं संतोष कुमार नामदेव बोल रहा हूँ। मैन मार्केट ग्राम पोस्ट सौराई जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से आकाशवाणी छतरपुर का नियमित श्रोता।
0: जी संतोष जी, आपका स्वागत करते हैं हम अपने कार्यक्रम हेलो फरमाइश में।
1: आप कौन बोल रही हैं? आप नई नई आवाज पहचानने में आ रही है।
0: जी संतोष जी, मैं डॉक्टर सविता बोल रही हूँ।
1: जी आपको हमारा नमस्कार और आकाशवाणी छतरपुर के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार।
0: जी जी, तो संतोष जी और बताएं आपका क्या हाल चाल है?
1: बस इस समय सुहावनी मौसम का आनंद ले रहे हैं। बरसात ऋतु आ चुकी है, इसका आनंद ले रहे हैं और खेतों में इस समय काम चल रहा है उर्द की बुवाई और सोयाबीन की बुवाई, जिसका आकाशवाणी छतरपुर से ग्राम सभा में बहुत ही रोचक जानकारियों के साथ फसल की देखभाल करते हैं।
0: संतोष जी, क्योंकि आपने अभी बोला कि आप नियमित श्रोता हैं, सो मैं ये जानना चाहूंगी आप आकाशवाणी छतरपुर से कब से जुड़े हैं?
1: आपको हम बता दें कि सबसे पहले हमने कार्यक्रम 1997 में शुरू किया था सुनना सफल हमारे जवाब आप ये गुवाड़ी में आता था और उसमें लेटर भी लिखा था और खुशी हुई थी जब हमारे साथ सही जवाब निकले थे, तब से कार्यक्रम सुनना शुरू करते हैं। और इससे पहले हमारी मम्मी जी लोकधारा कार्यक्रम की लोकप्रियता बहुत पहले अच्छी थी, तो मम्मी जी लोकधारा सुनती थी और पापा हमारे समाचार सुनते थे रेडियो की माध्यम।
0: जी, तो आपका और आकाशवाणी का यानी कि नाता बहुत पुराना है।
1: जी बिल्कुल, जब हमें यानी कक्षा 6 में प्रवेश किया था तब से हमने कार्यक्रम सुनना शुरू कर दिया था और लेटर लिखना भी शुरू।
0: बहुत बढ़िया, तो आज के समय में आपके पसंदीदा कार्यक्रम कौन से हैं आकाशवाणी छतरपुर पर?
1: आज के समय में पसंदीदा कार्यक्रम तो वैसे सभी आते हैं, लेकिन जो पुराने कार्यक्रम है आज भी लोकप्रियता रखते हैं, जैसे कि जब आप गुनगुना उठे हरी ग्राम सभा कार्यक्रम हुआ और जो ये अभी सवरम कार्यक्रम आता है ये भी बहुत पुराना कार्यक्रम है, बहुत अच्छा लगता है, इसमें मिलाजुला संगीत होता है।
0: बहुत अच्छे।
1: लोक रंग और लोकधारा की तो अभी भी प्रसिद्धता है, हमारी मम्मी अभी भी सुनती है, हालांकि अब रेडियो से तो नहीं सुनती लेकिन मोबाइल ऐप से हमेशा।
0: बहुत अच्छी बात है और आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। और आप जैसे जब पुराने दोस्त रेडियो के साथ ऐसे जुड़ते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो बहुत वाकई में अच्छा लगता है। संतोष जी,
1: बहुत बदलाव हो गया, अब लेटर तो लिखना बंद कर दिया लेकिन ईमेल के जरिए ही शामिल होते हैं, चाहे आपकी पसंद हो जाए, जब आप गुनगुना कही है बहुत ही कार्यक्रम में लेटर अब तो ईमेल करते हैं और शामिल भी होते हैं आकाशवाणी छतरपुर के हमारे मुख्य उद्घोषक जो है।
0: जी बहुत अच्छा लगा आपसे संतोष जी बातचीत करके। और अब आपसे पूछना चाहेंगे गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: मूवी का नाम है बाहर आने तक, इसका एक गीत है मोहब्बत इनायत करम देखते हैं।
0: जी प्यारा गीत है, तो आपकी फरमाइश में आपको ये गीत सुनवाएंगे और आपके साथ साथ सभी श्रोता भी सुनेंगे। फोन करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी।
1: धन्यवाद जी।

0: कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: हेलो
1: मैम नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: नेपाल से सागर से तिलक राणा बोल रहा हूँ।
0: जी तिलक जी, क्या हाल चाल है आपकी और आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: जी हाल चाल तो सब ठीक ठाक है मैम। और आप सुनाइए आपकी टीम का क्या हाल चाल है? आकाशवाणी
0: आकाशवाणी के सभी लोग भी बहुत अच्छे हैं और उन सब की तबीयत आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों से और अच्छी हो जाती है जब हम सब की मुलाकात आपसे होती है। जी तो और बताएं मौसम कैसा है और क्या कर रहे थे अभी आप?
1: मैं ट्राई कर रहा था आपकी ये फोन कार्यक्रम में फोन

0: लगाने का।
1: अच्छा
0: कोशिश कामयाब होगी
1: जी। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, खासतौर पे उन श्रोताओं को जो कहते हैं कि हमारी कॉल मिलती नहीं है या बात नहीं हो पाती है, तो जब हम कोशिश करते रहते हैं तो कॉल भी जरूर मिलती है, जैसे तिलक जी की मिली है आज हमारे साथ।
0: जी मैम
1: जी। सो तिलक जी, क्योंकि हमारा फोन इन कार्यक्रम है और साथ में हम फरमाइश भी पूरी करते हैं, तो आपकी फरमाइश भी पूछना चाहेंगे, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
0: मुझे टैंकर बाबू का फिल्म का गीत सुनना है, महेंद्र कपूर लता मंगेशकर की आवाज में। ओ मेरे सजन बरसात में आ।
1: बिल्कुल, आपकी फरमाइश पे महेंद्र कपूर जी की आवाज में आपको ये गीत जरूर सुनाएंगे। तो सुनते रहिए इसी तरह और जुड़े रहिए आकाशवाणी छतरपुर के साथ। शुक्रिया तिलक जी।

0: स्पेक्ट्रम, हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैडम, नमस्ते।
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं मैडम नीरज राजपूत, ग्राम चुरावी, जिला महुआ।
0: जी, जिला महुआ से कौन बोल रहे हैं?
1: नीरज राज।
0: जी नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या हाल चाल है?
1: कुछ नहीं मैडम, का पानी बरा सर, पानी वानी नहीं हो रही, बैठे हैं घर पे।
0: कोई बात नहीं, हमेशा जो अपना कर्म जो है इंसान को करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए।

0: गर्मी बहुत पड़ रही मैडम।
1: और मौसम का क्या हाल है महोबा में?
0: मौसम मैडम अब पानी नहीं बस हम आए थे बिल्कुल अब सूखे डरे खेत। इंतजार कर रहे
1: हैं
0: तो।
1: जी जी जी जी। और हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्दी से बारिश आए और आपके खेत जो है वो हरे भरे रहे।
0: मैडम एक गाना सुनवा दो हमें।
1: जी कौन सा गीत सुनेंगे?
0: फिल्म का नाम है सावन को आने दो, उसका टाइटल सॉन्ग है पुरानी वाली।
1: जी सावन को आने दो फिल्म का नाम है और आप इसका टाइटल सॉन्ग सुनना चाहते हैं? जी तो आपको हम ये गीत जरूर सुनाएंगे, आप सुनते रहिए और इसी तरह जुड़ते रहिए हमारे साथ आकाशवाणी छतरपुर पर।

0: कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: आज मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमारी बात हो रही है, जो मैडम जी से हो रही है, काफी साल के बाद बात हुई है।
0: जी,
1: क्योंकि अभी आपकी बेटी आपसे बात नहीं हो सकी और कार्यक्रम में आनंद भी आ रहा था।
0: जी, कौन से आप बात कर रहे हैं?
1: सरखनपुर जिला जमगढ़ मध्य प्रदेश से संतोष कुमार साहू बात कर रहे हैं।
0: जी,

0: जोशी, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या हाल चाल है आपके?
1: हमारी हालचाल बढ़िया है और मैं सन 1985 से कार्यक्रम सुन रहा हूँ।
0: वाह, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो तब से लेकर अब तक आज के समय तक आपको आकाशवाणी छतरपुर के कौन से कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है?
1: हमें कार्यक्रम तो सभी पसंद है क्योंकि हमारा रेडियो 5:55 तक खुल जाता है और रात्रि में 11 बजे समाप्त होता है और इसी के दौरान हमारी सिलाई का कार्यक्रम चलता रहता है। किराने की दुकान है और ये इसके द्वारा मतलब सभी लोगों को इसका आनंद मिलता है रेडियो का, जो कि सभी श्रोता हमारे सुनते हैं।
0: जी, बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप नियमित रूप से रेडियो के साथ जुड़े हैं और आपका विश्वास, आपका प्यार जो है आज भी हमारे साथ इसी तरह बना हुआ है।
1: और क्या है मैडम, जो हम श्रोतागण हैं वो एक बड़ी चैनल संख्या में और रेडियो जितने भी दुकानदार लोग होंगे, चाहे वो टेलरिंग से संबंधित हो या दुकानदारी से संबंधित हो, लोग अधिकांश रेडियो ही सुनते हैं क्योंकि यदि वो टीवी देखेंगे तो उनको मतलब काम नहीं कर पाएंगे।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और जो इस मतलब घर में गृहिणी महिलाएं होती हैं जो अपना कामकाज किया करती हैं, वो भी अधिकांश रेडियो से ही जुड़ती
0: है। बिल्कुल,
1: अपना काम करना पड़ता है और दुकानदार भाइयों को अपना काम करना पड़ता है, तो अगर वो टीवी देखेंगे तो उससे वो काम नहीं कर पाएंगे।
0: बिल्कुल, काम में भी डिस्टर्बेंस नहीं होती और उसी के साथ साथ आपका मनोरंजन भी होता है, क्योंकि आकाशवाणी छतरपुर का भी यही एक लक्ष्य रहा है कि आप सभी श्रोतागण को मनोरंजन भी हो, आपको ज्ञानवर्धक बातें भी जो है हमारे कार्यक्रमों के जरिए पहुंचे।
1: और मैडम मैं एक पंक्ति बोलना चाहता हूँ। कमल का फूल तालाब में रहकर महान नजर आता है और डॉक्टर सविता जी की अमृतमय वाणी में भगवान नजर आता है।
0: ये आपने बहुत बड़ी बात बोल दी, तो फिर भी आपका तहे दिल से शुक्रिया इतने स्नेह के लिए। तो संतोषी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: मुझे मैडम प्यार का मंदिर का गीत सुनना है।
0: जी
1: है, लोग जहाँ पर रहते।
0: जी, आपकी पसंद पर आपका ये गीत हम आपको जरूर सुनाएंगे। आपसे बातचीत की बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। संतोष जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नमस्कार।

इसी के साथ हमारा कार्यक्रम हेलो फरमाइश अब यही समाप्त होता है। मुझे यानी डॉक्टर सविता को दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है रविंद्र कुमार प्रजापति। सुनते रहिए आकाशवाणी छतरपुर।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति सहयोग था डॉक्टर सविता धमीजा का और प्रस्तुति थी रविंद्र कुमार प्रजापति की। मीडियम वेब 444.4 मीटर अर्थात 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम भर दिए, प्रस्तुति रविंद्र कुमार प्रजापति की।

0: बहुदी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को और डॉक्टर प्रणति और हमारे साथी राजेंद्र अहिरवार को बहुत बहुत नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
2: बहुत बहुत नमस्कार हमारी डॉक्टर प्रणति जी और आदरणीय सर आपको बहुत बहुत नमस्कार।
0: जी जैसा कि हमारे श्रोताओं को मालूम है कि हम लेकर आते हैं उनका पसंदीदा कार्यक्रम बहुदी और इसमें हमारे श्रोता भेजते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं समीक्षा सुझाव और इसको हम सभी पढ़ते हैं और उनके जवाब देते हैं। तो आज रविवार है और बहुदी कार्यक्रम के लिए हम सभी बैठे हुए हैं। तो देखिये राजेंद्र जी और हमारे पास आज पहले की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही पत्र हैं तो शुरू करते हैं आज का बहुदी कार्यक्रम और उठाते हैं पहला पत्र हमें किसका प्राप्त हुआ है।
2: प्रणति जी आप उठाइए पहला ये ईमेल पर पत्र हमारे किन श्रोताओं का मिला हुआ है।
1: बिल्कुल मैं बहुत उत्सुक हूँ आज के ये प्रोग्राम को लेके और ये पहला पत्र आया है संतोष नामदेव अभय अनिल अजीत अनीता ज्योति संजना रेखा भारती पूर्वी रूही शक्ति भक्ति आदर्श लव अनु अनन्या और नामदेव परिवार वालों का और ये पत्र इन्होंने लिखा है मेन मार्केट ग्राम पोस्ट सॉरी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से।
2: क्या लिखते हैं आगे हमारे संतोष जी।
1: ये लिखते हैं कि कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले सम्मानीय श्री रविंद्र सर और श्री राजेंद्र सर जी को नामदेव परिवार का नमस्कार। आगे ये लिखते हैं 18 जून का वरिष्ठ उद्घोषक श्री हर्ष पांडे जी से रविंद्र सर जी की बातचीत सुनी। 1 घंटा 30 मिनट कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। बहुत ही कर्णप्रिय लगी। पुरानी बातें साझा की। इससे पहले श्री राकेश खरे जी की भी बातचीत सुनवाई। दोनों कार्यक्रम के लिए रविंद्र सर को कोटि कोटि बधाई और आगे भी दोनों वरिष्ठ उद्घोषकों की मुलाकात समय समय पर आती रहेगी यही आशा करते हैं। साथ ही ये लिखते हैं आगे 19 जून का भक्तिमय कार्यक्रम वंदना में बहुत ही प्रिय भजन सुनवाए। दिन की शुरुआत भक्तिमय से हुई। 20 जून का गीत गुंजन में पिता की मुख्य भूमिका पर प्रकाश डाला गया और गीत भी एक से बढ़कर एक पिता से संबंधित बजाए गए।

0: सच में बच्चों के लिए एक पिता की क्या कीमत होती है, ये उनसे पूछिए जिन बच्चों के पिता नहीं हैं, सिर्फ यादों में बस के रह गए हैं और जीवन अधूरे मन से बिता रहे हैं। इसी दिन का जवाब गुनगुना उठे मैं, एक से बढ़कर एक मित्रों की यादें सुनी और गीतों का चयन भी सुना, लाजवाब लगा। इसी दिन की काव्य गोष्ठी में एक से बढ़कर एक कविताओं का आनंद लिया। सभी कवियों का इतनी सुंदर कविताओं का वाचन करने के लिए बहुत बहुत आभार। 21 जून को पर्यावरण दिवस पर और फादर्स डे पर की गई चर्चा अधिकांश हर कार्यक्रम में की गई बहुत ही शानदार लगी। इसी दिन का लोक रंजन, हेलो फरमाइश और भवदीय कार्यक्रम में रविंद्र सर और राजेंद्र सर जी के द्वारा पढ़े पत्र, ईमेल और सटीक जवाब मिले। इससे ये पता चलता है कि कार्यक्रम किस प्रकार जा रहे हैं। लेकिन मेरा मत तो ये है कि छतरपुर केंद्र हम सब बुंदेलखंड मित्रों की जान है। 24 जून का मनभावन में किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है गीत सुना दिल गदगद हो गया। बिल्कुल जैसे ही 10 बजते हैं इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। आगे 25 जून का वंदना लोकरंग सबरंग में हरियाणवी लोकगीत का समावेश और शिवेंद्र शुक्ला जी की प्रस्तुति में आपकी पसंद कार्यक्रम बहुत ही शानदार लगे। एक बात और कहना चाहते हैं ये कि अभी भी कुछ उद्घोषक लाइव ईमेल शामिल नहीं करते। आपकी पसंद में तो इसके लिए 15 मिनट पूर्व ईमेल भेजने का आदेश किया जाए जिससे सभी मित्रों को आशा रहेगी शामिल होने की। इसी दिन युवाओं की पसंद युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत सुना बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। इसी दिन ग्राम सभा में ग्रामीण किसानों की फसल सही मिले विषय पर जानकारी संजीवनी बूटी से कम नहीं होती। आगे 26 जून का वंदना श्री रामचरितमानस गान प्रसंग चिंतन और फिल्म संगीत सुना शानदार प्रस्तुति रही। इसी दिन 8:30 बजे शास्त्रीय संगीत में पंडित ओमकार नाथ शास्त्री से देशी ख्याल गायन सुना। ये कार्यक्रम सच में मैंने अभी तक के रिकॉर्ड में तीसरी बार सुना, मन गदगद हो गया। और इसी दिन लोकरंग में जितेंद्र चौरसिया से स्वच्छता गीत गांव नगर सुंदर बनाने सुना। अगर हम सब प्रयास करें तो ऐसा संभव है, सभी अपने अपने रास्ते में स्वच्छता बनाए रखें तो गांव नगर सच में सुंदर लगेंगे और बीमारी भी दूर रहेगी। साथ ही विवाह गीत में सिया बन गई एक कर्णप्रिय लोकगीत दिल छू गया। इतने अच्छे कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी मित्रों का दिल से आभार, साथ ही कार्यक्रम प्रमुख श्री रविंद्र सर जी का भी दिल से आभार इतने शानदार कार्यक्रम के लिए। और शेष अगले पत्र में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप सभी श्रोताओं की मांग रहती थी कि फीमेल वॉइस भी बीच बीच में शामिल किया करें
2: जी।
1: तो देखिए, आज हमारे बीच में डॉक्टर प्रणति जी ने बहुत सुंदर तरीके से पत्र आपका पढ़ा है। आपने इस पत्र में 18 जून से लेकर 26 जून तक के कार्यक्रमों का जिक्र किया है जिसमें लगभग सभी कार्यक्रम आपको पसंद आए हैं। विशेष रूप से बात करें तो कार्यक्रमों की जो विषय वस्तु है या गीतों का चयन है उसकी आपने सराहना की है और लाइव ईमेल का भी आपने जिक्र किया है कि लाइव ईमेल पढ़ा करें। तो देखिए, हमने पिछले सप्ताह से ही कुछ बदलाव किए हैं फरमाइशी कार्यक्रमों में। जिस दिन ईमेल का कार्यक्रम रहेगा उस दिन सिर्फ ईमेल ही पढ़े जाएंगे, तो आपको भेजना है ईमेल, लेकिन बहुत पहले नहीं। अगर कार्यक्रम 10:30 का है तो 10 बजे के आसपास आप ईमेल भेजें जिससे शामिल होने की जो प्रायिकता है वो बढ़ जाए। क्योंकि देखिए, ईमेल कम से कम प्रतिदिन लगभग 200 के ऊपर ईमेल आते हैं और सारे ईमेल शामिल करना संभव नहीं हो पाता है। आपने लिखा है कि छतरपुर केंद्र हम बुंदेलखंड मित्रों की जान है। देखिए, यही आपके जो प्रेम भरे शब्द हैं हमारे उद्घोषकों कंपियरों का उत्साह वर्धन करते हैं और नए नए कार्यक्रमों को बनाने में मदद मिलती है उन्हें भी। ऐसे ही कार्यक्रमों को सुनते रहें, पत्र भेजते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
2: और डॉक्टर प्रणति जी, देखिए एक और ईमेल हमें मिला है ग्राम पनवाड़ी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से पूजा वर्मा और देवी दीना हरवार का,
0: और मैं चाहती हूँ ये पत्र आप पढ़ें।
2: बिल्कुल, लिखते हैं कार्यक्रम प्रस्तुत आदरणीय रविंद्र कुमार प्रजापति जी और राजेंद्र जी को प्यार भरा नमस्कार। आगे आप लिखते हैं, 13 जून को गीत गुंजन कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। इसी दिन कार्यक्रम जवाब गुनगुना उठे में भूपेंद्र वर्मा जी की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी। हमारे भूपेंद्र वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। 13 जून को भवदीय कार्यक्रम सुना जिसमें राजेंद्र जी और रविन्द्र कुमार प्रजापति सर जी की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी। 25 जून को रात्रि का मनभावन कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा जिसे पेश कर रहे थे हमारे इमरान खान जी। 26 जून को उर्मिला यादव जी की प्रस्तुति में आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने को मिला जिसमें अधिक से अधिक पत्र शामिल हुए और गीत भी एक से बढ़कर एक सुनाए गए। इसके अलावा आकाशवाणी छतरपुर के विभिन्न कार्यक्रम बहुत ही शानदार तरीके से पेश किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पत्र के साथ। और इसी के साथ हमारी पूजा वर्मा जी अपने पत्र की समाप्ति करती हैं। डॉक्टर प्रणति जी
1: जी, पनवाड़ी से पत्र भेजती हैं पूजा जी, और इस पत्र में आपने 13 जून से लेकर 26 जून तक के कार्यक्रमों का उल्लेख किया है। विशेष रूप से देखिए बात करें गीत गुंजन जब आप गुनगुना उठे भौदी और आपकी पसंद कार्यक्रम, ये आप निश्चित रूप से सुनते हैं कार्यक्रमों को आकाशवाणी छतरपुर के माध्यम से। ऐसे ही पत्र भेजते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
2: और अगला ईमेल उठाइए डॉक्टर प्रणति जी।

0: ईदगाह में मिला हुआ है।
1: बिल्कुल, ये अगला पत्र आया है ग्राम खकल विकास खंड नदी गांव जिला जालौन उत्तर प्रदेश से, और ये पत्र भेजने वाले हैं दीपक सिंह गुर्जर। ये मेल भेजने वाले हैं दीपक सिंह गुर्जर
0: जी।
1: ये अपने मेल में लिखते हैं, 19 जून को लोकरंग कार्यक्रम सुना जिसमें सहोदरा राठौर से कार्यक्रम के आरंभ में कृष्ण भजन सुना एवं विविध लोकगीत सुने। कार्यक्रम सदाबहार लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कार निर्माण में माँ बच्चों की प्रथम गुरु होती है। वो अपने आचरण प्रेम और ममता से बच्चों में सत्य सदाचार और मानवीय मूल्यों का बीज बोती हैं। माँ की गोद ही बच्चे का प्रथम विद्यालय होता है जहाँ वो जीवन के नैतिक पाठ और सहनशीलता सीखता है। बच्चों के संस्कार और भविष्य को आकार देने में माँ की भूमिका कई मायनों में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऐसी ही एक वार्ता सुनी 19 जून को संस्कार निर्माण में माँ की भूमिका। वार्ता बहुत मार्मिक लगी। वार्ताकार थी सुप्रिया अवस्थी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 20 जून को जब आप गुनगुना उठे कार्यक्रम सुना जिसमें दर्शना गोस्वामी जी ने एक अलग ही अंदाज में कार्यक्रम पेश किया, अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दिन को ग्राम सभा कार्यक्रम में श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो लोक रंजन सुना जिसे अपनी मधुर आवाज एवं कुशल अंदाज में पेश किया मैथिली शरण तिवारी जी ने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 21 जून को हिंदी महक के अंतर्गत वार्ता सुनी योग का महत्व। इस वार्ता के माध्यम से जाना कि योग करने के अनेकों फायदे एवं योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, वार्ता उपयोगी लगी। वार्ताकार जगदीश प्रसाद भट्ट जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दिन को फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश सुना जिसमें भूपेंद्र जी ने सभी श्रोताओं से हर बिंदु पर चर्चा की, कार्यक्रम बहुत शानदार रहा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दिन साप्ताहिक पत्रोत्तर कार्यक्रम भवदीय सुना जिसमें राजेंद्र जी का पत्रों का पढ़ना एवं रविन्द्र जी का उत्तर देना बहुत लाजवाब लगा, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। 22 जून को श्रोताओं के पत्र एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद सुना जिसमें बहुत ही सुमधुर गीत सुने पेशकर्ता सविता मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दिन सवाल हमारे जवाब आपके अंक 125 सुना, कार्यक्रम ज्ञानपूर्ण रहा, धन्यवाद। 25 जून को युववाणी में हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम की जगह पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा, पेशकर्ता सौम्या शर्मा एवं महिमा दीप पटेल को बहुत बहुत धन्यवाद। 26 जून को हिंदी महक के अंतर्गत वार्ता सुनी स्वच्छ पर्यावरण सुरक्षित भविष्य, वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण लगी, वार्ताकार मनोज मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 27 जून को आपकी पसंद कार्यक्रम सुना जिसमें पूर्णिमा चतुर्वेदी जी ने सभी श्रोताओं के पत्रों को कार्यक्रम में स्थान दिया एवं गीत भी बहुत अच्छे सुनवाए। इसी दिन जवाब गुनगुना उठे कार्यक्रम सुना जिसमें पूर्णिमा चतुर्वेदी जी का पत्रों का वाचन करना बहुत ही अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 28 जून को हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुना जिसमें आदरणीय रविन्द्र जी ने सभी श्रोताओं से बहुत ही अच्छी बातचीत की, कार्यक्रम बहुत ही शानदार लगा, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दिन साप्ताहिक कार्यक्रम भवदीय सुना जो कि हमेशा की तरह शानदार लगा, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: इस पत्र में रजीन जी देखिए, इन्होंने 19 जून से लेकर 28 जून तक के विभिन्न कार्यक्रम सुने हैं। आपने कार्यक्रमों की देखिए विषय वस्तु कहें, प्रस्तुतिकरण कहें, गीतों का चयन कहें, ये सभी आपने देखिए उत्साहपूर्वक सुने हैं और उसी उत्साहपूर्वक आपने समीक्षा लिखी है। विशेष रूप से देखिए वार्ताओं का जो संदेश रहता है उसको आपने बहुत गंभीरता से आत्मसात किया है और हम कहें कि इस तरह के श्रोताओं की जो पहचान है वो सजग श्रोता ऐसे ही होते हैं जो विषय वस्तु पर गहन चिंतन करते हैं कि रेडियो से क्या सुनवाया गया और क्या उद्देश्य था विषय वस्तु
0: और आपने क्या आत्मसात किया।
2: बिल्कुल, ऐसे ही कार्यक्रम सुनते रहे और अपने जो प्रेम भरे समीक्षा भरे पत्र हैं हम तक समय से निकालकर प्रेषित करते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और सर अगला डाक के माध्यम से सर अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है, लिख भेजा है हरबिलास सिंह तोमर ग्राम तरसमा जिला मुरैना मध्य प्रदेश से, हमारे नियमित श्रोता है, आपने ये लिखा हुआ है, स्पीड पोस्ट से ये लेटर हमें मिला है
2: जी।
0: सर ये पत्र हम उठाते हैं, लिख भेजा है पत्रवाचक व उत्तरदाता श्रीमान जनों को सादर अभिवादन व नमस्कार। आगे आप लिखते हैं, योग है परम शक्ति से जुड़ने का अटूट बंधन, अंतर मन में उतरे गहराई से प्रफुल्लित होता तन मन। आगे आप लिखते हैं, 12 जून को आकाशवाणी के 90 वर्ष एवं आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष इस संदर्भ में किया गया कार्यक्रम सराहनीय लगा, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हरदिल अजीज सदाबहार पूर्व उद्घोषक श्री राकेश खरे साहब व विनम्र वाणी के धनी श्रीमान रविन्द्र कुमार प्रजापति जी का संवाद मनोहारी प्रेरणादायी एवं ज्ञानवर्धक लगा, कई जानकारियों से रूबरू हुआ। बहुत समय तक आकाशवाणी छतरपुर के कई कार्यक्रमों के पर्याय बने श्री राकेश खरे जी की हर बात असरदार लगी। आदमी को हर जगह सामंजस्य बनाए रखना जरूरी है, उनका ये वाक्य अत्यंत प्रेरक लगा, आपको शत शत

0: मन जीवन में हमेशा आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आगे आप लिखते हैं 18 जून को ग्राम सभा में सुनो गीत, गुनो बतकाओ में अच्छे लोक गीत सुनवाए गए। वृक्षारोपण गीत व जल संरक्षण गीत पसंद आया, इसके पहले एक वार्ता सुनी पसंद आई। आगे आप लिखते हैं हरी खाद का मृदा स्वास्थ्य पर प्रभाव, इस विषय पर विशेषज्ञ महोदय जी व श्री रविन्द्र कुमार प्रजापति जी का संवाद लाभप्रद व सराहनीय लगा। हरी खाद का महत्व तो समझाया गया। 19 जून को हिंदी महक में कहानी सुनी निर्मम वासना पसंद आई। कहानीकार ने बड़े ही मार्मिक ढंग से कथानक प्रस्तुत किया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रातःकालीन फिल्म संगीत मनमोहक लगा, प्रस्तुतकर्ता को सहृदय धन्यवाद। ग्राम सभा में मानस प्रवचन सुना पसंद आया। 20 जून को भक्ति संगीत का कार्यक्रम अत्यंत सुरुचिपूर्ण लगा। खेती किसानी में मिट्टी परीक्षण की विधि समझाई गई, इसके महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। चिंतन में समय की महत्ता व सत्य पर प्रकाश डाला गया। वाचन शैली को सलाम करता हूँ, आपको बार बार धन्यवाद। शेष अगले पत्र में, और इसी के साथ हमारे हरविलास सिंह तोमर जी अपने इस पत्र की समाप्ति करते हैं। सर,
1: आपने हमारे यहाँ के 12 जून से लेकर 20 जून तक के कार्यक्रमों का जिक्र किया है, जिसमें हिंदी महक से लेकर ग्राम सभा, खेती किसानी, चिंतन, वंदना और इसके अलावा आपने जो महत्वपूर्ण भेंट वार्ता जो हमारे आकाशवाणी छतरपुर के माध्यम से सुनी है, इन सभी का देखिए आपने आनंद लिया है और कार्यक्रमों में क्या अच्छा लगा है ये भी आपने लिखा हुआ है। मेहनत से देखिए पत्र भेजते हैं, हैंड राइटिंग में ही पत्र लिखा हुआ है और डाक के माध्यम से हमें भेजते
0: हैं। लिखा हुआ रंग बिरंगा,
1: बिल्कुल। तो ऐसे ही आप आकाशवाणी छतरपुर के प्रति लगाव बनाए रखें। इतने दूर रहते हैं मुरैना मध्य प्रदेश में,
0: नियमित श्रोता है
1: और वहाँ पर देखिये नियमित श्रोता है, हर कार्यक्रमों में देखिए उनकी सहभागिता।
0: अच्छा सर, ये अपनी खेती में उपयोग भी करते हैं, आपने क्या देखा है, क्या सुना और कितना लाभ मिला?
1: देखिए यही उद्देश्य है हमारा जो रेडियो का है, सूचना, शिक्षा, मनोरंजन। तो शिक्षा तो लेना ही है मनोरंजन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
0: सर, अगला ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ है, लिख भेजा है ग्राम तीतरा खलीलपुर जिला जालौन से अंजलि जाटो और इनकी परिवार वालों ने।
1: जी,
0: आप लिखते हैं दिनांक 27 जून को गीत गुंजन कार्यक्रम सुना बहुत अच्छा लगा। इसी दिन जवाब गुनगुना उठी कार्यक्रम सुना, ये भी बहुत अच्छा लगा। इन दोनों कार्यक्रमों में बहन पूर्णिमा चतुर्वेदी जी की प्रस्तुति रंग लाई। बहन पूर्णिमा जी को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई। फिर इसी दिन ग्राम सभा में श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंजन सुना, जिसमें प्रस्तुति थी नंदिनी बहन और खुशी बहन की। आप दोनों को कार्यक्रम को बड़ी ही लगन से बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई। आगे आप लिखते हैं 28 जून का हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुना पसंद आया, आदरणीय रविंद्र प्रजापति सर की प्रस्तुति पसंद आई। इसके बाद भवदी में हमारे राजेंद्र जी ने पत्रों को बड़े ही सुमधुर आवाज और स्पष्टता से पढ़ा, उन्हें बधाई। 29 जून को युववाणी में वार्ता सुनी वीरांगना रानी दुर्गावती, वार्ताकार थी रीना चतुर्वेदी। इसी दिन रात में रमतूला कार्यक्रम सुना बहुत अच्छा लगा। इसी दिन रात्रि में मनभावन कार्यक्रम सुना, जिसे पेश कर रहे थे हमारे आशीष खरे जी। इन्होंने कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया, सभी श्रोताओं को पसंद आया। 30 जून को हमने ओम प्रकाश तिवारी से बुंदेली किस्सा सुरहन गौ सुना, ये किस्सा बहुत ही पसंद आया। और सर जी, इस सप्ताह आपने जो फरमाइशी कार्यक्रमों में कुछ बदलाव किए हैं, वे हम श्रोताओं के लिए बहुत ही सुलभता का संदेश है, जिससे हम श्रोताओं को मालूम रहेगा कि आज कार्यक्रम में पत्र होंगे या ईमेल या सोशल मीडिया पर ये आधारित होगा हमारा कार्यक्रम। इतना अच्छा और सुलभ सुधार लाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी अंजलि जी अपने पत्र की समाप्ति करती हैं। सर
1: देखिए अंजलि जी, हम जो भी बदलाव करते हैं, हम सभी जो श्रोता हैं उनकी सुविधा को भी ध्यान में रखते हैं, हमारे जो प्रस्तुतकर्ता हैं उनकी भी सुविधा का ध्यान रखना होता है। और अभी देखिए ईमेल, सोशल मीडिया और डाक सभी पत्रों को शामिल किया जाता था, तो ऐसे में स्थिति ऐसी बनती थी कि कई बार बहुत सारे पत्र छूट जाते थे। अब इस नई व्यवस्था में यह रहेगा कि पत्र छूटने की जो गुंजाइश है वो बहुत कम रहेगी। जिस दिन जिस माध्यम से पत्र शामिल होंगे उसी माध्यम में हमारे श्रोता भेजेंगे। आपने इस पत्र के माध्यम से 27 जून से लेकर 30 जून 4 दिनों के कार्यक्रमों का जिक्र किया है और सभी कार्यक्रम आपको पसंद आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
0: और डॉक्टर प्रणति जी, देखिए ये अगला ईमेल हमें किनका मिला है।
2: ये अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से, और ये लिखने वाले हैं श्रीमती वंदना गौहर और चंद्रीश गौहर जी।
1: जी,
2: तो सर मैं बताऊं ये क्या बोल रहे हैं, अपने मन के भाव।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: पहले तो ये लिखते हैं, महोदय जी नमस्कार। स्वच्छ पर्यावरण, सुरक्षित भविष्य केवल एक नारा नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व और खुशहाली की अनिवार्य शर्त है। यह सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर ही हम एक स्वस्थ, हरित और स्थायी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण कोई एक दिन का काम नहीं बल्कि निरंतर चलने वाली जिम्मेदारी है। आपके केंद्र से हमने दिनांक 26 जून को कार्यक्रम

0: महक के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण सुरक्षित भविष्य विषय पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जनउपयोगी वार्ता सुनी जो बहुत ही पसंद आई। इसी दिन हमने कार्यक्रम ग्राम सभा में मूंगफली फसल की वैज्ञानिक तकनीक विषय पर बहुत ही उपयोगी और समसामयिक वार्ता सुनी, बहुत ही पसंद आई। दिनांक 27 जून को हमने बुंदेली सुगंध में काव्य पाठ सुना, अच्छा लगा। इसी दिन हमने कार्यक्रम गीत गुंजन और जब आप गुनगुना उठे सुना, इसका प्रसारण बहुत अच्छा लगा। दिनांक 28 जून को हमने हिंदी महक में एक वार्ता बुंदेली लोकगीतों की विलुप्त होती विधाएं सुनी। एक चिंतनीय विषय पर वार्ताकार के विचार सुनकर मन और दिल पर एक चिंता की लकीर सी खिंच गई। बुंदेलखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में लोकगीत समय के साथ साथ विलुप्त या हाशिए पर चले गए हैं। आधुनिकीकरण, टेलीविजन, मोबाइल, सोशल मीडिया के प्रभाव और गांव में पारंपरिक चौपालों के टूटने से बहुत सी विधाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसी दिन का हेलो फरमाइश अच्छे और सार्थक समसामयिक संवादों के कारण मन को भा गया। कार्यक्रम भवदीय में पत्रों और संदेशों के जवाबों को सुनकर आनंद आ गया। दिनांक 29 जून को कार्यक्रम हिंदी महक में काव्य पाठ में रचनाएं मन को भा गईं। कार्यक्रम युववाणी में वीरांगना रानी दुर्गावती पर की गई विशेष चर्चा बहुत ही अच्छी लगी। ग्राम सभा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बहुत महत्वपूर्ण और सारगर्भित चर्चा सुनी, अच्छी लगी। दिनांक 30 जून को हमने कार्यक्रम फिल्मी पत्रिका में हमने एक विशेष और महत्वपूर्ण चर्चा पुराने बनाम नए गाने बदलते संगीत का सफर और श्रोताओं की पसंद ओटीटी प्लेटफॉर्म और बदलता सिनेमा डिजिटल युग में मनोरंजन की नई दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा सुनी, बहुत अच्छी लगी। कार्यक्रम युववाणी में युवाओं और समाज से जुड़े समसामयिक विषयों पर हर रोज एक रोचक चर्चा सुनने को मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस के महत्व को विस्तार पूर्वक समझाया गया तथा मौसम परिवर्तन का खेती पर पड़ने वाले प्रभाव पर उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जो बहुत ही पसंद आई। इसी दिन हमने कार्यक्रम महिला सभा में एक वार्ता नियमित हेल्थ चेकअप का महत्व विषय पर बहुत ही जनउपयोगी वार्ता सुनी, अच्छी लगी। पति पत्नी के रिश्तों में समझदारी और बेहतर संवाद बहुत ही पसंद आई। कार्यक्रम घरणी आंख के कीट और उनका प्रबंधन, बेर अरंडी के कीट और उनका प्रबंधन, नैनो उर्वरक एवं महत्व पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई जो बहुत पसंद आई। दिनांक 1 जुलाई को कार्यक्रम युववाणी में हमने फिल्म अभिनेता सुभाष अहिरवार से महिमा जी की बातचीत सुनी जो मन को भा गई। प्रस्तुत वार्ता में फिल्म अभिनेता जी ने अपने संघर्ष, अभिनय यात्रा, अनुभवों से जुड़ी बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसी दिन हमने ग्राम सभा में वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत एक विशेष चर्चा सुनी। नारियल खाद के प्रयोग से लाभ के बारे में संपूर्ण जानकारी मिली। मूंगफली की उन्नत प्रजातियां बहुत ही उपयोगी जानकारी साझा की जिसे सुनकर अच्छा लगा। कार्यक्रम महिला सभा में हमने महिलाओं में एनीमिया से बचाव और जागरूकता विषय पर बहुत ही जनउपयोगी और महत्वपूर्ण चर्चा सुनी, अच्छी लगी। दिनांक 2 जुलाई को हमने बुंदेली सुगंध में श्री रामचरितमानस गान में बुंदेली पर वार्ता सुनी, अच्छी लगी। कार्यक्रम महिला सभा में रिश्ते और परिवार में महिलाओं की भूमिका विषय पर एक वार्ता सुनी, बहुत ही प्रेरणास्पद लगी। कार्यक्रम युववाणी में विश्व खेल पत्रकार दिवस के अवसर पर विशेष चर्चा सुनी जिसमें खेल पत्रकारिता के महत्व, खेल जगत की खबरों की भूमिका और युवाओं के लिए इससे जुड़ी संभावनाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई जो हमारे ज्ञान कोश में बढ़ोतरी कर गई। उक्त सभी कार्यक्रमों के प्रस्तुतकर्ता, संकलनकर्ता, सहयोगियों, आमंत्रित विशेष अतिथियों, वार्ताकारों, कवि और लेखकों और उद्घोषकों को हमारा दिल से साधुवाद और आभार स्वीकार हो। अंत में ये लिखते हैं, इनका सुझाव भी है कि अभी हाल ही में आपने कार्यक्रम आपकी पसंद और मन भावन के लिए जो दिन मेल पत्र और सोशल मीडिया फेसबुक के लिए तय किए हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि इसके लिए आप एक तय सीमा मात्र 1 घंटे की रखें। 1 घंटे में प्राप्त फरमाइशों को ही पूरा करें। बार बार मेल और संदेश भेजने वाले श्रोताओं को ब्लॉक कर दें शेष अगले पत्र में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा अभिवादन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नियमित श्रोता चंदेश गौहर जी। और इस पत्र में आपने 26 जून से लेकर 2 जुलाई तक के कार्यक्रमों का जिक्र किया है और विशेष रूप से जो हमारी वार्ताएं, भेंट वार्ताएं समसामयिक रहती हैं या चर्चाएं रहती हैं उनका आपने जिक्र किया है और सभी को आपने कुछ न कुछ देखिये कमेंट्स जरूर किया है कि क्या आपने सीखा है इनके माध्यम से और क्या शिक्षा मिलती है। और अंत में देखिये इन्होंने सुझाव लिखा है और सुझाव भी देखिये महत्वपूर्ण है। इनके सुझाव को देखिये अमल में भी लाना हमने शुरू कर दिया है।
2: बिल्कुल,
1: उन्होंने लिखा है कि बहुत पहले से सोशल मीडिया पे अगर हम नहीं डालेंगे पोस्टर तो जो अनावश्यक कमेंट्स हैं जो कार्यक्रम

0: भी नहीं सुनते हैं, कमेंट्स डाल के छोड़ देते हैं, तो ऐसे लोगों का कमेंट्स अपन शामिल ही ना करें। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, चाहे वो आपकी पसंद हो या मनभावन हो, शुरू होने के ठीक 30 मिनट पहले हम अपलोड करेंगे सोशल मीडिया पर,
1: इससे हमारे जो श्रोता लाइव सुन रहे हैं वो जुड़ सकेंगे।
0: बिल्कुल, तो लाइव आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और 30 मिनट पहले से शुरू हो जाएगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और सभी को मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चंद्रेश जी। और सर, अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है ग्राम्बा पोस्ट तालगांव तहसील भांडे जिला दतिया से मेहरबान सिंह नागल, प्रताप सिंह नागल और गुड़िया नागल का।
0: जी,
1: आप लिखते हैं, कार्यक्रम जब आप गुनगुना उठे में हमने पूर्णिमा चतुर्वेदी जी की प्रस्तुति सुनी, शानदार कार्यक्रम रहा, इन्हें बहुत बहुत बधाई। इसी दिन कार्यक्रम लोक रंजन हमने ग्राम सभा में सुना, खुशी बहन, नंदिनी बहन ने बहुत अच्छा कार्यक्रम सुनवाया, उन्हें बधाई। 28 जून को कार्यक्रम हेलो फरमाइश सुना, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही और इसमें श्रोताओं ने भी बेहतरीन बातचीत रखी, बहुत ही शानदार कार्यक्रम लगा। इतनी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए हमारे रविन्द्र सर जी को बधाई। आगे आप लिखते हैं, 29 जून को रात्रि 10 बजे कार्यक्रम मन भवन में आशीष खरे जी की इतनी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। आगे आप लिखते हैं, 28 जून को भवदी कार्यक्रम सुना जिसमें राजेंद्र जी का पत्र पढ़ना और हमारे रविन्द्र सर जी का जवाब देना बहुत ही अच्छा लगा, इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए हमारे रविन्द्र सर जी को बधाई। 29 जून को कार्यक्रम एक ही संगीतकार कार्यक्रम सुना जिसमें आनंद मिलन के संगीतबद्ध कुछ गीत हमने सुने, बहुत अच्छी लगी, शानदार कार्यक्रम था और इतना अच्छा कार्यक्रम सुनकर हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो गया। विनीता अमर जी को बधाई। इसी दिन को हमने कार्यक्रम आपकी पसंद सुना जिसे लेकर आई थी विनीता अमर जी, इसमें बहुत अच्छी ईमेल पढ़ी गई, शानदार कार्यक्रम रहा, बेहतरीन प्रस्तुति के लिए विनीता जी को बहुत बहुत बधाई। 30 जून को सुबह 7:30 पर फिल्म संगीत सुना, इसमें सदाबहार गीत सुनाए गए, बहुत अच्छे गीत सुनाने के लिए, इतनी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए निधि पांडे जी को बहुत बहुत बधाई और शेष समीक्षा अगले पत्र में। इसी के साथ ही हमारे मेहरबान सिंह नागल जी अपने पत्र की समाप्ति करते हैं। सर,
0: 28 जून से लेकर 30 जून तक के कार्यक्रमों का जिक्र है इसमें और सभी कार्यक्रम देखिए आपको पसंद आए हैं, जो आपने कार्यक्रमों के नाम लिखे हैं, ऐसे ही कार्यक्रम सुनते रहें और पत्र भेजते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कार्यक्रम का सर अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है, हमारे नियमित श्रोता है बाबू यादव, श्रीमती मनीषा यादव, दुर्गेश यादव, सीमा यादव और अनु यादव, अरुणेश यादव, देवकी विहार कॉलोनी सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से।
0: जी हाँ,
1: आप लिखते हैं, कुछ की इच्छा रखने वाले सचमुच कुछ पा जाते हैं, जो सब कुछ पाने निकले वो जीवन भर पछताते हैं। भवदीय कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता कार्यक्रम प्रमुख आदरणीय रविंद्र कुमार प्रजापति जी और सहयोगी राजेंद्र अहिरवार जी, आप दोनों जनों को मेरे परिवार की ओर से सादर नमस्कार स्वीकारें आप। और आगे आप लिखते हैं, दिनांक 19 जून 2026 को सुबह 7:20 पर हिंदी महक के अंतर्गत कहानी सुनी निर्मम वासना, कहानीकार थे नीतिराज सिंह, बहुत ही संवेदना से भरी कहानी थी कि कैसे एक ममता की मूरत कही जाने वाली स्त्री अपने छोटे से पुत्र को अकेला छोड़कर किसी पर पुरुष के साथ चले जाती है। मानवता के लिए कलंक है और ये आधुनिकता की देन है कि एक माँ जो ममता की मूर्ति कही जाती है अपने रिश्ते को कलंकित कर दिया। बहुत ही खूबसूरत कहानी के लिए कहानीकार को दिल से धन्यवाद। इसी दिन शाम को ग्राम सभा में एक भेंट वार्ता सुनी, मानव स्वास्थ्य में अलसी का उपयोग, भेंट करता थे आदरणीय रविन्द्र कुमार प्रजापति जी और वार्ता की मेहमान रही रेणु पटेल जी। बहुत ही उपयोगी वार्ता थी कि कैसे अलसी का छोटा सा बीज हमारे स्वास्थ्य पर चमत्कारिक भाव डालता है। बहुत ही सुंदर भेंट वार्ता के लिए आप दोनों को हृदय से धन्यवाद। आगे आप लिखते हैं, दिनांक 20 जून को सुबह 7:20 पर बुंदेली सुगंध के अंतर्गत कहानी ग्रहणी से लेखिका सुनी और कहानीकार थे सुधांशु राजपाल, बहुत ही सकारात्मक विचार से भरी ये कहानी लगी। कुछ भी असंभव नहीं है, बस हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए। खूबसूरत कहानी के लिए कहानीकार को दिल से धन्यवाद। दिनांक 25 जून 2026 को सुबह 7:20 पर बुंदेली सुगंध में काव्य पाठ कवि बाला प्रसाद यादव जी से सुना, आपकी सभी रचनाएं अच्छी लगी, आपको दिल से धन्यवाद। इसी के बाद एक ही कलाकार में सुनिधि चौहान के गाए गीतों को सुना, आनंद आ गया, प्रस्तुतकर्ता को दिल से धन्यवाद। इसके बाद कार्यक्रम सबरंग में हरियाणवी गीत भी खूब अच्छे लगे। दिनांक 26 जून 2026 की सुबह 7:20 पर हिंदी महक के अंतर्गत एक वार्ता सुनी, स्वच्छ पर्यावरण 16 सुरक्षित भविष्य। और वार्ताकार थी मनोज मिश्रा। वास्तव में पर्यावरण दिवस एक दिन मना लेने से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, हमें इसे अपनी दिनचर्या में और हो सके तो स्वच्छता पर, ग्रीन एनर्जी पर जोर देना होगा। सुंदर वार्ता के लिए वार्ताकार को दिल से धन्यवाद। दिनांक 1 जुलाई 2026 की सुबह 7:20 पर बुंदेली सुगंध के अंतर्गत एक वार्ता सुनी बुंदेलखंड के कृषि गीत। और वार्ताकार थी रमेश।

0: सतीश चंद विश्वकर्मा जी। बहुत ही सुंदर मौसमी गीतों से सजी और कृषि गीतों पर आधारित ये वार्ता लाजवाब लगी। वार्ताकार को दिल से धन्यवाद। और आखिर में एक खुशखबरी देने के लिए कार्यक्रम प्रमुख जी को धन्यवाद कि आपने आपकी पसंद और मनभावन के लिए ईमेल, फेसबुक और पत्रों का दिन निश्चित कर दिया। सभी श्रोताओं का संशय समाप्त हो गया। अंत में सभी कार्यक्रमों की खूबसूरत प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी छतरपुर की पूरी टीम का दिल से धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे बाबू यादव जी अपने पत्र की समाप्ति करते हैं। सर,
1: प्रस्तुतकर्ता और श्रोताओं के बीच में जो मधुर संबंध है और संवाद वो ठीक तरह से हो सके, इसी के लिए देखिए व्यवस्था की गई है कि जिस दिन जिस माध्यम से पत्र शामिल करने की बारी है उसी माध्यम से पत्र शामिल होंगे, तो हमारे श्रोताओं को भी सहूलियत होगी कि आज इस माध्यम से है और हमने पत्र भेजा है तो शामिल होगा। धन्यवाद आपकी पसंद और मनभावन के लिए। आपके जो उत्साहपूर्वक शब्द हैं उसके लिए विशेष आभार। आपने हमारे यहाँ के बुंदेली सुगंध, हिंदी महक, आपकी पसंद और बुंदेलखंड के कृषि गीत, अलसी के स्वास्थ्य लाभ, ये सब जानकारी जो आपने समाहित की है इस पत्र में, इससे लगता है कि देखिए आप इतने दूर रहते हैं और हमारे आकाशवाणी छतरपुर को लगातार सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर समीक्षात्मक पत्र के लिए। तो देखिए ये तो था हमारा आज के लिए बहुधी कार्यक्रम, और बहुधी कार्यक्रम में प्राप्त हुए जो पत्र थे बहुत ही तन्मयता से और प्रेम पूर्वक पढ़े गए हमारे डॉक्टर प्रणति जी द्वारा और राजेंद्र जी द्वारा। तो जाने से पहले जैसा कि हम बताते हैं बहुधी कार्यक्रम में डाक का पता और ईमेल का पता।
0: ईमेल का पता बताइए डॉक्टर प्रणति जी।
2: बिल्कुल, पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी सर आपको कि आज मुझे इस कार्यक्रम में आपने शामिल किया और मैं भवदीय के माध्यम से भी श्रोताओं से जुड़ सकी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा पता है भवदीय छतरपुर @gmail.com bhavdiychatarpur@gmail.com। और आगे का पता आप बताएंगे राजेंद्र जी।
0: डाक का पता है श्रोताओं बहुत सीधा है, कार्यक्रम भवदीय द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश, पिन 471001।
1: तो सुनते रहे कार्यक्रम
3: भवदीय
1: आकाशवाणी
3: छतरपुर।
4: तो अभी आप सुन रहे थे पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम भवदीय, प्रस्तुति थी रविंद्र कुमार प्रजापति की। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजने वाले हैं, अगला प्रसारण कुछ ही समय में हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से करते हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी भोपाल है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुनें।

0: दिल से निकली है जो बात वो गानों में ढल जाती है, और जब जुड़ते हैं आप और हम तो महफिल खुद ब खुद बन जाती है। श्रोताओं नमस्कार, इस सुरीले सफर की हम सफर हूँ मैं आकांक्षा आपके साथ। स्वागत है आप सभी का अपने मनपसंद कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में। श्रोताओं संगीत वो जादुई डोर है जो सीधे दिल को छूती है। कभी कोई धुन हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आती है तो कभी कोई पुराना नगमा पुरानी यादों के गलियारों में ले जाता है। लेकिन ये सफर तब तक अधूरा है जब तक इसमें आपकी पसंद और आपकी आवाज शामिल न हो। सुर हमारे, आवाज आपकी और बातें दिल की। जी हाँ, तो फोन उठाइए, हमारा फोन नंबर है 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। तो अपने कॉल्स का सिलसिला शुरू कीजिए, हम हैं आपके साथ आपसे बात करने के लिए। आइए मिलते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो
1: जी। दीदी नमस्कार।
0: नमस्ते, कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आपका स्वागत है। हमारी बात किन से हो रही है?
1: सेवड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश से लोकेंद्र गुर्जर से।
0: लोकेंद्र जी कैसे हैं आप?
1: जी दीदी बढ़िया है।
0: मौसम कैसा है वहाँ?
1: मौसम दीदी कल बारिश हुई थी सुबह के टाइम 10 बजे पे, तो अच्छी बारिश हुई थी
0: जी।
1: और

0: अभी उमस थी तो बारिश से जो कि उमस थी तो गर्मियों से राहत मिली है और थोड़ी बारिश हुई थी, बादल छाए हैं, हो सकती है कई बारिश हो सकती है, माने ज्यादा उमस भी है तो बस हम तो यही आशा करेंगे मैम के पानी बरस जाए, खेतीबाड़ी का एक कार्यक्रम है वो चालू हो जाए।
1: जी बहुत जरूरी है खेती के लिए, हम सभी के लिए पानी का होना। आपका दिन कैसा चल रहा है अभी?
0: बिल्कुल बढ़िया चल रहा है दीदी, अपन कृषक हूँ तो खेतीबाड़ी से जुड़ा हूँ, तो खेतीबाड़ी का काम चल रहा है, धान की खेती की तैयारी चल रही है दीदी, और बस धान लगने वाली है दीदी, 8-10 दिन बाद धान लगेगी।
1: आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
0: आज दीदी फिल्म का नाम है सिंदूर, उसका एक गीत है, नाम सारे भूल जाने लगे, वक्त बे वक्त तुम याद आने लगे।
1: इस गीत से जुड़ी कोई याद है, कोई बात है?
0: नहीं दीदी, क्या है दीदी, 19 के जो गीत है
1: जी
0: मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे शब्बीर कुमार हुए, मोहब्बत अजीज हुई
1: जी,
0: तो इनके गीत बहुत अच्छे लगते
1: हैं। बहुत आपकी पसंद बहुत अच्छी है। वैसे ये गीत मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर जी ने गाया है, लीजिए सुनिए तो अपनी पसंद का ये गीत। नमस्ते,
0: धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन जुड़े हैं, क्या हम जान सकते हैं?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बात कर रहा हूँ राजस्थान गांव का नाम अंतरल बुगला।
0: पूरन जी, वहाँ मौसम कैसा है राजस्थान में?
1: बस मैडम बढ़िया है, यहाँ मौसम बादल छा रहे और रात को बारिश हुई थी मैडम थोड़ी बहुत, खेतों में भी बिजाई चालू हो गई है।
0: क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम हम खेती बाड़ी करते हैं, कल खेतों में भी बिजाई हो गई, खेतों में बुआया खेतों में वो करा दिया, खेतों में नाच पड़ दिया मैडम बाजरा।
0: अच्छा, अन्नदाता हैं आप हमारे, अपना ध्यान रखिएगा, फसलों का ध्यान रखिएगा। और आज बताइए आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है घरवाली और बारवाली और उसमें गाना गाने के बोले तारा रा रा रा रा ऐसा कुछ गाना है।
0: तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: संगीत से जुड़े आपके मनपसंद फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किन से हमारी बात हो रही है?
1: बात कर रही हूँ काव्या।
0: काव्या कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: मैं सतना जिले से बात कर रही
0: हूँ। सतना से। काव्या क्या करती हैं आप?
1: मैं स्टडी करती हूँ।
0: आवाज लग रही है आपकी कि आप स्टूडेंट हैं। क्या पढ़ती हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं या कॉलेज में पढ़ती हैं?
1: मेरा इस साल 12th है।
0: अरे बोर्ड एग्जाम जी, तो कैसी तैयारी चल रही है आपकी?
1: मैम तैयारी तो सही है, बस मैंने आज फर्स्ट बारी कॉल किया है।
0: कॉल किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कॉल भी लग गया तो आपको तो खुशी बहुत हो रही होगी।
1: बहुत खुशी हो रही है। आप कौन बात कर रहे हैं?
0: मैं आकांक्षा बोल रही हूँ। आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: मूवी का नाम है गब्बर इज बैक।
0: गब्बर इज बैक जी। इस फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: तेरी मेरी कहानी बारिशों का पानी।
0: तो बारिश के मौसम के लिए ये गीत सुनना चाहती हैं या इस गीत से जुड़ी कोई आपकी याद है?
1: बरसात का मौसम आ गया इसलिए।
0: ये गीत आपको पसंद है? ठीक है। काव्या जी किस सब्जेक्ट से आप 12th कर रही हैं? क्या लिया है आपने?
1: मैं बायो।
0: बायोलॉजी साइंस लिया है आपने। डॉक्टर बनेंगी?
1: जी।
0: ठीक है, तो आपके आगे भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से मेहनत कीजिएगा और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, ये हमारा विश्वास है। आपने फोन किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है, अपना परिचय दीजिए।
1: ओम प्रकाश प्रजापति बोल रहा हूँ मैडम।
0: ओम प्रकाश प्रजापति जी, कहाँ से बात हो रही है आपसे हमारी?
1: जिला खरगोन, तहसील भगवानपुरा, ग्राम पंचायत दुलकोट से बात कर रहा हूँ।
0: खरगोन मध्य प्रदेश।
1: जी मैडम।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैडम। पानी बारिश हो रही है, आज रात भर भी हो गई है और अभी भी बारिश चल रही है हमारे यहाँ पे।
0: बारिश का आनंद ले रहे हैं?
1: जी मैडम, घर पे ही।
0: अच्छा, आज क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: गाना सुना दीजिए, ब्लैक मेल फिल्म का, पल पल दिल के पास।
0: ठीक है, लीजिए तो अपनी पसंद पर सुनिए फिल्म ब्लैक मेल का ये गीत। नमस्ते।
1: जी मैडम।

0: जी करता हूँ, गाँव में रहता हूँ, संदलपुर गाँव आखिरी पास गाँव मैडम मेरा ग्वालियर पास में।
1: अच्छा,
0: पान की खेती करता हूँ, जिस पान होता हमारे गाँव में। जी जी,
1: तो पान के शौकीन लोगों को, लोगों तक अच्छे अच्छे पान भिजवाते हैं आप?
0: हाँ, खिलाते पान उनके।
1: हाँ जी। अच्छा, आज पसंद बताएं अपनी क्या सुनना चाहते हैं?
0: जीवन मृत्यु पिक्चर गाना सुनवाना, दिल में सितारों का आंगन हो।
1: आपने हमें फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार।
1: कालीचरण यादव, ग्राम संदलपुर आत्री से।
0: कालीचरण यादव जी,
1: जी जी,
0: कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: अच्छा मैडम, आप कौन बोल रही हैं?
0: मैं आकांक्षा बोल रही हूँ।
1: मेरे को गाना सुनना है।
0: गाना सुनने के लिए तो आपने फोन किया है, गाना तो हम आपको सुनवाएंगे ही क्योंकि आज कार्यक्रम यही है। पहले आपसे बात तो कर लें हम।
1: हाँ, बात कर लो आप।
0: जी कैसे हैं आप?
1: अच्छे मैडम।
0: अच्छे हैं। कैसा समय बीत रहा है इस समय आपका?
1: समय बीत रहा है, गर्मी बहुत पड़ रही मैडम।
0: बारिश का मौसम है? बारिश नहीं हो रही है आपके यहाँ?
1: बारिश बहुत हो रही है, बहुत बारिश हो रही है।
0: अच्छा तो मौसम तो सुहावना होगा ना कालीचरण जी?
1: गर्मी ज्यादा पड़ रही है, मौसम ठंडक है पर गर्मी ज्यादा है।
0: अच्छा क्या करते हैं आप?
1: मैं घर पे पानी की

0: हेलो नमस्ते, कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आपका स्वागत है। किन से हमारी बात हो रही है?
1: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैडम जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
0: लोकेंद्र जी?
1: जी मैडम।
0: उज्जैन से, कैसे हैं आप?
1: बस बिल्कुल मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और आकाशवाणी भोपाल से जुड़े हुए रहते हैं। और हम तो भोपाल आकाशवाणी को आज से नहीं करीब 25-30 सालों से सुन रहे हैं मैडम।
0: तो बस हम चाहते हैं ये आपका साथ ऐसे ही बना रहे, आप यूं ही हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहें।
1: जी मैडम जी, अब तो अच्छा लगता है, अब तो आकाशवाणी भोपाल डीटीएच के माध्यम से भी सुन सकते हैं, मोबाइल ऐप के माध्यम से सुन सकते हैं। पहले हम रेडियो पर सुनते थे पुराने दौर में
0: जी।
1: अब रेडियो का धीरे धीरे जैसे कह चलन तो बहुत है, पर अब रेडियो पे कम सुनाई देते हैं। अब डिजिटल जो प्लेटफॉर्म आ गए हैं, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी आपके प्रोग्राम की मतलब जो अपडेट मिलती रहती है फेसबुक पर हमें
0: जी, डिजिटलाइजेशन होने के कारण देखिए कितना फायदा है कि दूर दूर के श्रोता हमसे जुड़ जाते हैं।
1: जी जी मैडम जी, और अच्छा लगता है, कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आपके फोन करे गीत सुने वह भी अच्छा लगता है, और ये फोन वाले प्रोग्राम है और जो भी परिचर्चा आती है सभी प्रोग्राम सुनते हैं, अच्छे लगते हैं मैडम।
0: आपका पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है लोकेंद्र जी?
1: मैडम जी अधिकतर तो मैं फोन वाले प्रोग्राम सुनता हूँ, और एक बात, आपकी गीत हमारे को अच्छा लगता है क्योंकि उसमें विषय अलग अलग विषय आते हैं ना
0: जी,
1: उस पर परिचर्चा होती है, सभी श्रोता मित्रों की विचार
0: जानने को मिल जाते हैं,
1: जिसमें बात श्रोता मित्रों की रहती है और गीत आपके रहते हैं।
0: हाँ जी, तो मतलब आपको फोन इन प्रोग्राम ही ज्यादा पसंद है?
1: जी जी मैडम जी बिल्कुल
0: जी। तो आज आप क्या सुनना चाहते हैं बताइए?
1: ये गाना है मैडम जी, फिल्म का नाम है नसीब, ये नसीब गोविंदा वाली है।
0: अच्छा
1: हाँ, इसमें गाना है शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं।
0: तो ये सैड सॉन्ग क्यों सुनना चाहते हैं, इसके पीछे की कोई वजह है?
1: मैडम जी बहुत जगह मैंने ये गीत की चॉइस की है पर मुझे कहीं गीत मिला नहीं, पर मैंने आज सोचा कि भोपाल आकाशवाणी पर फोन लगेगा तो ये गीत की चॉइस करूंगा।
0: अच्छा,
1: और ये तो कुछ दोस्त भी है मेरे।
0: हाँ जी, नाम लीजिए उनका, बताइए।
1: राम बाबू मालवी जी है भोपाल से, प्रेम सिंह जी है और भगवान सिंह जी है और शारदा प्रसाद जी।
0: ठीक है, तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, और साथ ही आपके सभी दोस्त भी इस गीत का आनंद लेंगे
1: जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्ते।

0: कार्यक्म फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: हाँ नमस्ते मैम।
0: नमस्ते,
1: हम बोल रहे हैं पंडित शिव नारायण तिवारी सागर से।
0: शिव नारायण तिवारी जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है, मौसम बढ़िया है।
0: हाँ जी मौसम तो बहुत बढ़िया है, तो मौसम का आनंद कैसे ले रहे हैं आप?
1: अरे बहुत बूंदाबांदी होती है, कभी अच्छी हवा चलने लगती है, बादल गरजता है, बिजली चमकती है।
0: जी ऐसे में कभी आपको काम पे तो निकलना ही पड़ता है, फिर आप क्या करते हैं?
1: बिल्कुल जाना पड़ता है।
0: जी आज आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: आज सुनवाना आप बेताब फिल्म का बादल क्यों गरजता है।
0: मौसम से रिलेटेड गाना ही आज आप सुनना चाहते हैं?
1: जी
0: चलिए सुनिए अपनी पसंद का फिल्म बेताब का ये गीत। नमस्ते।

0: नमस्ते, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फोन के उस पार कौन है, हमारी किन से बात हो रही है, अपने बारे में बताइए।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग,
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: रानू गुप्ता जी, आप नियमित श्रोता हैं हमारी, कैसी हैं आप?
1: कैसी आप?
0: हम ठीक हैं, आप कैसी हैं?
1: हम भी अच्छे हैं, और आपसे बात हो रही है तो और ज्यादा अच्छे, क्योंकि आप ना हमारी पसंदीदा अनाउंसर में से एक है।
0: ओ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ सभी अनाउंसर्स आपकी पसंदीदा हैं, क्योंकि आपकी सभी से बात होती है और बहुत अच्छी बात होती है। रानू जी, मौसम कैसा है वहाँ देवास में?
1: आज सुबह से यहाँ बारिश हो रही है।
0: अच्छा, तो बारिश के इस मौसम में कुछ खास कर रही हैं आप?
1: कुछ खास तो बस शाम को एक शादी में जाना है इंदौर
0: जी,
1: तो बस उसी की तैयारियों में लगी हुई हूँ।
0: शाम की शादी की तैयारी अभी सवेरे से?
1: आज मतलब जो मेरी भांजी है उनकी शादी तो हो चुकी है, बट रिसेप्शन है तो जाना है शाम को, बस उसी में लगी हुई हूँ।
0: ठीक है, आज कौन सा गीत सुनना चाहती है बताइए।
1: मूवी का नाम है खट्टा मीठा, और गाने के बोले आइला रे आइला, क्योंकि ये जून का महीना मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, मतलब एकदम हरियाली हरियाली छाती है।
0: हाँ, मौसम तो बहुत अच्छा है। ये गीत आपको क्यों पसंद है रानू जी?
1: थोड़ा डांस करने का मन कर रहा।
0: हाँ, शाम को है भांजी का रिसेप्शन, उसकी तैयारी में डांस का मन कर रहा है आपका, हमें तो यही लग रहा है।
1: थैंक यू मैम।
0: रानू गुप्ता जी, आपने हमें फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्ते।
1: मैं तेजस्वी चंदवा मध्य प्रदेश से देवीदास वाली बोल रहा हूँ। फोन करेगी सुने?
0: कैसे हैं आप?
1: हाँ बहुत बढ़िया हूँ मैडम जी। और यहाँ बहुत बड़ी मस्त बारिश हुई है, बढ़िया खतरनाक।
0: खतरनाक?
1: हाँ बहुत मजा आ गया।
0: चलिए ऐसे ही आनंद आप लीजिए इस मौसम का। आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: चलो सजना जहाँ तक घटा चले
0: जी ये

0: गीत है मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का।
1: हाँ मैडम जी, मेरे हमदम मेरे दोस्त
0: जी, बिल्कुल ये गीत आप तक पहुंच रहा है बस कुछ ही देर में। नमस्ते श्रोताओं, वक्त का पहिया चलता रहता है और खूबसूरत लम्हे यादों में बदलते रहते हैं। बातें तो दिल की खत्म नहीं हुई, पर घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब हम आपसे अनुमति लें। जी हाँ, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आज का ये सुरीला सफर और आपकी प्यारी प्यारी बातें और लाजवाब गानों की फरमाइशें, सच मानिए आज का दिन आप सबने बेहद खास बना दिया है। ऐसे ही बने रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति थी आकांक्षा की। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब से कुछ देर बाद शिवपुरी में अदानी समूह द्वारा स्थापित किए जा रहे लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत के रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 211 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का आज सुबह रायपुर के एम्स में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थीं और रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सरकार ने मूल्यों में स्थिरता के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित खरीद मूल्य से प्याज उत्पादक किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज ओंकारेश्वर और महेश्वर के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के दौरे पर हैं और प्रदेश में सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान के अंतर्गत जीआरपी भोपाल द्वारा कल 5 किलोमीटर साइबर जागरूकता मैराथन का आयोजन कर नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में व्यापक रूप से जागरूक किया गया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं इन श्रोताओं के पसंद का फिल्मी नगमा, जिसे हमने लिया आपकी कसम फिल्म से। आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं। आनंद बख्शी के बोलों को संगीतबद्ध किया राहुल देव बर्मन ने। सुना चाहा है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा। बेमित्रा से ये पत्र आया सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटे से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामिनी वर्मा का। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है बिलहरी बड़खेड़ा कटनी से संतोष सिंह ठाकुर रामाधार दुबे सुमेर पटेल सुदामा सेन बारेलाल बढ़े फेरन यादव शेख मुनीर मंसूरी और ग्राम पहरुआ से ये पत्र आया राम कुमार लोधी और संजय पुरी का। इन श्रोताओं ने सुना चाहा है मनहर का गाया निदा फाजली का लिखा उषा खन्ना का संगीतबद्ध किया ये गाना जिसे हमने लिया आप तो ऐसे ना थे फिल्म से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया प्रियंका पंचोलिया गुनगुन संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने इसी गीत की फरमाइश भेजी है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक जयवीर सिंह ठाकुर अमनदीप अनिल शर्मा कालका से शुभचंद्र बजाज बिट्टा और साहिल ने इनकी पसंद है सागर फिल्म का गीत जिसे आवाज दी किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

अभिनेत्री। लीजिए इस फिल्म का गीत सुनिए, लता मंगेशकर का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना है, संगीत तैयार किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुना चाहा गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद परमानंद पंकज प्रमोद रोहित और मोहित ने। नेपाल पैलेस सागर से ये पत्र आया है, तिलक राणा मीना राणा मोनिका नूपुर ऋषिका और रॉबिन का।

लता मंगेशकर की आवाज में गाए मजरू सुल्तानपुरी के इस गीत को लिखे हुए संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म थी अभिनेत्री। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त करने की छाया पाठक को आगे दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी भोपाल।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
3: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दी
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
3: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
2: अच्छा
4: आरबीआई कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से, जिसमें आज आप सुनेंगे धारावाहिक हंसना मना है, इसका भाग 4।

लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी। एक ट्रेन की कहानी है जिसमें मैं सफर कर रहा था, वो किस स्पीड में चल रही है इसका अंदाज आपको आगे हो जाएगा। वो 20 की स्पीड में थी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में थी कि 50 की थी कि 100 की थी, इसका अंदाज जरा देखिए। चली जा रही है ट्रेन, गर्मी का मौसम है, पसीना पसीना हो रहे हैं हम। जो पंखे लगे थे वो सिर्फ दिखने भर के थे, वो चल नहीं रहा था, एक दो जरूर चल रहे थे। चली जा रही थी ट्रेन, अचानक वो ट्रेन रुक गई, थोड़ा सा जंगली एरिया आया। जब वो ट्रेन रुक गई तो मैंने पूछा कि यार अचानक क्या हो गया, ये ट्रेन रुक क्यों गई है, लगता कोई स्टेशन आया। तो एक दो लोगों ने कहा, नहीं नहीं नहीं साहब, स्टेशन नहीं आया है, क्या हुआ है, एक भैंस वो इंजन के आगे आगे आ गई है। तो हमने कहा वो भैंस कट गई है क्या, कहा नहीं साहब कट नहीं गई है, वो खड़ी हो गई है। तो फिर क्या किया जाए, वो कह साहब रेलवे के जो गार्ड हैं और दूसरे कर्मचारी हैं वो जा रहे हैं उस भैंस को आगे, इससे भगा देंगे फिर अपनी ट्रेन चलेगी। हमने कहा बहुत बढ़िया। दो चार मिनट ट्रेन रुकी रही, फिर गाड़ी चालू हो गई, चलती रही ट्रेन। अचानक फिर ट्रेन रुक गई। मैंने कहा भैया अब क्या हुआ, कोई स्टेशन आया क्या। तो लोगों ने कहा नहीं साहब स्टेशन तो नहीं आया। तो हमने फिर ट्रेन क्यों रुक गई, तो एक सज्जन बोलते हैं कि वो वाली भैंस जो पीछे आ गई थी ना, वही वाली फिर से आगे आ गई है। अब साहब हुआ क्या, हम लोग तो चले जा रहे थे, साम दाम दंड भेद, भाई सफर तो तय करना ही करना था, बहुत लंबा सफर था हमारा। चली जा रही ट्रेन, बड़ा मजा आया, गर्मी बहुत हो रही थी, अचानक वो ट्रेन एक स्टेशन पे रुक गई। हमने कहा चलो स्टेशन तो आया है, चाय वाय लेने लगा मैं, तो अचानक क्या देखता हूं कि एक लड़का पंखे बेच रहा था, हाथ वाले पंखे जो हाथ से चलते हैं, वो वाले पंखे लेके आवाज लगा रहा था, चराने का पंखा ले लो, आटाने का पंखा, चराने वाला पंखा लो, आटाने का पंखा, बढ़िया वाला पंखा ले लो, बढ़िया वाला पंखा। तो मैंने कहा भाई गर्मी तो मेरे को भी लग रही है, घंटे चार घंटे का सफर है, पंखा ले लिया।

0: किया जाए। मैंने पंखे वाले को बुलाया, हमने भाई पंखे कितने कितने के, एक है चार आने का, दूसरा है आठ आने का। हमने कहा भाई एक काम कर, दो चार घंटे के लिए कौन पैसे ज्यादा खर्च करे, तू एक काम कर चार आने वाला दे दे। तो उसने मुझे चार आने वाला पंखा दे दिया। हम बड़े खुश कि चलो कुछ ठंडी ठंडी हवा आएगी। ट्रेन जब चलने को थी, बस उसके दो मिनट पहले ही मैंने वो पंखा लिया और उसको हिलाने लगा। मैं हिलाता हूं तो क्या देखता हूं, आधा मिनट भी वो पंखा नहीं चला, उसके अंदर जितने भी मटेरियल लगा था पंखे का पूरा जमीन में आ गया। हमने कहा अरे यार ये क्या हुआ, 25 पैसे खर्च किए और इसमें तो हवा ही नहीं निकल रही, ये तो टूट गया, दो मिनट एक मिनट में भी टूट गया। मैंने फौरन पंखे वाले को बुलाया, हमने पंखे वाले इधर आना भाई, इधर आइए, ये क्या दिया आपने, ये कैसा पंखा दिया आपने, मैंने जैसे ही इसको हिलाया है तो ये तो टूट गया। तो पंखे वाला बोलता है आपने कितने वाला पंखा लिया था, मैंने कहा भाई चार आने वाला पंखा लिया था। आपने गलती की साहब, ये जो चार आने वाला पंखा और आठ आने वाला पंखा है इसमें जरा सा फर्क है, ये जो आठ आने वाला पंखा मैं देता हूं ना वो उसको उसे हाथ में पकड़ना पड़ता है और हाथ को ऐसे हिलाना पड़ता है तो हवा लगती है ना। हमने कहा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, और ये चार आने वाले की क्या खासियत है, इसकी खासियत ये है साहब, इसको हाथ में ऐसा पकड़ना पड़ता है और अपना सिर को हिलाना पड़ता है बड़ी जोर जोर से। हमने ट्रेन आगे बढ़ी, बड़ा मजा आ रहा था साहब, सफर का अलग आनंद आ रहा था। अचानक जहां मैं बैठा था उसके ऊपर की तरफ एक दो लोग बैठे हुए थे, कुछ इस तरफ बैठे थे कुछ उस तरफ बैठे थे। एक बुजुर्ग जैसे एक नौजवान साथी से कुछ पूछते हैं, वो बुजुर्ग ने नौजवान से पूछा क्यों भाई कहां जा रहे हो, तो लड़का बोलता है बुजुर्ग से कहले मैं तो साहब जबलपुर जा रहा हूं। कहले अच्छा अच्छा जबलपुर, तो भाई मैं भी जा रहा हूं। कहले अच्छा बाबू जी जबलपुर तो हम भी जा रहे हैं। कहले वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, जबलपुर में आप कहां रहते हैं। कहले जबलपुर में मैं तो वहां मतलब जो बड़ा फुहारा है, कमानिया गेट है, बड़ा फुहारा है, व्यापारी क्षेत्र है, बड़े अच्छे अच्छे लोग रहते हैं वहां पर, वहां रहता हूं। तो बुजुर्ग नौजवान से बोलते कहले बहुत खूब बात है भाई, वाह वाह वहां तो हम भी रहते हैं। तो लड़का बोलता अच्छा बाबू जी कितनी अच्छी बात है, आओ वहां पे कहां रहते हैं साहब। कहले वहां एक कृष्ण भगवान का मंदिर है, उसके पास में रहता हूं। तो लड़का बोलता कहले क्या बात है बाबू जी, वहां तो हम भी रहते हैं, अच्छा कृष्ण भगवान के मंदिर के पास। बुजुर्ग बोलते हैं बहुत खूब बात है, वहां आप कहां रहते हैं। कि साहब कृष्ण भगवान के मंदिर के बिल्कुल बाजू से जो गली जाती है ना, जहां वकील साहब रहते हैं और एक कपड़े वाले भैया रहते हैं, एक किराने वाले भैया रहते हैं। हमने हाँ हाँ हाँ हाँ मैं वहीं रहता हूं। फौरन बुजुर्ग बोलते कहले कितनी अच्छी बात है बेटा, देखो है जहां तुम रहते वहां हम रहते, जिस शहर में तुम रहते उसी शहर में हम रहते। तो बुजुर्ग ने बोला बेटा एक बात और बताओ, तुम्हारे मकान का नंबर क्या है। तो लड़का बोलता हमारे मकान का नंबर तो 115 है। तो बुजुर्ग बोलता कहले कितना इत्तेफाक, क्या बढ़िया बात है बेटा, कहले मेरे मकान का भी नंबर 115 है। मेरा हो गया दिमाग खराब। हमने यार ये दोनों बुजुर्ग और ये नौजवान एक ही शहर में रहते हैं, एक ही महल्ले में रहते हैं, पूरा एरिया एक ही गली मकान, वो नंबर वही सब कुछ वही, लेकिन ये आपस में पहचानते नहीं कि ये कौन है और वो कौन है। मैंने अचानक सवाल किया किससे, बुजुर्ग से। हमने क्यों बुजुर्ग यार आप एक बात बताइए, आप दोनों एक ही शहर में रहते हैं, एक ही इलाके में रहते हैं, एक ही गली में रहते हैं, अरे एक ये तो छोड़िए आप एक ही मकान में रहते हैं और उसके बाद आप लोग आपस में पहचानते नहीं कि ये कौन है वो कौन है। तो बुजुर्ग कुछ बोले, वो लड़का ऊपर से कूदा मेरे सामने और मुझसे बोलता है आप चुप रहिए, हम लोग बाप बेटे हैं, हम लोग बोर हो रहे थे इसलिए मनोरंजन कर रहे हैं। और अब एक और हंसोड़, विनय जैन, जब देखो तब दांत निपोरी इनकी आदत है, फिक्र नहीं करते किसी को पसंद आए या ना आए। देखिए तो क्या कहते हैं ये,
1: हंसी की एक फुलझड़ी प्रस्तुत कर रहा हूं कि साहब कॉलेज की एक लड़की अपने प्रिंसिपल साहब के पास पहुंची और बोली
2: सर
1: क्या बात है
2: सर, कॉलेज के सभी लड़के मेरे को ना बुआजी कहके चिढ़ाते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सर।
1: रुक जाओ बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, रमेश आप खड़े हो जाइए, आप इनको बुआ जी बोलते हैं।
3: नो सर, मैं इनको बुआ जी नहीं बोलता।
1: बैठ जाइए। सुरेश आप खड़े हो जाइए, आप जरूर इनको बुआ जी बोलते होंगे। बोले माफा भगवान की कसम खा के कह रहा है, हम तो बोल ही नहीं सकते। बोले भैया भगवान ने तुम्हारा मुंह दिया है, कैसे नहीं बोल सकते, कैसे नहीं बोल सकते। बोले मां साहब ऐसा नहीं बोल सकते, काहे की सारा कॉलेज तो हमें फूफा जी कहता है।

0: एक ऐसे साहब जिन्हें बोलने में बहुत परेशानी महसूस हुआ करती थी, बहुत सारी बातें अटक अटक कर बोला करते थे। तो जैसे ही साहब प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए अखबार पढ़ रहे थे और एक सज्जन अपना बहुत सारा सामान लेके प्लेटफॉर्म में एंट्री हुए, अब उनको क्या मालूम कि सामने वाले साहब अटक अटक के बोला करते हैं। बड़ा हाथ में सामान वगैरह लिए हुए थे, एक हाथ में छाता था, एक हॉलडाल कंधे में था, एक संदूक दूसरे हाथ में था, एक बंदूक उस कंधे में थी और पोजीशन वजन से बिल्कुल डाउन हुई जा रही थी। जैसे ही प्लेटफॉर्म में एंट्री हुए, उनने आना देखा था, अटक के बोलने वाले साहब के पास पहुंच के फौरन सवाल किया, क्यों भाई साहब वो भोपाल जाने वाली राजकोट एक्सप्रेस कहाँ है, जल्दी बता दो, बहुत भजन है भाई। तो अटकेलाल साहब जिनका पूरा नाम अटकलाल झपट सिंह था, उन्होंने फौरन जवाब दिया, किसी और से पूछा होता तो बता दिया होता, अब तक भोपाल जाने वाली राजकोट एक्सप्रेस वो जा रही। साहब भी बड़े गुस्से में आ गए अटकलाल झपट सिंह जी और बस स्टैंड पहुंच गए। बोले साहब मैं बस से जाऊंगा। सारे लोग बस स्टैंड पहुंच गए। बस जैसे ही चली, सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, एक सज्जन बस में और चढ़े और वो भी बोलने में अटकते थे और बैठे कहां वो अटकने वाले सज्जन के बाजू में। जैसे ही बस चली, जो नए सज्जन थे उन्होंने पुराने सज्जन से सवाल किया,
1: क्यों भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सीता, और तुम्हारा नाम क्या है?
2: मेरा नाम भी घसीटा है मगर उतना नहीं जितना तुमने घसीटा।
0: अपनी श्रीमती जी को लेकर साली की दुकान में पहुंचे, काउंटर मैन से जाके क्या बोलते हैं,
1: तो भाई साहब साली है?
0: तो काउंटर मैन जवाब देता है, हाँ भाई साहब साड़ी है मगर इतनी लंबी नहीं है। अपने चाचा जी की किताबों की दुकान में पहुंचते हैं। किताबों की दुकान चाचा जी की बुक्स एंड स्टेशनर्स के नाम से एक बाजार में खुली हुई थी और चाचा जी की जैसी दुकान में जाते हैं तो चाचा जी से पहुंचते ही से चाचा जी भोजन करने के लिए जाने वाले रहते हैं तो फौरन वो अपने भतीजे को बुलाते हैं और बोलते कि अच्छा हुआ आप आ गए, हमारी दुकान में बैठो और हम खाना खाने जा रहे हैं, और भतीजे को बिठा देते हैं। तो साहब जैसे ही चाचा जी ने उनसे बोला कि देखो तुम अटक बेटा, तुम यही दुकान में बैठो और मैं खाना खा के आता हूँ, समझे, और ध्यान रखना ग्राहकी का जरा। ठीक है चाचा जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे ही चाचा जी गए, फौरन एक ग्राहक आया और इनसे पूछा, भैया वो संस्कृत की कुंजी देना। साहब ने फौरन कुंजी निकाल के सामने काउंटर पर रख दी। कितने की?
1: 7 रुपए 75 पैसे।
3: क्या भाई साहब आप मजाक कर रहे हैं, इतनी बड़ी दुकान चलाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमारा छोटा भाई 7 रुपए में लेके गया है, 2 घंटे बाद ऐसा बिल्कुल 75 पैसे रेट बढ़ गया, बिल्कुल गलत है ये तो।
1: तुम चुप रहो, वो लड़का 75 पैसे बोलने के पहले ही ले गया।
0: एक साहब बहुत ज्यादा गप हाँकने के शौकीन थे, शिकार के तो शौकीन थे ही, अपने किसी जमाने की बात लेकर बैठ गए, चार लोगों के बीच में अपना शिकार का वाकया सुनाने लगे।
4: बोलो साहब हुआ यूं कि मैं गया जंगल और मैंने देखा कि एक शेर चला जा रहा है, अब मुझे आया गुस्सा तो मैंने निकाली अपनी बंदूक, जैसे निकाली बंदूक तो शेर ने बंदूक देखी तो एक छलांग लगाई, और शेर ने जैसी छलांग लगाई तो मैं घबरा गया, और जैसे मैं घबराया तो शेर ने मेरे को दिया पटक।
0: बोले फिर तो अचानक किसी ने उनको बताया, बोले साहब आपका टेलीफोन आया, कोई आपको फोन पे याद कर रहा है। तो भाई साहब यहाँ गप सुनाते सुनाते वहां टेलीफोन पे किसी के साथ बात करने चले गए, आधा पौन घंटा कोई से टेलीफोन पे बात करते रहे, लौट के जैसे ही आए लोगों ने बोला हाँ साहब फिर आगे क्या हुआ? तो साहब तो वैसे ही गप्पी भूल चुके थे कि क्या सुना रहे थे। बोले साहब वो आप शेर का वाक्य सुना रहे थे कि गुस्से। बोले हाँ फिर हम लोग तो साथ में घूमने गए और बहुत देर बगीचे में

0: बैठे रहे, फिर एक साथ फिल्म देखी और नाश्ता वगैरह किया, वापस आके सो गए।
1: भाई वाह, लतीफे सुनाने में मकरंद बड़नेर कर का जवाब नहीं, यकीन नहीं आता ना, तो चले सुने इनको।
2: एक ट्रैफिक हवलदार सड़क पर खड़े ट्रैफिक का संचालन कर रहे थे, अचानक उन्होंने एक साइकिल वाले को आते हुए देखा और डंडा फटकारते हुए बोले, अरे रुक रुक, बिना हेडलाइट और बिना घंटे की साइकिल चलाता है। साइकिल वाला बोला, हवलदार जी हट जाइए, इसमें ब्रेक भी नहीं है। एक क्लास के दौरान मास्टर जी पढ़ा रहे थे कि पढ़ाते पढ़ाते उनका ध्यान अचानक एक छात्र पर गया। सभी छात्र तो उनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उस छात्र का ध्यान किसी और जगह लगा हुआ था। उस छात्र का नाम गया प्रसाद था और छात्र जो था वो कमरे के एक कोने में बिल में एक चूहे को अंदर और बाहर आते हुए जाते हुए देख रहा था। बार बार चूहा अंदर आ रहा था, बाहर जा रहा था और छात्र का ध्यान बिल्कुल उसी चूहे की ओर था। मास्टर जी परेशान हो गए, क्या बात है, कहीं और ध्यान दे रहा। मास्टर जी ने लगभग चीखते हुए कहा, अबे गया। लड़के ने कहा, नहीं मास्टर जी, अभी पूंछ बाकी है।
1: ध्यान रहे, आप सुन रहे हैं ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है हंसना मना है।
3: एक सुनने वालों से बस इतनी कहना है, हंसना मना है, हंसना मना है, हंसना मना है।
1: जन्मदिन आपने बहुत मनाए होंगे, खूब मनाए होंगे, बड़े प्यारे प्यारे मनाए होंगे, मगर हमारे दोस्त गोपाल तिवारी शामिल हुए एक खास जन्मदिन पर। सुनिए,
4: घटना गांव की है और गांव की इसलिए क्योंकि भारत गांव का देश है, गांव में बसता है। और ये पटेल साहब हैं, सरपंच बन गए, पटेल उनकी उपाधि है। उन्होंने अपने बच्चे का जन्मदिन कैसे मनाया वो एक घटना मैं आपको सुना रहा हूं। के पटेल साहब ने पटेलन से पूछा,
5: अरे काय पटेलन?
4: हाँ बोलो।
5: वो अपने गुड्डा को जन्मदिन कब है?
6: गुड्डा को जन्मदिन समझ लो आप, बड़ी जीजी को लड़का छठ में भाव और जी छोटी को भाव तेरहवीं के बाद चौथ को और जी समझ लो पंचमी को है, तो जो समझ लो कि हर छठ के दूसरे दिन की बात है। अरे तुम तो यार हर छठ टीजा ना बताओ, तुम मतलब डेट बताओ ना। हाँ समझ लो, हम तुम्हारा बोला हुआ आ रहा जब वते से नौकरी को और तुम गए, तुमने फिर कैंसिल करवा दई, उसके बाद पानी गए बरसो रहो खूब कड़क के बिजली, फिर ओरा गिरे थे। अरे तुम यार खगलो नहीं यार, तो मतलब बताओगे ये हुआ कब है? डायरी देखो। अच्छा एक मिनट, देख रहे लाकर डायरी, डायरी वायरी उन्होंने देखी और डायरी देख के बाद उन्होंने बताया कि ये कब हुआ। ये समझ लो कि तीज के दूज की बात 22 तारीख को भाव और आज है समझ लो 20 तारीख, कल छोड़ पा रहा हूँ जन्मदिन।
5: हाँ तो कहने लगे ठीक है, अब वो पहले जैसा जन्मदिन नहीं हो।
6: क्या समझ लो पहले जैसा नहीं होगा?
5: अरे पहले अपन वो चौक और वो सब नहीं कर लेते थे, मतलब बुला के आरती पूजा टीके चंदन वो मतलब नहीं होगा।
6: काय अब काय ना हुआ भाई, गुड्डा को तीसरा जन्मदिन वो काय ना हुआ?
5: तो बोले अरे नहीं समझो तुम, अब हम बन गए सरपंच।
6: हाँ बद तो बन गए, खूब वोट मिले।
5: अब जी जो है गुड्डा जो है इसका जन्मदिन अपन शहर की स्टाइल में मनाएंगे, लोगों को लगे तो कि नहीं मतलब अपन सरपंच बन गए ना, मतलब थोड़ा कादर खड़ी हो जाए जरा, समझा करो बात को।
4: अब साहब ये हुआ कि उसने कहा कि कैसे करेंगे?
6: करना कुछ नहीं है, अब जैसा आप बोलो वैसा करेंगे।
5: एक काम करेंगे, हम शहर से वो कैंडल वेंडल और केक वेक वो सब पूरा ले आएंगे और तुम पूरे गांव में चर्चा बिल्कुल भजवा देना, समझ गए ना, और फिर उसके बाद जो है अपन बढ़िया सेलिब्रेट करेंगे।
4: बात डिसाइड हो गई, कंप्लीट हो गई कि ऐसा मनाना है। पटेल साहब शहर चले और शहर से जैसे ही लौट के आए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया, जिस दिन गुड्डा का बर्थडे है उस दिन दरवाजा उन्होंने खटखटाया।
5: पटेलन, पटेलन
6: एक मिनट आ रहा है।
5: अरे क्या कर रहे, जल्दी खोलो यार दरवाजा।
6: एक मिनट आए कह रहे हो, मतलब ऐसी जल्दी मचा।
5: अरे जल्दी खोलो, मतलब डेढ़ घंटा हो गया, मतलब खड़े हो तुम, कहाँ खड़े हो उधर?
6: अरे भाई मतलब रार की दाल चढ़ी है, उधर खिचड़ी चढ़ी, एक तरफ माता रानी की रानी भी बना रहे, अब एक आदमी के तो काम करे, मतलब आ तुम खाली यहाँ चले आए।
5: अरे हाँ यार वो काफो के मतलब गाड़ी जो है हमारी खराब हो गई, तो ओके मतलब पीछे इंजन में काम निकला हो, अब इंजन बनवाओ दो चका पंचर, चका बनवाओ दो फिर पीछे चका पंचर, ये माने पूरी नपोर चौदस में मतलब पूरी दिक्कत हो गई, और धर माने लो करो सामान जो है तो छूट गो।
6: हमें मालूम है तुम्हारे भरोसे कच्छू नहीं हो सके।
5: अरे नहीं मतलब ऐसी बात नहीं, हम कोशिश हमने पूरी की थी, सब सामान ले लिया था, वो वहीं वो गैरेज में छूट गया।
6: तुम्हारे भरोसे रहती थी, चार चार ठैया लड़का बच्चा नहीं, तुम आ जाओ तुम तो अंदर, अब हमने सब व्यवस्था कर

0: आप ये अंदर आए और उन्होंने कहा अब ये बताओ कि अब वो कैसे मतलब करेंगे, अब फिर चौक बधाओ वाला होगा।
1: नहीं ऐसा नहीं कहा, आप हमें कहीं से समझ रहे भाई, जब आप सरपंच तो हम भी तो कछु है, और यहाँ से नहीं हम भी खूब पढ़े लिखे हैं।
0: अच्छा कहाँ पढ़ गई?
1: नहीं भी प्रौढ़ शिक्षक चल रहे हो आजकल, रेडियो में बता रहे पढ़े पढ़ाए जीवन बनाए, और एक नहीं एक दूनी दो चौके पांच छक्के आठ अलग खूब बढ़िया पढ़े हमने, कोचिंग क्लास पढ़ी हमने।
0: कौन से पढ़ लाई?
1: पंडित जी की ललकच पढ़ी, पंडित जी की बहुत बढ़िया पढ़ा, तुमने पढ़ा दो हमें।
0: तो ठीक है, तुमने व्यवस्था क्या करी जो दिखाओ हमें?
1: केक बना लो।
0: केक बना लो? केक कहाँ से बना लो तुमने?
1: नहीं टीवी पे हमने बाकी रैप शीट देखी थी।
0: क्या देखी रही?
1: रैप?
0: अरे रैप शीट नहीं है यार, वो तो तेल होता रैप शीट, रेसिपी, रेसिपी बोलते हैं। दो क्लास और पढ़ लेती बाबू की यहाँ, फालतू बात न कर तुम बाबू की यहाँ, ये तो दही दो सब अंदर कर लो बाबू को। ठीक है भाई ठीक है, गुस्सा नहीं हो तुम, मतलब जो बताओ कहाँ केक कहाँ?
1: जी अजी धरो देखो टीवी में धरो टीवी।
0: अरे बहुत गजब, बहुत बढ़िया यार। एक बात बताओ तुम।
1: हाँ वो पूछो
0: जी। इतना बढ़िया केक तुमने बनाया कैसे? इतना बड़ा इतना सुंदर मतलब बनाया है, ऐसा लग रहा कम से कम 10 किलो से कम का नहीं होगा ये केक। कितना बढ़िया बना, कैसे बनाया गया, तुम्हें आइडिया कैसे आया?
1: नहीं कछु नहीं, टीवी में हमने रेप शीट देखी, हमने दिमाग लगाओ कि अब जो केक तो हमें बनाने न वो बन है न कछु कैसे बनाए, तो हमने जुगाड़ करो। हम गए कहाँ बाजू में भी जो दुकान है ना किराना की, वो कहाँ गए हम? कहीं फिर हमने उसे कही, हमने भैया 6-8 ठैया फैमिली ब्रेड दे दू।
0: कौन सी ब्रेड है?
1: फैमिली ब्रेड।
0: अरे फैमिली ब्रेड बोलते यार बड़ी वाली को। फिर तो बोले फिर हम ब्रेड लाए, और लाके ब्रेडों की किनार हमने काट के माहे करी। अच्छा मतलब फेंक दी?
1: हाँ मैं फेंक दी, अलग कर दी। फिर हमने ऐसी 4-6 ठैया ब्रेड धारी, और गुड़ की बनाई चाशनी, तो गुड़ की चाशनी फिर ब्रेड फिर चाशनी फिर ब्रेड फिर चाशनी जो भी खाओ।
0: बहुत बढ़िया, फिर क्या करो?
1: फिर कच्चू नहीं गुड़ की चाशनी माह डार के अपनो हरी रंग होली को बचो, तो वो रंग 2-4 प्रकार के कलर और टीचू को रंग बना लो अच्छी रंग रोगन कर दो झगा झगके। फिर और क्या करो? नहीं दूध की मलाई बची तो आइसिंग करता ही होगी बन गया डर होगा। और सुनो ऐसी पन्नी की पंगड़िया बनाई हमने, और पंगड़िया बना के उसके अंदर भरी चाशनी में अपन थोड़ी सी मलाई मिला के और रंग मिला के अच्छे भरो, ऊपर से बांध के बढ़िया डिजाइनदार को नाम लिख दो हैप्पी बर्थडे टू यू गड्डा, और 3 लग दो 30 रो जरा दे 3 लिख दो, और अपना सिग्नेचर मार दो बस यार। अच्छा एक बात बताओ पड़े
0: आप पूछो।
1: अपने से मतलब कोई को जन्मदिन हो, शादी ब्याह हो, चाहे कोई आदमी दुनिया में नहीं रहे?
0: हाँ तो तुम कह दो मतलब का कौन नहीं रहो?
1: नहीं वैसे नहीं पूछ रहे हम, दो आदमी खपन जरूर बुला।
0: कौन?
1: एक तो वे पंडित जी।
0: हाँ वो तो ठीक है,
1: और दूसरा कौन? वो खवासा।
0: अरे तुम यार तुमको पता नहीं कब अकल आएगी।
1: क्यों कब ऐसे अकल आए?
0: भाई देखो ऐसा है कि ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं ये विदेश का है, वहां कहां पंडित जी और वहां कहां मतलब खवासन।
1: भाई ऐसा है कि देखो अब एक दिन का काम तो है नहीं, आज तुमने जो करवा लो कल भी आने पड़ो, फिर दूसरे तुम फंक्शन करवाओ। उन्हें बोला तो कहें काय जन्मदिन में नहीं पूछो, अब कह रहे हैं कि आ जाओ हैं जज की भाई से फिर पूछो, मतलब पूरे काम में मतलब हमें मतलब छोटे काम हम करवाए हैं, और मतलब जो अच्छो काम मिलवे दिलवे को तो दूसरो, ऐसा नहीं हो सके भाई।
0: ठीक है तुम देखो एडजस्ट करना, पंडित जी को बुलाओ। पंडित साहब नमस्कार, पंडित जी प्रणाम, चरण छूते। पंडित जी ये जो कार्यक्रम है आपको निमंत्रण दिया आप आए, बड़े हर्ष की बात है, लेकिन इस कार्यक्रम में कोई पूजन नहीं होना है। असल में ये हम लोग इस बार पाश्चात्य संस्कृति से अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं, आजकल शहरों में जैसा मनाया जाता है, तो आपसे क्षमा चाहेंगे। आप आए बड़ा अच्छा हुआ, आप एक काम करिए नाश्ता करिए, और ये छोटी सी दक्षिणा है रखिए, और क्षमा करेंगे आप। अरे नहीं नहीं वो तो कोई बात नहीं, हम तो आपके घर के आदमी हैं, मतलब जब भी आप याद करें ऐसी कोई बात नहीं। पंडित जी ने साहब नाश्ता किया, दक्षिणा ली और चले। लेकिन जो खवासा होती है वो कुछ कुछ जगह पंडित जी से ज्यादा प्रैक्टिकल दिमाग रखती है, और उसका प्रैक्टिकल दिमाग कैसे चला देखिए आपकी नजर, कि उसने पटेलन को हैंडल किया। कैसे? देखो भाई ये सो हमने खूब शहर में देखे हैंगे करवाए हैं, और हमें ऐसी न बताओ, हमें सब समझ में आप कैसे करवाने हैं। एक काम करो बलुआ, हमने सबको दे दो, और बलुआ दे के बाद हमने जो जमा दे थी बिल सब कर दो। अच्छा फोटोग्राफर को बोलो कि नहीं बोलो? फोटोग्राफर को बुला के लाओ। एक लचर पचर फोटोग्राफर उनको ही बुलाया, वो भी बेचारे मतलब ऐसे समय के मारे थे, लचर पचर टाइप ही, मतलब काम उनका बड़ा ढीला ढाला सुस्त, अपने चले आ रहे हैं, अपना साइकिल भी उनकी ऐसी है खट्ट पट्ट घैटर वाली साइकिल। वो साहब आए कैमरा वैमरा लेके, और फिर उसका गुड्डा का बर्थडे मनाना

0: केक रखा सेंटर में। हाँ अच्छा, जय बताओ कि गुड्डा कौन सा जन्मदिन है? मतलब जी समझ लो कि पहले जन्मदिन भाओ तो जो दूसरे तीसरो है जी। भाई देखो यहाँ से पहले जन्मदिन में दद्दा ने काम करो, करो नहीं करो, दूसरे जन्मदिन में फिर आपने करो, और जो तीसरे फुआ को नेंग लगा फुआ को बुलाओ।
1: अरे तुम यार उसमें कहा फुआ को, हमारे साथ चले हम पूरा डायरेक्शन हमारे यहाँ छोड़े हम अल्लाह शहर में करवाए हम फुआ को बुला। अब फुआ को बुलाया गया भाई, केक रखा गया। हाँ चलो जल्दी से, अच्छा एक काम तो करो का बे गुड्डा को तीसरा जन्मदिन है, तीन थैया कैंडल तो धर, तुम समझो का नहीं भाई लफड़ा करवा का होगा तो हमें तो कान में बताओ ना। अरे पटेल साहब भूल गया सामान, हमने जुगाड़ करके केक बनाओ और तुम अब मतलब कैंडल फैंडल के बीच कच्छू नहीं, जहाँ हम है तो गम नहीं। अब भाई हम व्यवस्था करवाए थे तुम्हें का, जब तुमने जुगाड़ से केक बना हम कछु नहीं कर सके तुम आ जाने, तुमने एक तो कर। अब भाई देखो ए बेटा छुट्टू होते आओ,
0: हाँ आओ तुम एक काम करो तीन ठे भाप का ले आओ।
2: अब साहब तीन भपके मंगवाए गए, वो मट्टी के तेल के होते हैं, और उनको जलवाया गया कैंडल पे धर के, पटेल जो खवासन है उनने पटेलन के यहाँ जलवाया। लेस वन है लेस दो, अच्छा लड़का बच्चा जितने सब पीछे आ जाएं। हाँ और अब ये तो बताओ कि जैसा ही सब जन केक कटे और सबको चिल्लाने हैप्पी बर्थडे टू यू गुड, अरे एक काम तो हम रह गई, पहले जैसा ही समझ लो कि हम तुमसे कहें गुड्डा तुम पहले केक फूकियो का बेभपकन खो। हाँ पहले एक काम और करो,
0: अब कहा तुम ये काम करके काम बढ़ा जा रहे हैं, जल्दी काटा है तुम बिल्कुल, नहीं तो डेढ़ घंटा होगा। भाई पहले फुआ ऐसी आ तुम ऐसे बाजू में खड़े हो जा, पहले केक की निछावर ऐसी गजा बता रहे केक की निछावर आ तुम, देखो जो गांव काम है केक की निछावर करो जल्दी करो। उन्होंने केक की निछावर हमने आज तक सुनी नहीं, खुटिया के पैसे 2 रुपया दे दीजिए, अब दो में काम ना चले 10 कोने का लौटे केक की निछावर है ऐसे कम ना ले आवा, केक की निछावर करो। केक की निछावर साहब हो गई, और केक की निछावर के बाद 10 रुपये, हाँ एक माहौर कटोरी ला माहौर राहौर लगाया गुड्डा को बकायदा माहौर टिपकी की लगाई, और उसके बाद में केक का कटने का आइटम शुरू हो रहा है। उसके पहले उन्होंने कहा अच्छा एक बात और, अब कहा है वो एक बात और देखो ये मैं नेंग के तुमने 10 रुपये निछावर के दे, निशानी भी तो दो। काहे की निशानी? भाई देखो अब गुड्डा को जन्मदिन हम याद रखे हैं, तो एक ठैया जो सूट गुड्डा को सलवार तुमने छोटे होगा हम आटू रखो दे तो। कहने लगे फिर का चलो दे दे, और 5 कुरे गेहूं दे हमने 5 कुरे गेहूं दे। और बोलो अब गुड्डा तुम एक काम करो पहले जो भपकन को फूको, तो गुड्डा ने जैसी भपकों को फूका बेटा गुड्डा ऐसे नहीं अच्छे से, अरे फूंक बे कह रहा फूको नहीं बस खा खा ला हम बुझा दे रहे लाए खवासन ने, और भपका बुझाए अलग करे देखो बज गए। अब गुड्डा एक काम करो चक्कू से, चक्कू तो लाओ ए बेटा ऐसे हाँ तुम्हारा नाम लपका,
2: अरे लपका तो लपक के जरा चक्कू लिया
0: बाबू नहीं मिल रहा,
2: अरे तो बाजू में देख
0: बाबू हम कहा भी नहीं है,
2: पड़ोस में देख ले
0: जी जी लो तुम्हारे तो चक्कू नहीं उन कहा भी नहीं मिलो।
2: एक काम करो तुम तो हंसिया ले आओ। गांव का परिवेश हंसिया मंगवा लिया गया साहब, और हंसिया से केक कट रहा है एक नई बात है, और जैसे ही केक कटे तो उन्होंने कह दिया खवासा ने कि सबको चिल्लाने हैप्पी बर्थडे टू यू गुड्डा, और न चिल्ला तो फिर केक न मिले जो समझ लो, हाँ टाफी वंड भी न मिले। तो साहब जैसे ही केक के लिए उसने गुड्डा ने हंसिया उठाया और बुआ ने पकड़ा, साथ में उनके मम्मी पापा पटेल साहब पटेलन पकड़े हैं, और उनने बोले हाँ चिल्लाओ।

0: खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि खनिज संपदा की प्रचुरता और निवेश अनुकूल नीतियों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी बल मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस साल अल्पवर्षा की आशंका को देखते हुए प्रदेश के किसानों से कृषि कार्यों की वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक योजना बनाने तथा कम अवधि और कम पानी में बेहतर उत्पादन देने वाली फसलों को विशेष प्राथमिकता देने की अपील की है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना।

0: हुआ। यात्रा के पहले दो दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। सरकार ने मूल्य में स्थिरता के लिए प्याज की खरीद में 13% की वृद्धि की है। प्याज का खरीद मूल्य अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। भोपाल के भारत भवन में गायन पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस पर्व में आज शाम 7 बजे से मंजरी, असनारे और ऋषि मिश्र की जुगलबंदी देखने को मिलेगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

महिला सभा सुन रही सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर, सुनेंगे गीत संगीत और खाना खजाना में बनाएंगे बरसात स्पेशल पकौड़े। तो कार्यक्रम की शुरुआत में बात करते हैं उनकी जो हमारी धरती को हरा भरा बनाते हैं, वो हैं हमारे वृक्ष। पेड़ है तो जीवन है, पेड़ है तो भविष्य है। यह केवल एक नारा नहीं बल्कि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जंगलों के अंधाधुंध कटाई और घटते हरित क्षेत्र ने पूरी दुनिया को पर्यावरण संकट के सामने खड़ा कर दिया है। ऐसे समय में 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला वन महोत्सव हमें प्रकृति से जुड़ने और वृक्षारोपण का संकल्प लेने का अवसर देता है। सखियों, वन महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी। इसका उद्देश्य देश भर में वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाना और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना था। आज यह अभियान पूरे देश में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। वृक्ष प्रकृति का एक अमूल्य उपहार है। वे हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वायु को स्वच्छ बनाते हैं और पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ वर्षा चक्र को बनाए रखने, भूजल स्तर बढ़ाने, मिट्टी के कटाव को रोकने और जैव विविधता की रक्षा करने में भी सहायक होते हैं। सखियों, आज शहरों के विस्तार, औद्योगिकरण और विकास कार्यों के कारण बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि गर्मी की तीव्रता बढ़ रही है, वर्षा का स्वरूप बदल रहा है। यदि हम समय रहते प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। वन महोत्सव हमें केवल पौधे लगाने की नहीं बल्कि उनकी देखभाल करने की भी सीख देता है। एक पौधा तभी वृक्ष बनता है जब उसे नियमित पानी, सुरक्षा और पर्याप्त देखभाल मिले। इसलिए पौधा लगाने के साथ साथ उसे जीवित रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हम सभी इस अभियान में अपना योगदान दे सकते हैं। अपने घर, विद्यालय, कार्यालय, खेत, पार्क या आसपास के खाली स्थान पर पौधे लगाएं। स्थानीय जलवायु के अनुकूल वृक्षों को प्राथमिकता दें। वर्षा ऋतु पौधारोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है क्योंकि इस मौसम में पौधों के जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। तो सखियों, हर वर्ष कम से कम एक पेड़ हम अवश्य लगाएंगे और उसे बड़ा होने तक उसकी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। यदि देश का प्रत्येक नागरिक

सखियों, यह तो हम सबको पता है कि जल ही जीवन है। पृथ्वी का अधिकांश भाग जल से घिरा होने के बावजूद पीने योग्य मीठा जल बहुत सीमित है। बढ़ती जनसंख्या, अनियंत्रित जल उपयोग, भूजल का लगातार दोहन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण आज दुनिया के अनेक हिस्सों में जल संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यदि हम जल बचाने को अपनी दैनिक आदत का हिस्सा बना लें, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त जल उपलब्ध रहेगा। जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कृषि और उद्योग सभी जल पर निर्भर है। यदि जल स्रोत सूख गए तो

जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए जल की प्रत्येक बूंद का महत्व समझना आवश्यक है। सचिव जल संरक्षण की शुरुआत घर से ही की जा सकती है। ब्रश करते समय नल खुला न छोड़ें। स्नान के लिए आवश्यकता अनुसार पानी का उपयोग करें, यानी आप मग और बाल्टी का प्रयोग करें। शावर के उपयोग से बचें। कपड़े धोने के बाद बचे पानी से साफ सफाई कर लें। रसोई का पानी गमलों में डाल दें। वाटर प्यूरिफायर से निकलने वाले वेस्ट पानी को इकट्ठा करके कूलर में डाल लें। कपड़े धोने के लिए उपयोग कर लें। कहीं भी कोई नल लीक कर रहा हो तो उसे तुरंत ठीक कराएं। ये छोटी छोटी आदतें अपनाकर हम पानी की बचत कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र में भी जल संरक्षण की बड़ी भूमिका है। ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर जैसे आधुनिक सिंचाई पद्धतियां अपनाकर कम पानी में अधिक सिंचाई की जा सकती है। बहनों, आज हमें यह समझना होगा कि जल बचाना केवल एक अभियान नहीं बल्कि जीवन जीने की आदत है। छोटी छोटी सावधानियां मिलकर बड़े परिवर्तन ला सकती हैं। यदि हम आज पानी की हर बूंद की रक्षा करेंगे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित और समृद्ध जीवन जी सकेंगी। तो जल संरक्षण को अपनी आदत बनाएं, हर बूंद बचाएं और जीवन बचाएं।

सखियों, अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पर्यटन की। यात्रा केवल स्थानों की नहीं बल्कि अनुभवों, सांस्कृतियों और जीवन को समझने की भी होती है। भारत प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता से समृद्ध देश है। उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियाँ, दक्षिण के समुद्र तट, पश्चिम का विशाल मरुस्थल, पूर्वोत्तर की हरी भरी घाटियाँ, प्राचीन मंदिर, ऐतिहासिक किले, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य देश को पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध बनाते हैं। यही कारण है कि भारत में हर वर्ष देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं। बहनों, हम बात कर रहे हैं पर्यटक स्थलों की। पर्यटन की दृष्टि से हमारी शिवपुरी काफी समृद्ध है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित शिवपुरी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहरों, धार्मिक आस्था और वन्य जीव संपदा के कारण प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे माधव टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। लगभग 350 वर्ग किलोमीटर में फैले इस उद्यान में हिरण, नीलगाय, स्यार और अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। मानसून और सर्दियों में इसकी प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। हमारे यहाँ सफेद संगमरमर से निर्मित सिंधिया राजवंश की छत्रियाँ उत्कृष्ट वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इनके चारों ओर बने सुंदर उद्यान और शांत वातावरण पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। सखियों, शिवपुरी में सांख सागर झील है। माधव राष्ट्रीय उद्यान के समीप स्थित यह झील शिवपुरी की पहचान है और सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। अपने स्वच्छ और ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध भदैया कुंड बरसों से पर्यटकों का पसंदीदा स्थल रहा है। वर्षा ऋतु में इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। ब्रिटिश काल में निर्मित एक ऐतिहासिक भवन, जिसे जॉर्ज कैसल के नाम से जाना जाता है, यह घने जंगलों के बीच स्थित है। यहाँ से आसपास के जंगलों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। सचिव, यहाँ पर तात्याटोप पे स्मारक है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी तात्याटोपे के स्मृति में बना यह स्मारक देशभक्ति और इतिहास का महत्वपूर्ण प्रतीक है। धार्मिक महत्व रखने वाला एक स्थान बाणगंगा भी यहाँ है। यह स्थान स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के बीच विशेष आस्था का केंद्र है। बहनों, शिवपुरी प्राकृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन का अनूठा संगम है। यहाँ आने वाला प्रत्येक पर्यटक हरियाली, झीलों, ऐतिहासिक स्मारकों और वन्य जीवों की सुंदर दुनिया का अनुभव करता है। यदि पर्यटन के साथ प्रकृति का आनंद लेना हो तो शिवपुरी मध्य प्रदेश के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है। आइए शिवपुरी की इस अमूल्य धरोहर को देखें, समझें और इसके संरक्षण में अपना योगदान दें।

सखियों अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी छोटी सी बगिया की। वहीं बारिश की पहली फुहार के साथ ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे जैसे नई ऊर्जा से भर उठते हैं और प्रकृति का हर रंग पहले से अधिक निखर जाता है। मानसून का मौसम केवल मौसम का बदलाव नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ने और अपनी बगिया को नया जीवन देने का सबसे उपयुक्त समय है। यदि आपके घर में छोटा सा आंगन, छत, बालकनी या कुछ गमले ही क्यों ना हो, आप एक सुंदर और हरी भरी बगिया तैयार कर सकती हैं। इस मौसम में मिट्टी में पर्याप्त नमी रहती है, इसलिए पौधों की जड़ें जल्दी विकसित होती हैं और उनकी बढ़वार भी अच्छी होती है। यही कारण है कि अधिकांश पौधे मानसून में आसानी से लग जाते हैं। इस मौसम में आप गुलाब, गुड़हल, मोगरा, सदाबहार, कनेर जैसे फूलों के पौधे लगा सकते हैं। इनकी सुगंध और रंग आपकी बगिया को महका देंगे। यदि आप औषधीय पौधों के शौकीन हैं तो तुलसी, एलोवेरा, लेमन ग्रास, करी पत्ता लगा सकते हैं। सखियों, इस समय किचन गार्डन शुरू करने का भी सुनहरा अवसर है। टमाटर, मिर्च, लौकी, मेथी और धनिया जैसी सब्जियां घर पर आसानी से उगाई जा सकती हैं। घर में लगाई हुई ताजी सब्जियां न केवल स्वादिष्ट होती हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होती है। हालांकि इस मौसम में पौधों की देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है। गमलों में पानी जमा न होने दें क्योंकि अधिक पानी से जड़ें गल सकती हैं। समय समय पर खरपतवार हटाएं, सूखी पत्तियां निकालें और जैविक खाद का उपयोग करें। यदि पौधों में कीट दिखाई दे तो नीम के तेल का छिड़काव करें, इससे पौधे स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। बहनों, बागवानी केवल एक शौक नहीं बल्कि तनाव दूर करने का एक प्रभावी माध्यम है। पौधों के बीच बिताया गया समय मन को शांति देता है।

सुरक्षित रहेंगे। बहनों, बागवानी केवल एक शौक नहीं बल्कि तनाव दूर करने का एक प्रभावी माध्यम है। पौधों के बीच बिताया गया समय मन को शांति देता है, सकारात्मक सोच विकसित करता है और परिवार के सदस्यों को प्रकृति के करीब लाता है। तो इस मानसून प्रकृति का आभार व्यक्त करें, अपने घर के किसी छोटे से कोने को हरियाली से सजाएं, पौधे लगाएं, उनकी देखभाल करें और अपनी बगिया को फूलों की खुशबू से महकाएं। सखियों, जैसे ही आसमान में काले बादल छाते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं और रिमझिम बारिश शुरू होती है, वैसे ही गर्मा गर्म पकौड़ों की याद हर किसी के मन में ताजा हो जाती है। इस याद को बनाए रखने के लिए आज हम खाना खजाना में लाए हैं मिक्स वेज पकौड़े की रेसिपी। तो नोट कीजिए सामग्री। हमें चाहिए 2 कप बेसन, 1 प्याज पतले स्लाइस में कटा हुआ, 1 आलू, 1-2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, स्वादानुसार नमक और साथ ही चाहिए तलने के लिए तेल। मिक्स वेज पकौड़े बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में बेसन लें, उसमें हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, अजवाइन और नमक डालकर मिला लें। अब इसमें कटा हुआ प्याज, आलू, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा घोल तैयार कर लें। अब कढ़ाई में तेल गरम करें। अच्छी तरह गरम होने पर मिश्रण को हाथ या चम्मच की सहायता से छोटे छोटे भागों में तेल में डालें। मध्यम आंच पर पकौड़ों को सुनहरा और कुकरा होने तक तलें। अतिरिक्त तेल निकालने के लिए पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर रखें। गर्मा गर्म पकौड़ों को हरी धनिया, पुदीने की चटनी के साथ परोसें। साथ में अदरक इलायची वाली गर्म चाय हो तो बरसात का आनंद दोगुना हो जाता है। सखियों, पकौड़ों को अधिक कुरकुरा बनाने के लिए बेसन में आप 1-2 बड़े चम्मच चावल का आटा मिला सकती हैं। और इसी विधि से हम पालक, गोभी, बैगन, पनीर, हरी मिर्च के पकौड़े भी बना सकते हैं। तो इस बारिश के मौसम में आप यह पकौड़े बनाएं, खुद खाएं और सबको खिलाएं और वर्षा ऋतु का आनंद उठाएं। अब अपनी कार्यक्रम सखी वंदना को दे अनुमति। नमस्कार।

शारदा कुरैशी के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोकगीत अब यही समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं अशोक कसेरा का गाए ये गजल।

0: अशोक कसेरा की गई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही रहती ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड

आनंद बख्शी का लिखा, एस टी बर्मन का संगीतबद्ध किया, लता मंगेशकर का गाया ये फिल्म का गीत था चुपके चुपके फिल्म से। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 2:10 होने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे। यह परियोजना औद्योगिक विकास के विजन को नई गति प्रदान करेगी। परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
1: डिफेंस रक्षा क्षेत्र का संयंत्र प्रोपेलेंट गैस और अनेक उपकरणों का 3000 करोड़ का भूमि पूजन किया जा रहा है। ये एक अपने आप में एक इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की डिफेंस कॉरिडोर के साथ शिवपुरी को जोड़ा जा रहा है। इस रक्षा के संयंत्र से हमारे देश के रक्षा करने वाले वीर जवानों को नई टेक्नोलॉजी के अस्त्र शस्त्र भी मिलेंगे।
0: अब से कुछ देर में शिवपुरी के स्थानीय पोलो ग्राउंड में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिले के 211 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। आज जकार्ता में आकाशवाणी को दिए एक साक्षात्कार में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि 6 से 8 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोग के कई नए क्षेत्र खुलेंगे और इन दोनों देशों के बीच संबंध में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आभार व्यक्त किया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू हो गया है। मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत अगले 5 सालों में 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जाएगा।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। यमन ने पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तीजनबाई ने महाभारत की कहानियों को अपनी सशक्त आवाज, रोबदार व्यक्तित्व तथा अद्भुत शैली की प्रस्तुति के साथ मंच पर जीवंत बनाया और उन्होंने छत्तीसगढ़ की समृद्ध पंडवानी परंपरा को भारत तथा विदेश में प्रतिष्ठा दिलाई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने शानदार प्रदर्शनों के जरिए तीजनबाई ने छत्तीसगढ़ की लोक कला शैली के लिए वैश्विक पहचान अर्जित की। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। अब बात मौसम की। प्रदेश

मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में वर्षा का सबसे अधिक असर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन P652 ने दो नन्हे शावकों को जन्म दिया है। दोनों नवजात शावकों की उम्र लगभग 10 दिन के आसपास हो गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब दोपहर समाचार सुनेंगे दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। हुरमुस जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हुरमुस जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
2: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। हुरमुस जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाए।

0: जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल तंबानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
3: सिग्निफिकेंस इज इमेंस।
2: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत के मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है, और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

0: जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थी। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
1: दीरे दीरे वो मारे ढालते हैं।
2: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले

0: गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
1: दीरे दीरे वो मारे ढाला से है पानी में ढेला।
2: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
3: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
4: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया सेना ले ले चला। सावन में
2: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले दो तीन दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम

0: ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती और मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। जय हिंद बाल साथियों। जीवन चुनौतियों का एक ऐसा अनमोल अवसर है जो हमें हर कदम पर कुछ नया सिखाता है, इसलिए इसे सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। बाल साथियों, इसी प्रेरक विचार के साथ स्वागत है आप सभी का माह के पहले रविवार को, और आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अर्चना दीदी। बाल साथियों, आज कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ चर्चाएं, रोचक जानकारी एवं फिल्म संगीत। लेकिन पहले कर लेते हैं एक छोटी सी चर्चा विश्व जनसंख्या दिवस पर। बाल साथियों, विश्व जनसंख्या दिवस एक वार्षिक आयोजन है जो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य वैश्विक जनसंख्या संबंधी मुद्दों के बारे में लोगों का ध्यान केंद्रित करना, बढ़ती आबादी के कारण होने वाली समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना, जनसंख्या रोकथाम के उपायों की जानकारी देना एवं स्वास्थ्य और अधिकारों के बारे में लोगों को सूचित करना है। इसके अलावा धरती पर संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करते हुए एक संतुलित और बेहतर भविष्य की नींव रखना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। आजादी वर्ष 1987 में जब दुनिया की आबादी 5 अरब का आंकड़ा पार कर गई थी, इस ऐतिहासिक दिन को 5 बिलियन डे कहा गया था। लोगों का ध्यान जनसंख्या वृद्धि की तात्कालिकता और इसके प्रभावों की ओर आकर्षित करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की गई थी। आगामी 11 जुलाई को मनाया जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस। भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 11 जुलाई वर्ष 1989 को पहली बार ये दिन मनाया गया था। बाल साथियों, वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या लगभग 8.3 अरब है। इस बढ़ती जनसंख्या के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है, जिसके कारण भोजन, पानी और आवास की कमी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक भीड़, बेरोजगारी में वृद्धि, वनों की कटाई और पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। ये गंभीर वैश्विक समस्या है जिस पर चिंतन आवश्यक है। यही नहीं, इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था व समाज के दृष्टिकोण पर भी पड़ता है। बाल साथियों, विश्व की 90% जनसंख्या लगभग 10% भूमि क्षेत्र में निवास करती है। बाल साथियों, जनसंख्या की रोकथाम के जागरूकता बढ़ाने हेतु स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। स्वास्थ्य विभागों एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा विशेष शिविर लगाकर परिवार नियोजन संबंधी जानकारी दी जाती है। महिलाओं व लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया जाता है। पोस्टर व निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष एक थीम का निर्धारण किया जाता है। वर्ष 2025 की थीम थी युवाओं को एक निष्पक्ष और आशावान दुनिया में अपने मन चाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। बाल साथियों, हमारा देश भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में पहले स्थान पर है, जबकि चीन दूसरे व अमेरिका तीसरे स्थान पर है, और विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वेटिकन सिटी। और बाल मित्रों, अब इस चर्चा को देते हैं विराम, क्योंकि अब हम बाल मन से क्रम के अंतर्गत सुनवाते हैं स्टूडियोज में आए हुए नन्हे मेहमानों से की गई बातचीत। इनसे बात कर रही है आपकी अर्चना दीदी। बाल मित्रों, आज हमारे स्टूडियोज में आए हुए हैं दो नन्हे मेहमान और हमने उनसे की है बातचीत, लेकिन सबसे पहले जानेंगे उनका नाम। आपका नाम क्या है?
2: माय नेम इज रियांश प्रजापति।
1: और आपका नाम क्या है?
3: अक्षांश प्रजापति।
1: तो चलिए सबसे पहले बातचीत करते हैं अक्षांश के साथ। अक्षांश, आज आप स्टूडियो में आए हैं, तो आपको यहाँ पर आके कैसा लग रहा है?
3: अच्छा।
1: अच्छा लग रहा है? तो आज आप क्या तैयार करके आए, क्या सुनाएंगे हमारे बाल साथियों को? क्या सुनाएंगे? स्कूल की पोयम सुनाएंगे? अच्छा, लेकिन चलिए पोयम तो आप सुनाएंगे, लेकिन पहले कुछ हम जानना चाहेंगे, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
3: LKG
1: में है। अच्छा, और आप क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको जो है

0: पसंद है?
1: हाँ, पूरी राइम्स।
0: राइम्स अच्छी लगती हैं। अच्छा, इंग्लिश अच्छी लगती है कि हिंदी अच्छी लगती है?
1: इंग्लिश।
0: इंग्लिश अच्छी लगती है। और मैथ अच्छा लगता है आपको? मैथ करना अच्छा लगता है। अच्छा, मैथ्स में कैसे नंबर आते हैं आपके? फुल मार्क्स आते? अरे वाह, तो क्या बनना है आपको बड़े होके, ये बताइए।
1: मुझे बनना है एसपी।
0: एसपी बनना है, पुलिस में जाना चाहते हैं। वेरी गुड। चलिए, इसके लिए लेकिन बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, तो कितने घंटे पढ़ते हो आप?
1: मैं तो कोचिंग में 1 घंटे।
0: कोचिंग में 1 घंटे पढ़ते हो? और घर पे?
1: घर पे 2 घंटे।
0: 2 घंटे पढ़ते हो। अच्छा, तो चलिए, आप जो अपनी पोयम तैयार करके आए हैं ना, अब हम सुनवाते हैं अपने बाल साथियों को। तो चलो जल्दी से सुना दो बढ़िया सी पोयम।
1: मछली जल की जीवन, उसका पानी है, हाथ लगा डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, पानी मरा जी जाएगी, सारा पानी पी जाएगी।
0: हाँ, मछली को निकालना नहीं चाहिए है ना, नहीं तो क्या होगा, वो मर जाएगी ना। और किसी जीव को नहीं मारते ना अपन लोग, है ना। अच्छा अच्छा, अभी ये बताइए, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है ना, तो अभी कौन कौन से फ्रूट्स आ रहे हैं ये बताओ जल्दी से।
1: मैंगो।
0: आपको पसंद है मैंगो खाना?
1: हमारे पास तो लीची।
0: लीची भी है? लीची पसंद है आपको खाना? उसका पेड़ लगाओगे अपने घर में अगर आपको देंगे तो?
1: मेरे पास तो उसका पेड़ नहीं है।
0: मैं आपको दूंगी तो आप लगाओगे? चलो ठीक है, प्लांटेशन जरूर करना चाहिए, है ना।
1: हमारे पास चाय के लिए चाय का पेड़ है।
0: चाय का पेड़ है
1: जिसमें वो चाय की पत्ती डाला जाता
0: है। हाँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। और क्या लगाते हैं आप? रोज प्लांट है आपका? रोज का प्लांट है, उसको पानी देते हो? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और क्या सुनाना चाहेंगे आप हमारे बाल मित्रों को?
1: एक बुक सुना रहा।
0: सुनाओ।
1: बाबा बाबा ब्लैक शिप, हैप्पी एंड द मून, यस सर 3 बैग 4, 1 फॉर माय मास्टर, 1 फॉर माय डैन, Little boy, poor gentleman.
0: चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी प्यारी प्यारी पोयम सुनाई, इतनी अच्छी बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत सा थैंक यू।
1: थैंक यू।
0: बाल साथियों, हमारे स्टूडियोज में एक और नन्हे मेहमान है, रियांश। तो सबसे पहले हम उनसे जानेंगे कि वो कौन सी क्लास में है।
2: आई स्टडी इन क्लास सेकेंड।
0: ओके, आप क्लास सेकेंड में है, तो
2: थर्ड
0: थर्ड में आ गए हैं, सेकंड पास कर लिया आपने, अब थर्ड में आ गए हैं। बहुत अच्छी बात है। कितना परसेंट बना आपका?
2: मेरा परसेंट नहीं आया मेरा।
0: अच्छा, तो ग्रेड मिला होगा आपको?
2: ग्रेड
0: ए। वेरी गुड, वेरी गुड, ए प्लस आपको मिला है। आपकी हॉबीज क्या क्या हैं?
2: मेरी हॉबीज है स्पोर्ट्स एंड ड्राइंग।
0: अच्छा, तो स्पोर्ट्स में आप कौन कौन से खेल खेलना पसंद करते हैं?
2: बैडमिंटन एंड क्रिकेट।
0: बैडमिंटन क्रिकेट।
2: मैं वहाँ कलेक्टर बनूंगा।
0: अच्छा, आपको कलेक्टर बनना है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपका व्यू बिल्कुल क्लियर है, आपको कलेक्टर बनना है। तो उसके लिए आप स्टडीज कैसे करते हो, कितने घंटे पढ़ाई करते हो?
2: 1 घंटा घर पे और 1 घंटा कोचिंग में, और कभी कभार कोचिंग में 2 घंटा।
0: ओके, लेकिन आईएएस बनना है आपको, तो बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी।
2: हाँ।
0: है ना। और आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं?
2: मैथ, TWAU,
0: ओके,
2: और इंग्लिश।
0: इंग्लिश। तो आप घर में कौन पढ़ाता है आपको, मम्मी की पापा?
2: हाँ, पापा पढ़ाते कभी कभार, और कोचिंग में पढ़
0: कोचिंग में भी पढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपकी और क्या क्या हॉबीज हैं?
2: इसके अलावा खेलना।
0: खेलने के अलावा और क्या है, मतलब ड्राइंग करते हैं?
2: ड्राइंग। हाँ।
0: तो ड्राइंग कैसा, स्केच ड्राइंग करते हैं या आप कोई पोर्ट्रेट वगैरह ड्रॉ करते हैं?
2: स्केच
0: ड्राइंग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और प्लांट लगाना भी पसंद है आपको?
2: हाँ।
0: घर में लगाए हैं आपने कुछ प्लांट्स?
2: लगाए हैं।
0: कौन कौन से लगाए बताए हमारे बाल साथियों को?
2: मैंने गुआवा और अभी तो मैंने गुआवा लगाया, अभी और लगाऊंगा।
0: अच्छा, तो आ गए उसमें अमरूद? अमरूद आए एक आध? नहीं,
2: उसमें अभी नहीं आए
0: अमरूद, अभी नहीं आए हैं उसमें। चलिए, धीरे धीरे आपकी मेहनत सफल होगी तो उसमें अमरूद भी आएंगे। अच्छा, और क्या आपको करना ज्यादा पसंद है फ्री टाइम में, जब आप खाली होते हैं तो?
2: फ्री टाइम में मुझे कंप्यूटर चलाना।

0: कंप्यूटर चलाना पसंद है। और आप म्यूजिक वगैरह में भी इंटरेस्टेड हैं?
1: हाँ
0: क्या करते हैं म्यूजिक में? गाना गाना पसंद है कि डांस करना पसंद है आपको?
1: गाना
0: गाना गाना
1: गाना
0: पसंद है। कोई सॉन्ग सुनाना चाहेंगे बाल साथियों को?
1: सॉन्ग सॉन्ग मुझे वहां वो आता नहीं है।
0: चलिए, सुनना ज्यादा पसंद है गाने, हैं? बहुत अच्छी बात है। तो आज आप क्या सुनाएंगे हमारे बाल साथियों को?
1: एक स्टोरी।
0: सुनाइए।
1: एक बार की बात है, एक हाथी था जो कि वहां जंगल में घूम रहा था। और फिर उसे मिर्ची खाने का मन हुआ, तो
0: अच्छा।
1: फिर उसे आगे चलते चलते एक मिर्ची का खेत दिखा। वहां पे वो गया और उसने सारी मिर्ची तोड़कर खा ली। फिर उसे मिर्ची लगने लगी। फिर वो हलवाई के पास गया। हलवाई से कहा, हलवाई थोड़ा सा खोआ दे दो। तो फिर हलवाई ने कहा, पहले मेरे पास कढ़ाई नहीं है, पहले कढ़ाई लाओ। कढ़ाई बनाने वाले के पास गया तो फिर उससे कह दिया, कढ़ाई बनाने वाले मुझे एक कढ़ाई दे दो। उसने कहा, मेरे को अभी ठंडा पानी चाहिए मटका का, तो पहले मुझे मटका ला के दो। फिर वो गया कुम्हार के पास। कुमार कुमार से कहा हाथी ने, कुमार मुझे एक मटका दे दो। तो कुमार ने कहा, अभी मिट्टी सूखी है, पहले वहां तालाब से मिट्टी लाओ। तो फिर हाथी गया तालाब के पास। तालाब वो सोच रहा था कि तालाब में अगर पानी खींचूंगा तो मिट्टी भी आ जाएगी थोड़ी सी। तो फिर उसने उसने सिर्फ अपने सूट से पानी खींचा तो सिर्फ पानी पानी आया। और फिर उसने वहां कुमार को दे दिया पानी। उसने मटका बना दिया और फिर उसे दे दिया। और फिर मटका लेके वो गया लोहे के बर्तन बनाने वाले के पास। तो फिर उसे मटका दे दिया तो उसे कढ़ाई मिल गई। फिर वो कढ़ाई लेके हलवाई के पास गया, तो हलवाई ने उसे कढ़ाई लेके थोड़ा खोआ दे दिया और फिर उसकी मिर्ची मिट गई।
0: तो इस तरह से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, है ना? बहुत अच्छी बात है। तो देखो, सब एक दूसरे की मदद से, है ना, समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, है ना? इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। बहुत अच्छी कहानी आपने सुनाई। और भी कोई कहानी आप सुनाना चाहते हैं मेरे बाल साथियों को?
1: हाँ,
0: सुनाइए।
1: एक बार की बात है, एक एक झोपड़ी में एक बकरी रहती थी और उसके उसके साथ बच्चे थे। एक दिन वो गई वहां खाना लेने, तो फिर उसने अपने बच्चों से कह दिया कि कोई भी अनजान आए तो गेट मत खोलना।
0: फिर
1: तो फिर वो बच्चे कह रहे थे कि ठीक है, हम नहीं खोलेगी गेट। फिर बच्चे कहने लगे कि हम पता कैसे लगाएंगे कि आप हो या कोई और। तो फिर उसने कहा कि मैं एक गाना गाऊंगा, तो फिर समझ जाना। उन बकरियों की मम्मी चली गई और फिर वहां एक भेड़िया छुपके से सुन रहा था। तब फिर वो भेड़िया आया और वही गाना गाने लगा। बच्चों को पता चल गया, हमारी मम्मी की आवाज मीठी रहती थी, इसकी तो आ फड़फड़ाती सी है। और फिर वहां वो कहा कि तुम हमारी मम्मी नहीं हो, तुम तो कोई और हो। फिर वहां वो सोचने लगा कि आवाज मीठी कैसे करूं। तो वो शहद खाने लगा और वे आवाज मीठी हो गई। फिर उसने वो वही गाना वापस गाया, तो फिर वहां वो उसने पैर देख के समझ गया
0: बच्चे समझ गए पैर देख के
1: कि वो हमारी मम्मी के पैर नहीं है, वो किसी भेड़िया के पैर है। और फिर वो कहीं वहां पूछा, वहां आटा पिसवाने वाली दुकान पे गया। वहां से आटे में पैर डाल के उसने अपने पैर व्हाइट कर लिए। और फिर वो गया वापस गाना गाने लगा। फिर सब लोग, फिर कोई बच्चा नहीं समझ पाया, लेकिन एक छोटा सा बच्चा समझ गया और उसने रोका सही बच्चों को, लेकिन वो माने नहीं और वो चले गए।
0: तो भेड़िया ले गया उनको।
1: भेड़िया ले गया। फिर वो एक बच्चा था जो कि छुप गया था। फिर जब मम्मी आई तब उसने कहा कि सभी बच्चों को कोई ले गया है। तो फिर उससे उसकी मम्मी ने कहा कि कौन। उसने कहा कि वो सारे बच्चों को भेड़िया ले गया। वो उसकी मम्मी कहने लगी, चलो ढूंढने चलते हैं भेड़िया को। फिर उनकी मम्मी ढूंढने लगी और फिर

0: वो एक जगह पे भेड़िया सो रहा था और उस बोरी में, उसके पास रखे हुए बोरी में वहाँ वो बच्चे थे, तो वहाँ उन लोगों ने देख लिया और उन लोगों ने फिर वहाँ जाके धीरे से बोरी खोली और बच्चों को निकाल लिया और उसमें पत्थर भर दिए भारी भारी और बड़े बड़े,
1: और वापस आ गए फिर अपने घर।
0: हाँ, और फिर वहाँ वो भेड़िया को लगा आज तो नाश्ता मिल जाएगा अच्छा, लेकिन वो गलत फहमी में था। और फिर वहाँ उसे नदी पार करनी थी, नदी पार कैसे करते कि वहाँ वो बोरी भारी हो गई थी पत्थर से, बोरी भारी हो गई थी, तो जैसे ही वो नदी पार करने गया सीधा वो डूब गया।
1: हाँ, क्योंकि वो भारी पत्थरों की बोरी थी ना, तो हाँ, उसके साथ में डूब गया, तो उसको अपनी करनी का फल मिल गया।
0: हाँ,
1: है ना, इसीलिए कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए।
0: हाँ,
1: बहुत अच्छी कहानी आपने हमारे बाल साथियों को सुनाई। और रियांश, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की और इतनी अच्छी कहानी हमारे बाल साथियों को सुनाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: बाल मित्रों, अभी आप बाल मन से क्रम के अंतर्गत सुन रहे थे स्टूडियोज में आए हुए नन्हे मेहमानों से की गई बातचीत। इनसे बात कर रही थी अर्चना जैन। और बाल साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं अगली चर्चा की ओर, जिसका विषय है यातायात नियमों का पालन, जीवन की सुरक्षा। बाल साथियों, जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया एक अमूल्य उपहार है और इसको सुरक्षित रखना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। बाल साथियों, जितना आवश्यक जीवन को सुरक्षित रखना है, उतना ही जरूरी होता है नियमों का पालन करना। हम सभी अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी यातायात के साधन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि यातायात के नियमों का पालन करने में हम अनदेखी करते हैं, जिससे हमारा जीवन खतरे में पड़ जाता है। तो हमें कभी भी नियमों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। तो आइए जानते हैं यातायात के वो कौन से नियम हैं जिनका पालन करके हम अपना और दूसरों का जीवन सुरक्षित रख सकते हैं। तो बाल साथियों, वाहन चलाते समय यदि आप दो पहिया वाहन का उपयोग कर रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें, और यदि चार पहिया वाहन का उपयोग करते हैं तो सीट बेल्ट अवश्य पहनें। यातायात संकेतों का पालन करें और हमेशा रेड लाइट होने पर रुकें और ग्रीन लाइट होने पर ही आगे बढ़ें। बाल साथियों, वाहन को हमेशा निर्धारित गति पर ही चलाना चाहिए, और शराब का सेवन करके यदि कोई बड़ा आपके घर में वाहन का प्रयोग करता है तो इसके लिए उन्हें आप मना कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में दुर्घटना का डर बना रहता है। बाल साथियों, यदि आपके बड़े या स्वयं आप वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करते हैं तो ऐसा बिल्कुल न करें, इससे भी दुर्घटना घट सकती है। इसके अलावा अनावश्यक रूप से हॉर्न का प्रयोग करने से बचें व पैदल चलने पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। बाल साथियों, यदि कभी भी आपको सड़क पार करनी हो तो दोनों तरफ देखकर आराम से पार करें, जल्दीबाजी बिल्कुल न करें, इससे भी दुर्घटना घटने का डर बना रहता है। बाल साथियों, मोड़ लेते समय जेब्रा क्रॉसिंग के पास या फिर किसी वाहन को ओवरटेक करते समय वाहन की गति धीमी रखें। टकराव से बचने के लिए अन्य वाहन से उचित दूरी बनाकर चलें। इसके अलावा यू टर्न लेते समय पीछे के वाहन पर नजर रखें व हाथ देने के बाद ही मुड़ें। बाल साथियों, यातायात नियम और सिग्नल सरकार द्वारा पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। बाल मित्रों, बरसात का मौसम गर्मियों की तेज धूप और गर्मी से राहत लाता है, जो मुख्य रूप से जून से सितंबर के बीच सक्रिय रहता है। इस दौरान प्रकृति में चारों ओर हरियाली छा जाती है और कृषि की पैदावार के लिए तो ये मौसम सबसे उपयुक्त होता है। परंतु बाल साथियों, इस बदलते मौसम में सबसे ज्यादा यदि कुछ जरूरी है तो वो है स्वास्थ्य की देखभाल। तो आइए बताते हैं कुछ जरूरी बातें जिनको अपनाकर आप स्वस्थ रहते हुए भी बदलते मौसम का आनंद ले सकते हैं। बाल साथियों, बदलते मौसम में स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी खान पान व पोषण है। इसलिए इस मौसम में पानी दूषित रहता है तो उसे हमेशा शुद्ध उबाल कर या फिल्टर करके ही पिए। नमी के कारण खाना जल्दी खराब हो जाता है तो हमेशा ताजा व घर का बना भोजन ही खाएं। स्ट्रीट फूड, जंक फूड, खुले में रखे जूस या बिना पकी सब्जियां खाने से बचें। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी से युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करें और अदरक लहसुन का उपयोग भी भरपूर करें। बाल साथियों, इस मौसम में मक्खी मच्छर से फैलने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बरसात का मौसम आने के पूर्व ही छत पर ऐसी चीजें अलग कर दें जिनमें मक्खी मच्छरों के पनपने की संभावना हो। गमलों, कूलरों, टायर

घरों में पानी जमा न होने दें और सोते समय मच्छरदानी या अच्छी क्वालिटी के मच्छर भगाने वाले लोशन का इस्तेमाल करें। बाल साथियों, बारिश में भीगने से बचें और यदि आप भीग भी जाएं तो तुरंत साफ और सूखे कपड़े पहनें, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। बाल साथियों, जब भी बारिश के मौसम में बाहर से आएं तो आने के बाद हाथ पैर अवश्य धोएं और खाने से पहले और खाने के बाद एवं शौच के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोएं। बाल साथियों, बरसात के मौसम में ताजे फलों और सब्जियों को हमेशा नमक के गर्म पानी से धोकर ही इस्तेमाल करें। फ्रिज का पानी पीने से बचें और अत्यधिक ठंडे पदार्थों के सेवन से भी बचें, अन्यथा गले में खराश और सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है। तो बाल साथियों, यदि मौसम का आनंद लेना है और स्वस्थ रहना है तो अपनाइए इन नुस्खों को और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाल साथियों, शास्त्रों में कहा गया है, जिसने माता पिता तथा गुरु का आदर कर लिया उसके द्वारा संपूर्ण लोगों का आदर हो गया और जिसने इनका अनादर कर दिया उसके संपूर्ण शुभ कर्म निष्फल हो जाते हैं। वे लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जिन्होंने माता पिता और गुरु के महत्व को समझा तथा उनकी सेवा में अपना जीवन सफल किया। बाल साथियों, भारतीय संस्कृति में माता पिता को ईश्वर के समान एवं गुरु का स्थान ईश्वर से ऊपर माना गया है, इसलिए हमेशा अपने माता पिता व गुरुजनों का सम्मान करें, आदर करें व हमेशा उनका आशीर्वाद लें। इनका सम्मान करके जीवन में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बाल साथियों, माता पिता का सम्मान करने का अर्थ है उनके साथ धैर्य पूर्वक व्यवहार करना, उनके निर्णयों को महत्व देना, सुबह उठकर उनके चरणों को स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेना, हमेशा विनम्रता पूर्वक बात करना, ऊंची आवाज में ना बोलना और यदि माता पिता की उम्र अधिक हो गई हो तो उनके स्वास्थ्य की समुचित देखभाल करना। बाल साथियों, हमें दुनिया में लाने वाले हमारे माता पिता ही हैं। वो पूरे लाड दुलार के साथ हमारा लालन पालन करते हैं, इसलिए हमेशा उनके प्रति आभारी रहें और उनका सम्मान करें। बाल साथियों, हमारी संस्कृति में गुरु का स्थान गोविंद से ऊपर बताया गया है। वे हमारे जीवन के सर्वोच्च देवता हैं। उनके निष्काम सेवा, आज्ञा पालन और सम्मान ही संसार का सबसे बड़ा धर्म है। गुरु ही वो दिव्य शक्ति है जो हमारे भीतर छिपे अज्ञान और अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश चलाते हैं। गुरु आज्ञा का पालन और उनका सम्मान हमें जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। तो बाल साथियों, सदैव माता पिता व गुरु की आज्ञा का पालन करें और जीवन में सदैव उनका सम्मान करें, क्योंकि उनके प्रति आदर भाव रखने से ही घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। और बाल साथियों, इस चर्चा को देते हैं विराम और सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म मैं चुप रहूंगी से। गायक सुने लता मंगेशकर एवं साथियों के, राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है चित्रगुप्त ने।

तो आइए सुनते हैं ये गीत। बाल साथियों, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया था फिल्म मैं चुप रहूंगी से। बाल साथियों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं रोचक जानकारी। बाल साथियों, क्या आपने कभी अंधेरी रात में उड़ते छोटे छोटे चमकते बिंदुओं को देखा है? ये कोई जादू नहीं बल्कि जुगनू नाम के कीट है। तो आइए जानते हैं इस कीट फायरफ्लाई या जुगनू के बारे में कुछ रोचक तथ्य रोचक जानकारी के माध्यम से। इस पहली जानकारी में बात करेंगे इसकी रोशनी के बारे में। बाल साथियों, ये एक ऐसा कीट है जो अपने शरीर से रोशनी पैदा करता है और सबसे रोचक बात तो ये है कि इसकी रोशनी गर्म नहीं बल्कि ठंडी होती है, जिसे कोल्ड लाइट या ठंडी रोशनी कहा जाता है। बाल साथियों, मादा जुगनू के अंडे से निकलने वाले लार्वा को ग्लो वॉर्म कहा जाता है, ये भी हल्की रोशनी देते हैं। बाल साथियों, कुछ जुगनू अपनी रोशनी का उपयोग दुश्मनों को चेतावनी देने के लिए करते हैं। ऐसा बताते हैं कि वे खाने में स्वादिष्ट नहीं है। और आइए इस दूसरी जानकारी में बात करते हैं इनके चमकने के बारे में। बाल साथियों, सभी जुगनू नहीं चमकते। जो चमकते हैं वो अपने पेट के निचले हिस्से में मौजूद ल्यूसीफेरिन नामक केमिकल और ल्यूसीफेरिस एंजाइम की मदद से जैव प्रकाश उत्पन्न करते हैं। बाल साथियों, हर प्रकार के जुगनू के चमकने का पैटर्न अलग होता है। तेजी से चमकते हैं तो कुछ धीरे धीरे। बाल साथियों, मेल व फीमेल जुगनू अपनी चमक के जरिए ही एक दूसरे को पहचानते हैं। बाल साथियों, वैज्ञानिक जुगनुओं की चमक का अध्ययन चिकित्सा और विज्ञान के कई क्षेत्रों में करते हैं। बाल साथियों, एक मैदान में जब हजारों जुगनू एक साथ चमकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे तारे धरती पर उतर आए हों। बाल साथियों, इस अगली जानकारी में बात करते हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में। ये प्यारे से कीट उष्णकटिबंधीय और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दुनिया में इनकी लगभग 2000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। बाल साथियों, बारिश के मौसम में दिखने वाले इस कीट की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। ये प्रदूषण और तेज कृत्रिम रोशनी से प्रभावित होते हैं। किसी क्षेत्र में इनकी घटती संख्या का कारण वहाँ का बिगड़ता पर्यावरण है, इसलिए अपने पर्यावरण को सुधार कर हम इन्हें बचा सकते हैं। और बाल साथियों, इस अंतिम जानकारी में हम आपको बता रहे हैं कि जुगनुओं की जो रोशनी है वो कैसे पैदा होती है। बाल साथियों, जब जुगनू श्वास नली के जरिए हवा से ऑक्सीजन अंदर लेता है तो ये ऑक्सीजन सीधा उसकी फोटोसाइट्स कोशिकाओं में पहुंचती है। वहाँ ये ऑक्सीजन ल्यूसीफेरिन केमिकल के साथ मिलती है। ल्यूसीफेरेज एंजाइम की मौजूदगी में इन दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन होता है जिससे खूबसूरत पीली या हरी रोशनी पैदा होती है। और बाल साथियों, दिखने में ये छोटा सा जीव फायरफ्लाई हमें सीख देता है कि एक छोटा सा जीव भी दुनिया को रोशन कर सकता है। तो बाल साथियों, ये तो थी रोचक जानकारी बारिश के मौसम में दिखने वाले कीट फायरफ्लाई या जुगनू के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको अवश्य पसंद आएगी। बाल साथियों, आज आपका और मेरा साथ बस इतना ही। चलने का समय हो रहा है तो अनुमति दीजिए अपनी अर्चना दीदी को। जय हिंद बाल साथियों। अभी बच्चे अपना कार्यक्रम बाल सभा सुन रहे थे। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती और मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दीजिए सुनिए आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं शाम 5:33 और शाम 6:00। 7:21 से 7:30 पर सुनेगा लोक संगीत। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य लंदन में खेले जाने वाले महिला टी20 क्रिकेट मैच का फाइनल मैच का आंखों देखा हाल हम आपको सुनाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से शाम 7:30 से खेल की समाप्ति तक। ये थे आज शाम प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 3:01 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारा ट्रांसमिशन कुछ देर के लिए बंद होता है। शाम 5:05 से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 मीटर पर सुन सकेंगे। इस बीच कार्यक्रम डीटीएच पर जारी है।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 5 बजने को है। अब हमारी आज की संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उपस्थित रहे। इस परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि 6 से 8 जुलाई तक होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर के दर्शन किए। उन्होंने बताया कि साल 2003 में देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का संकल्प लिया था। लगभग 23 वर्षों की यह आध्यात्मिक यात्रा ओंकारेश्वर में पूर्ण हुई।

0: उत्तराखंड के तनकपुर से आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का पहला जत्था रवाना हुआ। इस जत्थे में एक डॉक्टर सहित 49 तीर्थयात्री हैं, इनमें 34 पुरुष और 15 महिलाएं शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें श्रृंखला में बिना कोई मैच हारे हुए फाइनल में पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युगवाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे वनों का संरक्षण हमारा दायित्व विषय पर। संदर्भ है वन महोत्सव सप्ताह। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा शिक्षा है अनमोल रत्न, पढ़ने का सब करो जतन। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे विषय जल है तो कल है पर। वार्ताकार हैं शिवांगी तोमर। साथ ही क्रम जीवन आलोक में हम चर्चा करेंगे अपने गुरुजनों का सम्मान करें विषय पर, और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं वनों का संरक्षण हमारा दायित्व विषय पर। दोस्तों, वनों का संरक्षण हमारा दायित्व है। वन महोत्सव भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1950 में कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा की गई थी। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और लोगों में वन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। दोस्तों, वनों का संरक्षण हमारा दायित्व है। वन प्रकृति की अमूल्य देन है। वे पृथ्वी पर जीवन के आधार स्तंभ हैं। मानव जीवन, पशु पक्षियों का अस्तित्व तथा पर्यावरण संतुलन वनों पर निर्भर करता है। वन हमें शुद्ध वायु, वर्षा, औषधियाँ, ईंधन, लकड़ी और अनेक प्रकार के संसाधन प्रदान करते हैं। इसलिए वनों का संरक्षण केवल सरकार का ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। दोस्तों, वन पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वायु शुद्ध होती है। वन मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं और जल स्रोतों को सुरक्षित रखते हैं। दोस्तों, वे वर्षा चक्र को भी प्रभावित करते हैं, जिससे कृषि और जल आपूर्ति सुचारू रूप से चलती है। यदि वन नष्ट हो जाए तो पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा और मानव जीवन अनेक संकटों से घिर जाएगा। दोस्तों, वर्तमान समय में वनों का संरक्षण आज की महती आवश्यकता है। औद्योगिकरण, शहरीकरण के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। नई सड़कों, भवनों, कारखानों और कृषि भूमि के विस्तार के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं, जो आने वाले समय के लिए बहुत हानिकारक है। हमें वनों का संरक्षण करना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसका परिणाम जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, बाढ़ और जैव विविधता जैसे विनाश के रूप में सामने आ सकता है। दोस्तों, वन केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि लाखों जीव जंतुओं, पक्षियों का प्राकृतिक आवास भी हैं। वन नष्ट होने पर अनेक प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर पहुंच जाती हैं। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। इसलिए हमें वनों का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, सरकार के द्वारा भी वन संरक्षण के लिए कई योजनाएं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे सामाजिक वानिकी, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम तथा विभिन्न पर्यावरण संरक्षण अभियान। किंतु इन योजनाओं की सफलता तभी संभव है जब आम जनता सक्रिय रूप से इसमें भाग ले। समाज के प्रत्येक वर्ग को

यह समझना होगा कि वन हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। वन मानव जीवन और प्रकृति के लिए अमूल्य संपदा है। उनका संरक्षण करना हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व है। यदि हम वनों की रक्षा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण, पर्याप्त जल और स्वस्थ जीवन प्राप्त होगा। दोस्तों, इसीलिए हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम पेड़ों की रक्षा करेंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे और दूसरों को भी वन संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे। वास्तव में वनों का संरक्षण ही मानव जीवन का संरक्षण है। दोस्तों, आइए चलते हैं अब फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में। हमारे अगले विषय शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। दोस्तों शिक्षा मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धन और अनमोल रत्न है। यह व्यक्ति को ज्ञान, विवेक, संस्कार और आत्मविश्वास प्रदान करती है। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा माना जाता है। शिक्षा केवल पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाती बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाती है। इसलिए कहा गया है शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। इसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। दोस्तों शिक्षा की शुरुआत बचपन से ही होती है। प्रारंभिक शिक्षा बच्चे के व्यक्तित्व की नींव तैयार करती है। इस स्तर पर बच्चों को भाषा, विज्ञान, नैतिक मूल्य, अनुशासन और सामाजिक व्यवहार की जानकारी दी जाती है। बच्चे इसी अवस्था में अच्छी आदतें को ग्रहण करते हैं और उनके मानसिक और बौद्धिक विकास की शुरुआत होती है। यदि प्रारंभिक शिक्षा मजबूत होगी तो भविष्य में विद्यार्थी उच्च शिक्षा आसानी से प्राप्त कर सकता है। दोस्तों माध्यमिक और उच्च शिक्षा का महत्व भी उतना ही है जितना प्रारंभिक शिक्षा का है। माध्यमिक शिक्षा विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल को विकसित करती है। इस स्तर पर विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन कराया जाता है जिससे उनकी रुचियों और क्षमताओं की पहचान होती है। इसके बाद उच्च शिक्षा का चरण आता है। दोस्तों उच्च शिक्षा व्यक्ति को किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान करती है। इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून प्रबंधन, कृषि, विज्ञान, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करके विद्यार्थी अपना करियर निर्माण करते हैं। आज के प्रतिस्पर्धा भरे युग में उच्च शिक्षा का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है क्योंकि यह व्यक्ति को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करती है और उसे आत्मनिर्भर बनाती है। दोस्तों महिलाओं की शिक्षा भी अत्यंत आवश्यक है। कहा जाता है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो वह एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इसलिए सरकार भी शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। विद्यार्थियों को शिक्षा का महत्व समझते हुए नियमित अध्ययन करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना, अनुशासन का पालन करना, शिक्षकों का सम्मान करना और कठिन परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना विद्यार्थियों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों शिक्षा वास्तव में जीवन का अनमोल रत्न है। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक स्तर तक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा ही व्यक्ति को सफल, जिम्मेदार और आत्मनिर्भर नागरिक बनाती है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि स्वयं शिक्षा प्राप्त करें और दूसरों को भी शिक्षित होने के लिए प्रेरित करें। आइए साथियों अब समय हुआ है क्रम वार्ता में हमारे आज के विषय जल है तो कल है पर आपको वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार है शिवांगी तोमर।
1: जल है तो कल है वरना मुश्किल हर पल है, बचा लो पानी अब भी मौका है वरना आने वाली समस्या बड़ी जटिल है। जल के बिना हम सभी प्राणियों का जीवित रहना असंभव है, इसलिए ऐसा कहा भी गया है कि जल ही जीवन है। हमारी रोजमर्रा की दैनिक जरूरतें जल से ही पूरी होती हैं। हमें नदी, तालाब, कुएं इत्यादि जल स्रोतों से जल प्राप्त होता है जिसका उपयोग हम अपने दैनिक गतिविधियों में करते हैं। पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है जिसकी वजह से जगह जगह पानी की किल्लत देखी जा सकती है। जल को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर जल संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय में जल की भीषण समस्या बन जाएगी। जल को बेवजह नहीं बहाना चाहिए। जल के दुरुपयोग पर मनुष्य को निश्चित तौर पर अंकुश लगानी होगी। हमें अपने प्रत्येक दैनिक कार्य के लिए जल की आवश्यकता होती ही है। सुबह होते ही ब्रश करने से लेकर नहाने से लेकर कपड़े धोने

तक जल की जरूरत होती है। घरेलू कार्यों में भी, जैसे भोजन पकाने में, बर्तन धोने में, घर की साफ सफाई करने में जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन कार्यों के लिए संतुलित मात्रा में ही जल का उपयोग करना चाहिए। जल प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है। इसका सोच समझकर उपयोग करना हमारे हाथ में है। बहुत सारे नागरिकों को आदत है कि जल का उपयोग करने के पश्चात वे नल को खुला ही छोड़ देते हैं। यह गलत है। पानी को बेवजह व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें अपने भविष्य के बारे में भी सोचना होगा। पृथ्वी पर 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 97% पानी सागरों और महासागरों में पाया जाता है। यानी पीने योग्य पानी बहुत ही कम है, क्योंकि जो पानी महासागरों में और सागरों में भरा हुआ है वो बहुत ही खारा है, जो कि पीने योग्य नहीं है। सिर्फ 3% पानी ही पीने के काबिल है। उसमें से भी 2% पानी बर्फ यानी ग्लेशियरों में पाया जाता है। सिर्फ 1% पानी ही नदी, नहर, झरने, कुएं तरल रूप में पाए जाते हैं। इसी से हम समझ सकते हैं कि पीने योग्य पानी बहुत कम है। हमें अभी से सचेत हो जाना चाहिए और सभी को इस विषय में जानकारी देनी चाहिए, ताकि सभी पानी जैसे महत्वपूर्ण संसाधन को बचा सकें। ज्यादातर लोग, तकरीबन 70-75% लोग पानी की परेशानी झेल रहे हैं। गर्मियों में अक्सर जल स्रोत सूख जाते हैं। आने वाले कुछ वर्षों में यह समस्या भयानक रूप धारण कर सकती है। अगर इसी तरह से लोग बिना सोचे समझे पानी का उपयोग करते रहे तो हमें स्वच्छ जल की एक बूंद भी प्राप्त नहीं होगी। हमें पानी का संचय करना ही होगा। वर्षा के जल को बचाकर उसे तालाबों में जमा कर लेना चाहिए। वर्षा के जमा जल को जरूरत के समय इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और हम सबको पेड़ पौधे भी अधिक से अधिक लगाने चाहिए, क्योंकि जितने अधिक धरती पर पेड़ पौधे होंगे वर्षा उतनी ही ज्यादा होगी। जल को बचाने के कई सारे उपाय हैं, जैसे कि हर नागरिक को जल संरक्षण हेतु जागरूकता देना, शावर की जगह बाल्टी में पानी भरकर स्नान करना, बर्तन धोते समय भी नल के स्थान पर टब का प्रयोग करना। आपको याद हो तो गांव और शहरों में पहले तालाब हुआ करते थे, जिनमें जल एकत्र रहता था, जो न केवल पानी के स्तर को आसपास बचाए रखता था बल्कि दैनिक उपयोग के लिए भी काम आता था। आज गांव और शहरों में तालाबों को पाट कर घर बना दिए गए हैं। इसलिए जरूरी है कि जल संरक्षण हेतु गांव और शहरों में तालाब फिर से खोदे जाएं। पहले से उपयोग किए हुए जल का भी या फिर थोड़ी सी गंदे जल का भी सिंचाई में उपयोग करके भी जल संरक्षण किया जा सकता है। वर्षा का जल छत पर संरक्षण करके उसका उपयोग करना चाहिए। इसीलिए हमें छतों पर भी पानी की टंकियां बनानी चाहिए, जिससे वर्षा का जो जल आए वो टंकियों में भर जाए और बाद में हम उनका उपयोग कर पाए। पर्यावरण के प्रति जागरूकता जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण संतुलन का सकारात्मक प्रभाव जल संरक्षण पर पड़ता है। कटते हुए वृक्षों के कारण भूमि की नमी लगातार कम हो रही है, जिससे भूजल स्तर पर बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए जरूरी है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु जागरूकता लाई जाए। नदियों के जल में गंदा पानी भी ना छोड़ा जाए, जिससे जरूरत पर उस जल का प्रयोग पीने तथा अन्य उपयोगों में किया जा सके। जल संरक्षण विषय को व्यापक अभियान की तरह सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तरों पर प्रचारित की जरूरत है, जिससे छोटे बड़े सभी इस विषय की गंभीरता को समझें और इस अभियान को अपनी भूमिका अदा करें। विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी निरंतर प्रचार एवं प्रसार की जरूरत है, जिससे युवा पीढ़ी समय रहते इसकी गंभीरता को अच्छी तरह से समझ सके। जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का सहारा लेना चाहिए। यह तकनीक पानी की कमी से निपटने का तरीका भर नहीं है। कई बार तो ऐसा देखने में आया है कि इस तकनीक से इतना जल एकत्र हो जाता है कि दूसरे स्रोत की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और यहाँ तक कि दूसरे को भी पानी उधार देने में सक्षम हो जाते हैं लोग। तो ये है कुछ हमारे जल को बचाने के उपाय। इन्हें अपनाकर हम निश्चित ही अपना कल सुरक्षित कर सकते हैं। लोगों में पानी के प्रति

0: जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं, ताकि लोग पानी की कीमत को समझ सकें, विश्व के हर नागरिक को इसके महत्व से अवगत कराने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। विश्व जल दिवस पर हर वर्ष एक नई थीम रखी जाती है। इसी तरह इस वर्ष की थीम है वैल्यूइंग वाटर। वैल्यूइंग वाटर का अर्थ है कि पानी का क्या महत्व है, यह कितना कीमती है और हम इस महत्वपूर्ण संसाधन की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी साफ सुथरे पानी का लाभ उठा सके। पानी ही जीवन का आधार है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जिस तरह से अब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, उससे साफ है कि भविष्य में संकट और गहरा हो सकता है। इसलिए जितना हो सके उतना जल बचाएं एवं अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और अपनी धरती माँ का अभिनंदन करें।
1: दोस्तों, अभी सुन रही थी आप वार्ता, विषय जल है तो कल है पर। वार्ताकार थी शिवांगी तोमर। अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय अपने गुरुजनों का सम्मान करें पर चर्चा करने का। दोस्तों भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, अर्थात गुरु को ईश्वर के समान माना गया है। माता पिता हमें

0: गुरुजनों का सम्मान करने पर चर्चा करने का। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, अर्थात गुरु को ईश्वर के समान माना गया है। माता पिता हमें जन्म देते हैं, लेकिन गुरु हमें ज्ञान देकर जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। वे हमें एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनने की शिक्षा देते हैं। हमारी प्रथम गुरु हमारी माँ होती है। दोस्तों, गुरु केवल पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि अच्छे संस्कार, अनुशासन, नैतिकता और जीवन के मूल्यों की भी शिक्षा देते हैं। वे विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारने का कार्य करते हैं। गुरु हमें सही और गलत में अंतर समझाते हैं और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, एक अच्छा गुरु अपने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर मेहनत करता है। वह चाहता है कि उसका विद्यार्थी जीवन में सफल हो और समाज तथा देश का नाम रोशन करे। इसलिए गुरु का योगदान अमूल्य होता है। विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे और अपने गुरु की सेवा करते थे। आज के आधुनिक युग में शिक्षा के साधन बदल गए हैं, लेकिन गुरु का महत्व आज भी उतना ही है। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान कर उनके भविष्य का निर्माण करते हैं। दोस्तों, गुरुजनों का सम्मान केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से करना चाहिए। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, विद्यालय में गुरुजनों का आदर पूर्वक अभिवादन करना चाहिए। हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। समय पर गृह कार्य और पढ़ाई पूरी करना चाहिए। अनुशासन का पालन करना चाहिए और अपने गुरुओं से हमेशा विनम्रता से बात करनी चाहिए। दोस्तों, गुरु हमारे भविष्य के निर्माता हैं। जो विद्यार्थी अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं, वे जीवन में सफलता, ज्ञान और अच्छे संस्कार प्राप्त करते हैं। हमें सदैव यह याद रखना चाहिए कि गुरु का सम्मान करना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हमारा नैतिक दायित्व भी है। गुरुजनों के प्रति आदर, विनम्रता और कृतज्ञता का भाव ही हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। सच ही कहा गया है, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है और गुरु का सम्मान ही सच्चे विद्यार्थी की पहचान है। दोस्तों, घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।
1: अभी युवाओं के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की थी। मीडियम वेव डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर आपने
2: मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

मिकी वायरस। इस फिल्म का गीत आपने सुना मोहित चौहान और पलक मुछाल की आवाजों में। गीत संगीत था हनीफ शेख का। और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गीत।

0: चेन्नई एक्सप्रेस, इस फिल्म का गीत आपने सुना सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में। शब्द रचना थी अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीत दिया था विशाल शेखर ने।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं मद्रास कैफे फिल्म का गीत, जेबुन नुशा बंगश की आवाज में।

0: मद्रास कैफे, इस फिल्म का गीत आपने सुना जेबुन नुशा बंगश की आवाज में। बिलाल सामी के लिखे गीत को संगीत दिया था शांतनु मोइत्रा ने।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: और लीजिए फिल्म संगीत के आखिर में सुनिए वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म का गीत जावेद अली की आवाज में। शब्द रचना है अनुपम आमोद की, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए हम आपको बताते हैं हमारे केंद्र से आज की शेष और कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम भजन संध्या। कलाकार होंगे जगजीत सिंह। कबीर अमृतवाणी सुनिए 6:15 पर। गायन स्वर होगा डॉक्टर एलसी अनुरागी का। 6:30 पर आप सुनेंगे लोकधारा कार्यक्रम। कलाकार होंगे जगदीश कुमार जोशी। आप सुनेंगे बुंदेली लोकगीत। ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा 7:20 पर। इसमें आप सुनिए धारावाहिक चिट्ठियां देवर भौजाई की। विषय होगा ऊर्जा संरक्षण और प्रस्तुति होगी शंभू दयाल अहिरवार की। साथ ही आप सुनेंगे डॉक्टर राम कुमार से उनकी वार्ता, किसानों की आय सृजन में मधुमक्खी पालन का योगदान।

9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी।

कल हमारी प्रातःकालीन सभा में 7:20 पर हिंदी महक के अंतर्गत आप सुनेंगे फैज मोहम्मद से हिंदी काव्य पाठ। 7:30 पर सुनिए फिल्म संगीत।

8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से। इसमें सुनिए कवि प्रदीप से अनीता कुमारी की बातचीत। 9:00 लोकरंग कार्यक्रम में कलाकार होंगी उर्मिला पांडे। और 9:30 पर आप सुनेंगे एक ही संगीतकार क्रम में अनु मलिक के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत। 10:05 पर सुनिए मिश्रित संगीत का कार्यक्रम सब रंग। इसमें हम आपको भजन सुनवाएंगे शैलेंद्र सिंह से, गजल सुनीता देवी से, गीत प्रज्ञा सप्रे से, साथ ही सुनिए फिल्मी धुन और फिल्मी गीत। 10:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं की ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

0: कल हमारी दूसरी सभा में युवा श्रोता सुने युववाणी कार्यक्रम शाम 5 बजे। इसमें आप सुनेंगे सवाल हमारे जवाब। आपके साथ ही सुनिए काव्य पाठ तत्व स्वरूप शुक्ला से। फिल्म संगीत 5:40 पर और 6 बजे आप सुनेंगे भोपाल से अनुप्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 6:30 पर लोकधारा की कलाकार होंगी रज्जू राजा चौहान। 7:20 पर ग्रामीण भाई सुने ग्राम सभा कार्यक्रम। इसमें आप सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल, ईमेल और पत्रों पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम रमतुला। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। साथ ही सुनिए डॉक्टर रुचि से रविन्द्र कुमार प्रजापति की बातचीत। भेंटवार्ता का विषय होगा अच्छा बीज अच्छी फसल किसान सफलता की कुंजी। रात 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत, माफ कीजिए 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और रात 10 बजे सुनिए मन भावन। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त होता है। मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उपस्थित रहे। इस परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि 6 से 8 जुलाई तक होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर व ममलेश्वर के दर्शन किए। उन्होंने बताया कि साल 2003 में देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का संकल्प लिया था। लगभग 23 वर्षों की यह आध्यात्मिक यात्रा ओंकारेश्वर में पूर्ण हुई। उत्तराखंड के टनकपुर से आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का पहला जत्था रवाना हुआ। इस जत्थे में एक डॉक्टर सहित 49 तीर्थयात्री हैं। इनमें 34 पुरुष और 15 महिलाएं शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं उज्जैन इंदौर सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें श्रृंखला में बिना कोई मैच हारे हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड

0: ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भजन संध्या। इसमें हमारे आज के कलाकार हैं जगजीत सिंह।

जगजीत सिंह के गाए इस भजन के साथ ही भजन संध्या कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कबीर अमृतवाणी। गायन स्वर है डॉक्टर LC अनुरागी का।

सज्जनों, संत कबीर की अमृत वाणी विश्व शांति में सहायक है। सज्जनों, संत कबीर ने मनुष्य को विशेष अपने ज्ञान के द्वारा चेताया है। उन्होंने कहा कि केवल योग्य निंदक ही सच्चा रास्ता दिखाता है। तो उन्होंने अपनी कबीर वाणी में लिखा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शोभाए। अर्थात जो सच्चा निंदक हो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। ऐसे निंदक को तो अपने आंगन में ही उसकी कुटिया बनवा दीजिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपके स्वभाव को बिना पानी और साबुन के ही स्वच्छ यानी निर्मल करता रहेगा। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि बुराई करने वाला नित्य आपको सचेत करता रहता है कि आप कब और कहां गलतियां करने वाले हैं, तथा बीते समय में भी आपने क्या गलतियां की इसकी ओर भी ध्यान कराता रहता है। कबीर साहब आगे कहते हैं, निंदक दूर न कीजिए कीजे आदर मान, और निर्मल तन मन सब करे बके आन ही आन। इसका अर्थ है, निंदक को अपने से कभी दूर न करें, उसका आदर करें। निंदक आपके जीवन

कर्म एवं आचरणों के विषय में आपको सावधान करता रहेगा तथा आपके तन मन को निर्मल बनाता रहेगा। आप दोषमुक्त होते हुए अत्यधिक निखरते जाएंगे। दूसरों की निंदा करने वाले व्यक्तियों से तो बचकर रहना चाहिए, परंतु अपनी निंदा करने वाले से दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि उससे हमें अपनी त्रुटियों की जानकारी मिलेगी, जिसे हम सुधार कर अपना जीवन मंगलमय बना सकते हैं। कबीर साहब आगे कहते हैं कि निंदक हमरा जनी मरो जीवो आदि जुगादी, और कबीर सदगुरु पाइया निंदक के प्रसाद। अर्थात कबीर कहते हैं कि हे निंदक, तुम जुग जुग जियो। हम निंदक द्वारा बताए गए दोषों को दूर करने के लिए सदगुरु की शरण में जाएंगे और सच्चे सदगुरु को प्राप्त करेंगे। कबीर जी आगे कहते हैं कि कबीर निंदक मर गया अब क्या कहिए जाए, और ऐसा कोई ना मिले बीड़ा ले उठाए। अर्थात कबीर कहते हैं कि बड़े दुख की बात है कि हमारा निंदक मर गया, अब जाकर किसे क्या कहें, क्योंकि अब ऐसा निंदक मिलना मुश्किल है कि जो हमारी निंदा करे। हमारे अवगुणों को बताने वाला निंदक ही हमारा परम हितैषी होता है, इसलिए उसको अपने पास रहना ही अच्छा है। कबीर हमें दोबारा कहते हैं, काहू को नहीं निंदिए चाहे जैसा होए, फिर ताको बंदिए साधु लक्ष्य है सोए। अर्थात कबीर कहते हैं कि कभी किसी की निंदा मत करो, चाहे कोई कैसा भी हो, बल्कि उसकी बार बार प्रशंसा करते हुए उसका सम्मान करो। सच्चे साधु का यही लक्षण होता है कि हर किसी के सद्गुणों को जानकर उसका उचित सम्मान करे, यही सच्चे साधु का वास्तविक गुण है। कबीर जी आगे कहते हैं, तिनका कभू न निंदिए पांव तले जो होए, और कभू उड़े आंखों पड़े पीर घनेरी होए। कबीर साहब कहते हैं कि जो तिनका अपने पैर पर लग जाता है उसकी भी निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना जाने वह तिनका उड़कर आंखों में चला जाए और अत्यंत पीड़ादायक हो जाए। तो कबीर साहब कहते हैं कि किसी को भी तुच्छ जानकर उसकी निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना जाने कब कौन कहां पर अपना बदला चुका दे या काम आ जाए। अतः किसी की निंदा ना करना ही अपने लिए ठीक ही है। कबीर वाणी में आइए, आपको कबीर के दोहों से आपको हम परिचित कराएंगे।

सज्जनों, जीवन में तनाव मुक्त के लिए कबीर साहब की आरती अत्यंत आवश्यक है। आइए तनाव मुक्त जीवन के लिए कबीर की आरती गाएं।

0: जय कबीर।
1: अभी आप सुन रहे थे कबीर अमृत वाणी। गायन स्वर था डॉक्टर एलसी अनुरागी का। मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है लोकधारा कार्यक्रम। आइए, इसके आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं जगदीश कुमार जोशी के स्वर में देवी गीत।

0: तीनों कॉलेज में
1: डोंट वरी
0: फीस तो देखो
2: क्या हाल है क्या हुआ
1: फीस की टेंशन
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही
3: रास्ता क्लियर बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का नो कोलैटरल
2: वो कहाँ है
3: मिठाई
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
6: और आइए अब सुनते हैं जगदीश कुमार जोशी से चेतावनी।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अब हम आपको सुनवाते हैं जगदीश कुमार जोशी के स्वर में लोक शैली बद्ध गीत।

अभी आपने लोक शैलीबद्ध गीत सुना, और लीजिए अब हम आपको सुनवाते हैं जगदीश कुमार जोशी से चौकड़िया।

और लीजिए, लोकधारा कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं जगदीश कुमार जोशी के स्वर में चौकड़िया।

जगदीश कुमार जोशी की गाई इस चौकड़िया के साथ ही लोकधारा कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए हम आपको दे दें गुमशुदा के संबंध में सूचना। ये गुमशुदा हैं कुमारी स्वाति। आप दिनांक 22 मई 2026 को समय रात्रि के 11 बजे से लापता हैं ग्राम ऊद से। आपकी आयु है 22 वर्ष, कद है 4 फीट 9 इंच, शरीर की बनावट सामान्य, रंग गेहुआ, चेहरा गोल, आंखें सामान्य, बाल सामान्य काले। इन्होंने सलवार कुर्ती पहनी हुई है। यदि किसी को इनके बारे में सूचना मिलती है तो ये इस पते और मोबाइल नंबर पर कृपया सूचित करें। अनिल कुमार पुत्र बाब राम बाबू, निवासी ग्राम ऊद, थाना सिरसा कलार, जनपद जालौन, मोबाइल नंबर 7379106623।

23 मई 2026 को मुकाम कागजीपुरा कालपी से लापता हैं। आयु है 23 वर्ष, एकहरा बदन, चेहरा गोल, रंग गेहुआ, चेहरे पर तिल का निशान, बाल काले, आंखें सफेद काली। इन्होंने सलवार कुर्ता पहना हुआ है। यदि किसी को इनके बारे में सूचना मिलती है तो वे इस पते और मोबाइल नंबर पर सूचित करें। पता है श्रीमती चंद्रा सैनी, पत्नी शंभू सैनी, ग्राम

एक और गुमशुदा के संबंध में आपको सूचना दे दें, इनका नाम है रोशनी। ये दिनांक

इमलिया कालपी, मोबाइल नंबर है 9925277349। सूचना समाप्त हुई।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: दीदी नौकरी लग गई।
3: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
2: हाँ दी नया मोबाइल।
3: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
3: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
2: पर दीप
3: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
3: अच्छा
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में डिफेंस प्लांट का शिलान्यास किया। वी जी रामजी

मॉनसून हुआ सक्रिय, आज कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। यह परियोजना औद्योगिक विकास के विजन को नई गति प्रदान करेगी। परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जोड़ने का

0: अवसर मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश का एक नया मार्ग खुला है।
1: आज ग्वालियर अंचल में हमारा डिफेंस कॉरिडोर का पहला प्रोजेक्ट लगभग 2500 करोड़ से 3000 करोड़ का, जहां मिसाइलें बनेगी, यहां पर रोजगार भी मिलेगा और मिसाइल भी 1000 किलोमीटर लंबी वाली, जिस प्रकार से उन्नत प्रकार की जो चीजें हो सकती है वो सब होकर के साथ साथ 211 करोड़ के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी यही संपन्न हुआ, जिसमें 6 से 8 सांदीपनी विद्यालय जो बनकर तैयार हो गए और नए 2 पुल सड़क अलग अलग प्रकार के निर्माण कार्य। इसी के साथ साथ यहां भविष्य की आवश्यकताओं के लिए कि यहां हमारा अंदर का 4 लेन बने, जो 14 किलोमीटर का 120 करोड़ का, उसको बनाने की घोषणा की।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आज यह शुभ शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे आधुनिक शस्त्र शिवपुरी में बनाए जाएंगे।
2: आज ये शुभ शुरुआत संभव हो पाई। 1500 से 2000 करोड़ रूपये का निवेश गुना में अडानी सीमेंट प्लांट का, 2500 से 3000 करोड़ का निवेश शिवपुरी में। यहां केवल मिसाइल का प्रोपेलेंट नहीं, लेकिन बारूद का, मिसाइल की असेंबली, समस्त रूप से सबसे विश्व की आधुनिक शस्त्र शिवपुरी में उत्पादित की जाएगी। कि ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, भारत का नहीं, संपूर्ण दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निवेश निजी क्षेत्र की कोई कंपनी का है जो आज शिवपुरी में संभव हो पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। आज जकार्ता में आकाशवाणी को दिए एक साक्षात्कार में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि 6 से 8 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोग के कई नए क्षेत्र खुलेंगे और इन दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी रामजी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल के सदगढ़ी में विकसित किए जा रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर यह कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में 200 से अधिक प्रमुख उद्योगपति, निवेशक और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। लगभग 173 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाला यह पार्क औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का नया आधार बनेगा। परियोजना में आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, उत्कृष्ट सड़क एवं परिवहन संपर्क, IT एवं AI आधारित सुविधाएं, लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स तथा भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा, जिससे निवेशकों को विश्व स्तरीय औद्योगिक वातावरण उपलब्ध हो सके। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR एवं मतदाता सूची के परिशोधन का कार्य अत्यंत पारदर्शी, सुलभ और व्यवस्थित तरीके से संपन्न किया है। आज इंदौर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने संवाद के दौरान कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया विश्व की सबसे पारदर्शी और विश्वसनीय प्रक्रियाओं में से एक है। इसी पारदर्शिता और दक्षता के कारण भारत आज विश्व के 35 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के संगठन इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता कर रहा है। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि वे राष्ट्र की उन्नति, समाज के विकास और मानवीय मूल्यों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करें। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम

बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सशुल्क विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक न्याय दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को शिक्षा, तकनीकी और गतिशीलता से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने पात्र विद्यार्थियों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने तथा जिला अधिकारियों को योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में वर्षा का सबसे अधिक असर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला अब से कुछ देर बाद लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। इंदौर शहर को पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत कुल 150 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें से पहले चरण में 10 बसों का संचालन ट्रायल के रूप में शुरू किया गया है। धार में खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी में प्रवेश हेतु तीरंदाजी के खिलाड़ियों का ट्रायल लिया गया। इसमें 23 खिलाड़ियों ने भाग लिया। आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित सरकारी गोचर भूमि से लगभग 100 से अधिक झोपड़ियां, कच्चे मकान तथा गुमटियों को बुलडोजर के माध्यम से हटाने की कार्रवाई की गई। नर्मदापुरम में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी स्कूलों और महाविद्यालयों में विशेष नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाया जाए। इंदौर में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा कल एक दिवसीय युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा 250 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जबलपुर शहर में ऑपरेशन सेफ क्लिक 2.0 के तहत आज सिविल लाइन थाना पुलिस ने साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए ग्रामीण भाइयों के लिए प्रस्तुत है ग्राम सभा कार्यक्रम।

0: ग्राम सभा सुनबे बारे सबई भैया बहनन खां किस्सू भैया
1: और रघु भैया की
0: राम राम राम राम राम रघु भैया आओ आओ बिराजो और देखो अपन तो पूरे निचोड़ गए पानी में आज तो।
1: देखो भैया अब बरसात तो शुरू हो गई है और आज अच्छी खासी बरसात हुई है और अपने देखो छतरपुर में
0: बिल्कुल
1: लोग बागन खां गर्मी से तो राहत मिल गई है
0: बिल्कुल।
1: साथ में भैया जो अपने किसान पंच भैया है उन्हें उनकी अब बोनी अच्छी तरह से हो जाए
0: बिल्कुल। कैसे कुल दिना से देखो बाट भी हे रहे थे कि भैया कोनू तरीका से कोनू दिना पानी अच्छो गिर जाए तभी भैया उनके फसल जो खेत बाड़ी है उनकी बढ़िया ताव पे आ जाए और वे जल्दी से बुवाई कर देवे क्या नहीं।
1: देखो भैया अपने जो पंच भैया हैं उनको आय को जरिया तो भैया खेती किसानी है
0: बिल्कुल।

0: तो उनके चेहरे पे जरूर खुशी आई हुई
1: बिल्कुल बिल्कुल आई हुई है रघु भैया। और देखो रघु भैया, हम देखत हैं आज की जो पीढ़ी है बड़ी लापरवाह है और कहो जाए तो संस्कारहीन हो जा रही है।
0: देखो भैया, आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में अपने बच्चन का संस्कारवान तो बनाने इकलौते उनको विशेष ख्याल रखने हैं।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें। कर्तव्य या माता पिता जब तक स्वयं को आचरण अच्छा न करें, जब तक घर को बात
1: बिल्कुल
0: नहीं हो सका।
1: बिल्कुल, कितनी उम्दा बात अपन ने करी। अपन देखते हैं बाल बच्चे जोन है भी अपने माँ बाप ही से सीखत, उनके बाप मताई जैसी चाल चल है उसे ही देख देख के सीखे। अच्छा, अगर अपन उन्हें उपदेश देवे कि भैया बेटा ऐसो करने, तो उसे भी उतनी जल्दी नहीं बदलत।
0: और भैया कहा है अच्छी शिक्षा बच्चन के जीवन में कामयाबी दिलाते, उन्हें सफल बनाउते हैं और अच्छे संस्कार उन्हें बेहतरीन इंसान बनाउते हैं और वे समाज के आदर्श नागरिक बनाते।
1: बिल्कुल, और रघु भैया के संगे संगे एक बात को और हमें पंचना ध्यान देने, केव घर में अपन देखा थे दिन भर कलह मची रात, लड़ाई झगड़ा दुनिया भरे के बतकाव होत रात, तो इनको भी असर बाल गोपालन पे बहुत ही बुरा पड़ा।
0: बिल्कुल भैया, उनके कोमल मन पे बहुत प्रभाव पड़ा था। और अपने पंच भैया का देखा थे, कई घर में अपन देखा थे कि बच्चा कोनो गलती करा तो मताई उनके मताई बाप उन्हें मौ देत, नहीं नहीं उन्हें तो सही करी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन भैया अगर बच्चा ने गलती करी तो उखा सिखाए कि भैया गलती स्वीकार करो।
1: बिल्कुल,
0: इसे आगे चल के वो अपनी गलती स्वीकार है अच्छो नागरिक।
1: बिल्कुल, और संगे संगे देखो उके संगे इतना कठोर ना हो जावे, उहा तना मना दंड भी देवे। अगर उन्हें कोनो गलती करी है तो उखा दंड देवे, उहा मुंह ना देवे, तो इसे हमारे बाल गोपालन का अच्छे संस्कार भी मिलत और आगे चल के देखो सफल हो अपन और इनको अपने बाप मताई इनको नाम रोशन करत के नहीं, अच्छे अच्छे काम कर है।
0: जब अपनो अपने बाल गोपाल नाम रोशन करत तो भैया छाती बिल्कुल फूल जाते है कि हमारे बालक ने या हमारे बच्ची ने आज इतना अच्छा काम
1: किया। तो
0: भैया अब खेती किसानी की बात हो जाता ना, कैसे भैया जब अपन ने बात करी है कि पानी बरस गए, पंच भैया बुआई कर रहे हैं, तो पंच भैया अच्छो बीज बोए।
1: बिल्कुल,
0: और अच्छे बीज की पहचान है भैया को, सब जितने भी बीज हो सब एक सिर हो,
1: बिल्कुल
0: एक रंग के हो,
1: एक रंग के।
0: और पंच भैया जो भी ध्यान रखे कि जहाँ से अपने पंच भैया बीज खरीदे
1: तो
0: प्रमाणित बीज खरीदे।
1: बिल्कुल,
0: जो नैया के और सस्तो बीज खरीद ले आए उसमें धूल कंकड़ और खरपतवार के बीज हुए, और जब अपन ने फसल बेई तो पता चलो कि फसल तो अच्छी इतना पड़ी, खरपतवार ज्यादा
1: पहले हो गया। बिल्कुल रघु भैया, एक चीज और है हमारे पंचन ध्यान रखने की, अगर भी बीज लेके आ रहे तो पैकेट खोल के उमे देख ले बे के भी रेसो होत के पैकेट के अंदर कटे पटे बीज कौन ऐसे जोन छिले बीज या कौन अलग सिकुड़े भाई बीज ऐसे भी भरे रात।
0: कहूँ कहूँ कहू भैया के बहुत समय के रखे बीज भैया ले आउ।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें तो मालूम नहीं रात के कितने पुराने हैं, और जैसे ही उन्हें खोले सुबह कहूँ फपूड़ा लगे हो गया, तो ऐसे पंच भैया का बीज बिल्कुल नहीं लेना।
1: बिल्कुल, और जब भी पैकेट ले आए तो वे तनक एक बर्तन में डाल के देख ले, अगर बीज उमदा हो गए सुबह बुवाई कर देवे।
0: और भैया अपन पंच भैया का बता, पीले और सुनहरे टैग वाले बीज 100% शुद्ध होते।
1: बिल्कुल, और संगे संगे सफेद रंग के आधार बीज पे उमे लगो रात,
0: और नीले टैग वालों बीज भी अब प्रमाणित बीज होते हैं।
1: बिल्कुल, इसे किसान जोन है व्यवसायिक किसान जोन है भी लोग वहाँ खरीदे थे।
0: और भैया देखो बरसात तो चल ही रही है, और बरसात के पानी का अपने पंच भैया का बहान नहीं देना है, वह सहेज ना है।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। देखो बरसात को पानी अगर हमारे पंचन ने सहेज लो, अपनी मेड़बंदी करके वो पानी का रुका लो, तो जो आगे भविष्य में कामे आउत के नहीं आउत।
0: और देखो भैया अगर अपने पंच भैया बरसात के पानी का सहेज रहे तो काहे तो घर को जो अपने पंच भैया के आसपास को बाटल लेवल हो।
1: बिल्कुल,
0: इसे का होत के जैसे गर्मी वो ठंडन में बरसात में तो पानी कमी नहीं पड़ा।
1: बिल्कुल,
0: पता तो चलो गर्मी आई ले डब्बा घूम रहे पंच भैया आ रहे हैं, तो
1: बस समस्या ना आन पावे उके पहले हमारे पंच बरसात को पानी को सहेज के रखें। अच्छा एक चीज और है रघु भैया, पानी सहेजने तो है लेकिन स्वच्छ पानी सो हमारे पंचना पीने।
0: बिल्कुल भैया, स्वच्छ और सुरक्षित पानी अच्छे स्वास्थ्य बेहतर पाचन और पंच भैया के दीर्घायु जीवन के लाने बहुत आवश्यक है।
1: अच्छा केव भी का होते हैं हमारे पंचना दूषित पानी अगर पी लेते हैं तो उसे हैजा डायरिया जैसी जानलेवा बीमारियां को कारण बन जाते हैं।
0: और भैया एक बात और बताया, अगर शुद्ध पानी अपन पियत है
1: बिल्कुल,
0: तो शुद्ध

0: पानी शरीर में जो अपनी हानिकारक और विषाक्त पदार्थ उन्हें बाहर निकाला
1: बिल्कुल
0: और कोशिकाओं का पोषण देता है
1: बिल्कुल और स्वच्छ पानी जो है बीमारियों से बचाव सो करते रघु भैया
0: देखो पाचन का बेहतर करते और शरीर के तापमान का भी नियंत्रण रखते
1: बिल्कुल तो रघु भैया जे तो अपन बतकाव करते ही रहे हैं और ऊ के पहले अपन अब लेके चलते हैं पंचन है एक वार्ता कोद
0: बिल्कुल भैया
1: तो सुनवाउत है किसानों की आय सृजन पे मधुमक्खी पालन का योगदान वार्ताकार है डॉक्टर राम कुमार जी
2: नमस्कार मैं डॉक्टर राम कुमार कृषि वैज्ञानिक आज आपसे मैं एक विषय पर चर्चा करूंगा विषय है किसानों की आय सृजन में मधुमक्खी पालन का योगदान जैसे कि हम जानते हैं जो मधुमक्खी पालन है एक सुगम एंड कृषि सुगम और जो हमारी कृषि है उससे जुड़ा हुआ व्यवसाय है और इसको सीमांत लघु और भूमिहीन किसान सभी आसानी से कर सकते हैं तो हम बात करें मधुमक्खी पालन क्या है इससे हम कैसे आय अपनी बढ़ा सकते हैं और यह कृषि से जुड़ा हुआ है तो और इसमें कृषि में क्या इसके लाभ हैं हम बात करते हैं मधुमक्खी पालन की मधुमक्खी पालन वर्तमान समय में सरकार द्वारा भी इस पर बहुत सा अनुदान दिया जा रहा है कि लोग बाग मधुमक्खी पालन को अपनाएं जो हमारे भारत देश में मधुमक्खियों की प्रजातियां पाली जाती हैं उसमें दो प्रजातियां हैं एक जो इटली से यहां मंगाई गई है एपिस मेलिफेरा जो कि सर्वाधिक विश्व में

जो छत्ता है उससे ये साल भर में लगभग 35 से 36 केजी शहद का उत्पादन करती है। और दूसरी मधुमक्खी की बात करें तो एपिस सेरेना इंडिका, जो भारतीय मूल की मधुमक्खी है, इसको ज्यादातर जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं उसमें पाला जाता है। तुम बात करते हैं कि मधुमक्खी पालन से आए, क्योंकि जो मधुमक्खी पालन है ये हमारा आय के साथ साथ जो हमारी उत्पादकता होती है फसलों की, जो परंपरागत फसलें होती हैं उनकी उत्पादकता में भी वृद्धि करता है। जैसे कि अगर हम बात करें सरसों की, तो सरसों में यह 40 से 50%, 40 से 45 और 50% तक उपज में वृद्धि करती है, क्योंकि यह परंपरागत फसलें हैं। अगर हम बात करते हैं जो मधुमक्खियां होती हैं, ये पूरे जो कीड़े, जो जितने कीड़े होते हैं वो परागण में मदद करते हैं, तो उसमें मुख्य मधुमक्खियां होती हैं। मधुमक्खी पालन के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, क्या क्या उपकरण की जरूरत होती है, उस बारे में बताऊंगा मैं। मधुमक्खी पालन के लिए आपको सर्वप्रथम एक बॉक्स की आवश्यकता होती है। उसमें मधुमक्खी में रानी मक्खी होनी चाहिए, उनके वर्कर होने चाहिए, और उसमें कुछ मेल होते हैं जो कि केवल मधुमक्खी का निषेचन में योगदान करते हैं। बाकी जो मधुमक्खी के जो कास्ट का डिवीजन होता है उसमें तीन चीजें, रानी मक्खी होती है, वर्कर्स होते हैं और नर होते हैं। रानी मक्खी का काम केवल अंडे देना होता है, और अंडे रानी मधुमक्खी 2 से 3 साल तक अंडे लगातार देती रहती है। और जो वर्कर्स होते हैं वो निषेचित अंडे से उत्पन्न होते हैं, और उसमें इनका जो जीवन काल होता है 6 हफ्ते का होता है। 3 हफ्ते में ये जो छत्ता होता है उसके अंदर कार्य करते हैं, 3 हफ्ते में छत्ते के बाहर कार्य करते हैं। तो जो 3 हफ्ते में छत्तर के अंदर कार्य करते हैं उसमें ये छत्ते को बनाना, छत्ते की रक्षा करना, और जो नए बच्चे उत्पन्न होते हैं उनको भोजन देना, भोजन प्रदान करना, इन सब चीजों का काम ये जो प्रारंभिक के 3 हफ्ते होते हैं उसमें करते हैं। अंतिम के जो 3 हफ्ते होते हैं उसमें मधुमक्खी बाहर से पराग को एकत्रित करना, रस को एकत्रित करना, इन सब, और जो शहद होती है उसके उसको अपने पेट में पचाकर बाहर निकालना, जिससे कि वो पूर्ण रूपेण शहद बन जाती है, और बैक्स का जो होता है उसका सिक्रीशन करना। ये सब काम जो वर्कर्स होते हैं उनका होता है। इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो मधुमक्खी है इससे हमें उत्पाद क्या-क्या प्राप्त होते हैं। तो हमारा जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उससे सबसे जो प्रमुख उत्पाद होता है वो शहद होती है। शहद की बहुत ही गुणवत्ता युक्त शहद में बहुत सी गुणवत्ताएं होती हैं। शहद का प्रयोग हमारे पुराने समय से हमारे आयुर्वेद में विदित है, और बहुत हम पुराने समय से इसका हम उपयोग कर रहे हैं। तो इसमें जो शहद होती है इसमें लगभग 17% पानी होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है या वसा जिसे हम बोलते हैं ये लगभग 70 से 80% होता है। और इसकी गुणवत्ता की बात करें, इसका हम विभिन्न प्रकार से इसका हम उपयोग में लाते हैं। हम इसका पूजा में भी उपयोग करते हैं, हम इसका दवा के रूप में भी उपयोग करते हैं, हम अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए भी इसका हम उपयोग करते हैं। और इसकी मार्केट में वैल्यू बहुत है। आज के समय में आपने देखा होगा कि जो प्योर शहद है उसका मिलना बहुत ही दुर्लभ हो गया है। गांव के इलाके में अगर हम अपने बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में बहुत ही डाइवर्सिटी है, विविधताएं हैं, यहाँ पहाड़ हैं, नदियां हैं, जंगल हैं। तो हमारे यहाँ अगर हम बात करें कि जो मधुमक्खियां हैं, तो ज्यादातर जो हमारे यहाँ जो पहाड़ों पर पाई जाने वाली मधुमक्खी है उसकी हम शहद प्रयोग में लाते हैं। लेकिन हमारे बुंदेलखंड में अगर हम मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करना चाहें तो ये बहुत सुगमता से हमारे जो किसान भाई हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम लागत में आप अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको भूमिहीन किसान भी इसमें यह व्यवसाय कर सकते हैं, जिसके साथ साथ जो छोटे किसान हैं, लघु किसान हैं, या आपके जो युवा वर्ग है उसको भी ये आसानी से कर सकते हैं। इसके हम और अन्य उत्पाद की बात करें, जैसे मैंने शहद की बात की, इसके साथ साथ हमारा ये बैक्स भी सिक्रीशन करते हैं, प्रोपोलिस होता है, रॉयल जेली होता है, इनकी मार्केट में बहुत ही कीमत है।

ये मार्केट में जो हमारे कॉस्मेटिक्स होते हैं, जो श्रृंगार के सामान होते हैं, उनमें इसका बहुत ही प्रयोग होता है। और किसान इससे अपने शहद के साथ साथ जो इसके अन्य उत्पाद होते हैं उससे और शहद से अधिक आय प्राप्त कर सकता है। और अपनी आय के साथ साथ जिस फसल, मान लीजिए अगर ये सरसों के खेत में आपने मधु के बॉक्स रखे हैं या मधुमक्खी के छत्ते रखे हैं, तो ये सरसों में भी आपकी 25 से 30% जो उसकी उत्पादकता है उसको बढ़ाता है। और अगर पूर्ण रूप से बात करें तो इसमें जो सरसों की फसल है उसकी आपकी जो फली होंगी वो ज्यादा, जो उसको सिलकुआ बोलते हैं वो ज्यादा होंगे, जो उसमें दाना होगा वो दाना अच्छा होगा, क्वालिटी वाला होगा, उसमें तेल की मात्रा अधिक होगी। जब आने वाले सीजन में या समय में जब आप इसको दोबारा से बोएंगे तब इसका अच्छा जर्मिनेशन होगा, इसका जो जमाव है वो अच्छा होगा। ये सारी गुणवत्ताएं, ये जो जो मधुमक्खी द्वारा पालन परागण होता है, पर परागण फसलों में, ये मधुमक्खी की ये गुणवत्ता है कि उसके जो पैर होते हैं, पिछले पैर, क्योंकि इसमें 6 पैर पाए जाते हैं, 2 आगे होते हैं, 2 बीच में होते हैं, 2 पीछे होते हैं, जो पीछे वाले पैर होते हैं उसके एक भाग में एक बदलाव होता है जिससे कि ये बाहर से जब फूलों पर ये घूमते हैं तो ये अपने पैरों में जो परागण होते हैं उनको एकत्र करते हैं और एक फूल से दूसरे फूल में वो स्थानांतरित करते हैं, जिससे कि ये परागण करते हैं और जिस फसल या के फूल पर ये बैठते हैं तो उसकी उत्पादकता में वृद्धि करते हैं। और साथ ही साथ उसका रस चूसकर ये अपने छत्ते में लाते हैं और उसको एकत्र करते हैं, जिससे कि हम जो शहद होती है उसको उस छत्ते से निकालते हैं। तो हम बात करते हैं कि हम छत्ते से शहद कैसे निकालते हैं। तो एक ड्रम होता है, उसमें एक फ्रेम लगा हुआ होता है, एक व्हील लगा हुआ होता है, चक्का जिसे हम बोलते हैं, उसको हम हाथ के द्वारा घुमाते हैं और उस फ्रेम में 3 से 4 जो छत्ते होते हैं, जो हमारा बक्सा होता है उसमें 8 से 9 फ्रेम लगे हुए होते हैं। उसमें से हम एक एक फ्रेम को, जितने हमारे जो ड्रम होता है उसमें जितने फ्रेम का हमारा अंदर जो एक चक्का लगा हुआ होता है, उसमें जितने हम फ्रेम का हमारे पास चक्का हो गया 3 का या 4 का, फिर हम उसमें ऊपर से जो वैक्स की एक लेयर बन जाती है जो हमारा छत्ते में हनी एकत्रित करती है जहां मधुमक्खी, तो उसको हम एक चाकू के द्वारा ऊपर से वो परत हटा देते हैं और उसी को हम ऐसे ही जो उसमें खांचा बना हुआ होता है उस ड्रम में उसमें रख देते हैं। फिर हम उसको पहिए को घुमाते हैं जिससे कि जो शहद होती है हमारे जो ड्रम में नीचे एकत्रित हो जाती है, फिर ड्रम के साइड से हम उस शहद को एकत्र कर लेते हैं। ये हमारी रॉ शहद होती है। इसको हम मार्केट में सीधे बेचना चाहें तो हमें थोड़ा दाम कम मिलेगा, अगर हम इसको थोड़ा प्रोसेस कर लेते हैं, इसमें हम थोड़ा कुछ और ऐड कर देते हैं और इसको हम अगर आप खुद सक्षम हैं तो आप अपनी पैकिंग करके बेच सकते हैं, अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप अपना एक साथ सारा माल किसी कंपनी को बेच सकते हैं, वो उसके बाद प्रोसेस करके इसको बोतलों में भर के आगे बेच देगा। इसका आपको जो आपको मूल्य प्राप्त होता है वो मूल्य समय के अनुसार बैरी करता है। कभी आपका मूल्य इसको 1 केजी के हिसाब से 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, वो आपके मौसम और समय पे निर्धारित करता है। अगर हम पूरे की पालन कर सकते हैं आप पूरे साल में, तो जैसे कि अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड के एरिया में सरसों अच्छी मात्रा में उगाई जाती है। तो मधुमक्खी पालन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पुष्प की आवश्यकता होनी चाहिए। पुष्प अगर भरपूर मात्रा में है तो आपको जो आपने छत्ते लगाए हुए हैं उससे आप पूरे साल भर शहद प्राप्त कर सकते हैं। इसी दिशा में अगर हम बात करें तो जो छत्ते होते हैं, जैसे फसलों की बात करें तो आप रबी के समय में सरसों की खेती करते हैं लोग, तो रबी के समय में आप सरसों के खेत में अपने इन छत्तों को रख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही सरसों का जब सीजन निकल जाता है तो गर्मियों में हमारे यहाँ पलास, क्योंकि हमारे यहाँ जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है यहाँ पर जंगल बहुत हैं, तो जंगल में पलास का बहुत अच्छी मात्रा में फ्लावर मिल जाता है, तो आप उस पलास पर रख सकते हैं। आपको जब ज्यादा गर्मी का सीजन होता है मई जून में, ये 2 महीने आपको बड़ी सावधानी से अपने मधुमक्खियों को बचाना होता है। तो ऐसे में आप क्या करें, कहीं अगर आपका आम का बाग है या कोई ऐसा बाग है जहां छाया रहती हो, तो आप जब ऑफ सीजन इसको बोलते हैं

0: अगर आप इस सीजन में ऐसी समय में अपनी मधुमक्खियों को किसी छायादार वृक्षों को नीचे रखकर उनको समय समय पर वहां आप पानी की व्यवस्था जो बोतल होते हैं उसको काट के आप पानी रख दें और हफ्ते में दो बार उनको जो बॉक्स होते हैं आधा किलो चीनी को रखकर उन बॉक्सों को आप आर्टिफिशियल रूप से उन्हें चीनी दें जिससे कि आप दो महीने उन्हें बचा सके। हाँ तो किसान भाइयों जैसा कि ये चर्चा हुई है तो मैं जो मधुमक्खी पालन का व्यवसाय है इससे आप करके अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं और अपनी खेती को भी खेती में भी अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: हाँ रघु भैया।
2: हाँ भैया
1: देखो अब सुन रहे थे हमारे पंच वार्ता किसानों की आय सृजन पे मधुमक्खी पालन का योगदान वार्ताकार डॉक्टर राम कुमार जो हते।
2: और भैया देखो पंच भैया सुनवा रहे हैं धारावाहिक चिट्ठिया देवर भौजाई की भाग 5 वाचन स्वर है प्रीति पित्रे के और प्रस्तुति है समुदयाल अहरवार जी की।
1: तो अपन सुनते हैं पंच सुनते हैं
2: बिल्कुल।

लाला, बसंती भौजी की दो ही हाथ जोड़ के राम राम पहुंचे। इतने सब ठीक है, हम तो मजे में हैं और सबई जने भी मजे में हैं। और जाई आशा करत है कि तुम सोई उतर शहर में चैन से हुई हो। तुम्हारी चिट्ठिया पड़ी बहुत अच्छी लगी। तुमने मताई बाप के बड़े बुजुर्गन की सेवा करबे की बात बताई तो हमने खुद समझी और सबई का समझाई। भाई अच्छो लगो हमें। असल में होत का है, अपने में अपनेपन की महक एक खुशबू सी आउत है। अपनन के पास रहबे में एक सुकून सो है। अकेले अपनन से दूर रहबो बड़ो करो परत। असल में का है, जो जीवन चक्र है जाने कहां का हो जावे। तुमने सुनी हुई है चाहे पेपर में पड़ी हुए, बिनिया अपने ते के खुदाई नन्ना उनकी बहू रसोई गैस से जर के मर गई। बिलाद धिंगानो भाव, बहू के घरवालन ने खुदाई नन्ना खा दिन में तारे दिखा दे। अब का है, तुम रात उते दूर शहर में सो तुम्हें उते को पतो और हम रात इते गांव में सो हमें गांव की समस्या पतो। अब जो काय कारण से भाव काय बहू जर के मर गई, अब जो काय भाव का पतो राम जाने। अकेले मरी तो गैस ही से जर के, अब काय रसोई गैस काऊ के जराबे के लाने सोई हो। बातों खाना बनाबे के लाने काम में आओ। अब को उन्हें जर के मर जावे तो गैस को का दोष। देखो पक्ष दो ही हो, एक अच्छो एक बुरा। जोन पक्ष पे विचार करन लगो सो बोई बोई दिखान लगत। अच्छो देखो तो सभी अच्छो लगे और बुरा देखो सो भगवान ही मालिक है। अब लाला तुम जाना समझने लगियो कि चिट्ठिया में भौजी काका लिख के पहुंचा देती। बे तो लिखतन में जोन समझ में आई सोई हम लिख दे। अब का करें लाला, अपनो तो स्वभाव ही ऐसो है, कच्चो हृदय है हमारो। काऊ को बुराव ना देख सकत और कर वो तो बहुत दूर की बात है। अच्छे मन से अच्छे हृदय से सब खो देखे यही में सार है। का की बात और का आ गई मन में, विचार से तो देखो सब कछु हो। विचार ही से जो मनुष्य को शरीर ढल जाए और विचार ही से चरित्र को निर्माण होते। हमारे हिसाब से तो विचार ही सब कछु है। मन में अच्छे विचार करो तो का नहीं का। हम तो लाला चिट्ठिया में सब कछु लिख दे। लाला आजकल रसोई गैस को मुफ्त में वितरण हो रहा। प्रधानमंत्री जी की योजना से गरीबन का रसोई गैस के सिलेंडर बांटे जा रहे। रसोई गैस के बड़े फायदे हैं। बहने जो चूल्हे पे लकड़ियां से खाना बनाती सो उनकी आंखें देखो कमजोर हो जाती धुआं से। जाने कौन कौन सी बीमारी आंखन में हो जाती। इसे रसोई गैस के देखो बड़े फायदे हैं। एक तो इमें धुआं नहीं होता, दूसरी जल लकड़ियन से सस्ती परत, और इमें देखो मनमानी लोग कम या बढ़ कर सकत। अपन गैस को चूल्हा कम जलाने हो तो स्विच खा कम कर दो और तेज जलाने हो तो दन्न से तेज कर लो। ना आंखन का नुकसान और ना कोनो डर। रसोई गैस एक प्रकार की ऊर्जा कहावत है। इको

उपयोग बड़े समर के करो चाहिए। पहले माचिस की तीली या लाइटर से बटन खोल के हालव जला ले, नहीं तो देखो काहे कि बटन अगर अपन ने पहले खोलो और तनक देर हो गई हमें माचिस जलाओ उतने, तो एकदम भक्क सी उड़त दूर दूर तक गैस फैल जाए। ऐसे सावधानी बरतो चाहिए, वही सबसे अच्छा तरीका है। कोनो भी रसोई गैस से दुर्घटना होबे के पहला सावधानी रखबो बहुत ही जरूरी है। अब का है कि जब जो चीज फायदे की है तो उखा इस्तेमाल में सावधानी भी बरतने पड़त है। का है कि जब अपन ऊर्जा की बचत कर है तो देखो अपनो तो भलो हुई है, संगे संगे देश को भी भलो हुई है। जोन अपन ऊर्जा बचत करत है वह बचत दूसरे के काम आउत। गैस को उपयोग कायदे से करें, दुर्घटना भी ना होपे है, अच्छा लापरवाही भी खराब हो। गैस खुली है बातन में लगे हैं, इसे का हो कि बर्बादी हो, और बर्बादी रोक बे किलाने सावधानी बरत वो अच्छो कहा हो। जैसे ही गैस को उपयोग हो जावे सिलेंडर के ऊपर जो रेगुलेटर लगो रात ना उको घुमा के बंद कर दो चाहिए, जी में गैस रिसबे की संभावना भी कम या बिल्कुल ना के बराबर हो जाते। अच्छा तो लाला जातो भाई रसोई गैस की बात, अब अपन आउते बिजली की बचत पे। बिजली भी देखो एक प्रकार की ऊर्जा है, घर के पंखा कूलर और जोन भी बिजली से उपकरण चलत हैं, वे सभी बचत के हिसाब से चलाओ चाहिए, दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करने। काहे कि देखो दुरुपयोग करवे से एक तो बिल ज्यादा है और देखो अपनी जोन बिजली है ऊर्जा वा भी कम हो जाए, मीटर भगे सो बिल भी ज्यादा है। इसे बिजली को उपयोग घर गृहस्थी के संगे संगे अन्य कार्यन में भी देखो, जो विभिन्न प्रकार के इंजन हैं अपनी खेती किसानी में ही ले लो, पंप चलत हैं थ्रेसर चलने इनमें सब में काम आउत है। सो खर्च जरूरत के हिसाब से करो फायदेमंद है, हाथ सकोरो सो चैन में रहो। बचत करबे के संगे संगे इको उपयोग भी बड़ी सावधानी से करो चाहिए। बिजली तो करंट ही आए वो नहीं छोड़त काऊ खा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सबके लाने बराबर है, चाहे हल्को होए चाहे बड़ो, धनी होए चाहे निर्धन, करोड़पति होए चाहे सड़क छाप, सबके लाने बराबर है। एक दिन का भाव लाला हम झाड़ू लगा रहे थे घर में, सुक्का पतो कि पंखा की डोरी कहूं से जाने कैसे कट गई हुई है, फिर हम तो अपने काम में मस्त रहते। हे राम जाने कहां से उकट पे हाथ पर गाओ, फिर देखो भड़ाक से ऐसो करंट लगो कि पूरे शरीर में सन्नाटो सो खिंच गओ, दिन में तरैया देखा परी मुए। लाला का बताऊं, धड़ाम से टेबल के ऊपर गिर गई मैं तो। बात तो जा का कि स्याद भली हती सो भगवान ने बचा ली, नहीं तो आज प्राणन की पड़ती। सांची कह रहे लाला ईश्वर ने बहुत ही बचा लो, और जोर जोर से ऐसी धुक धुक की चलन लगी जैसे ही मैं टेबल पे गिरी, और जोर से गिरबे की आवाज तुम्हें भैया ने सुनी, सुबह चिल्ल्यात भागे का भाव बसंती का भाव, और हमें उठाओ और जल्दी जल्दी उनने खटिया पे पारो, तब हमारी जान में जान आई, नहीं तो लाला राम दई आज तो प्राण ही जात जात से लौटी, को जान बूझ के तो बिजली से खेलत नहीं है। बात तो धोखे से कहूं दुर्घटना घटना हो जात तो का करत, लाला अपनी तो ऐसी आए कि भली चलाए। बे तो देखो लाइट सुधार बेवारे खम्बन पे टंगे रात बेचारे सुधारत रात, अब उनकी तो बा रोजी रोटी आए का करें, नौकरी तो करनी है। लाला तुम सुनो, अब हमने काल के अखबार में पढ़ी थी कि एक लैंडमैन खम्बा पे चढ़ के लाइट सुधारत, तो हे भगवान उको कैसो का भाव राम जाने, वो तो धड़ाम से नीचे गिरो और देखता ही देखत बिलाज जने दौरे उए उठा दे के लाने और लेके अस्पताल पहुंचे। बेचारो इत्तो जरगाओ क्योंकि पूरे शरीर में जागन तांगन फपूरा पड़ गए। बेचारो दो चार दिन जियो और फिर मर गो। बेचारे ये बिजली के सुधरैया गदिया पे जान धरे रात, अब उनको 24 घंटा कोई काम है, कभो न कभो चूक हो ही जात। खैर जा तो भली चलाई, बिजली जनमानस के दैनिक उपयोग में जितनी जरूरी है जितनी आवश्यक है उतना ही खतरनाक सोई है।

कहो कि हमें बगल में रात न लाला हल्के दाऊ, जब देखो तब खंबा पे चढ़े रात, हिला उतरा डोरी और चोरी करत रात भी लाइट की, जब गलत बात है ना। देखो बिल्कुल गलत बात है, जौन चीज सुविधा के लाने हैं उको दुरुपयोग के संगे संगे चोरी चपाटी कर वो बहुत ही गलत है, अपराध है। अरे भाई जौन तुम चोरी कर रहे उत्तियों की बचत करो, तो काय को चोरी करने पर है। एक दिना हमने उनसे कही कि दाऊ जौन तुम रोज रोज जी लाइट के तार बांस से हिला उतरात और खंबा पे चढ़त उतरत रात, कहू धोखे बेधोखे घटना दुर्घटना हो गई तो का हुई है। सो तो नक के बोले, बसंती भौजी तुम्हें का करने, नेतागिरी कहूं और दिखाइयो, अपनो काम देखो दूसरे के फटे में टांग ना अड़ा। हमने भी कह दई लाला कि हमें का करने, हम तो कई आती तुम जानो तुम्हारो काम जाने। लाला हमने ठीक कही ना, अपनी चिट्ठिया में लिखियो जरूर काऊ खो उकी गलती सुधारबे को कहबो नेतागिरी का उसका। लाला जा तो भाई बिजली लाइट की बात, अब अपन आउट हैं एक और ऊर्जा के संबंध में चर्चा पे। एक प्रकार और है ऊर्जा को जो है डीजल और पेट्रोल, जी के बिना देखो यात्रा कर वो संभव नहीं है। ये पूरी दुनिया में डीजल पेट्रोल जोन देना ना हुई है सब काम ठप हो जाए। ज्यो ज्यो जनसंख्या बढ़ रही वैसे ही डीजल पेट्रोल की खपत भी बढ़ रही, इको अधाधुंध खपत भी नुकसानदायक है। पहले जमाने में जब जनसंख्या कम होती सो डीजल पेट्रोल की खपत भी कम होती, जैसे ही जनसंख्या बढ़त चली गई वैसे ही ईंधन की खपत भी बढ़ गई। अब ई की तो जा है जो जितनी खपत करे उको खर्चा भी उतना ही हुई है। भाई कई जनन का हमने देखो कि वे बचत तो दूर बेकार में डीजल पेट्रोल बारत रात, अपने ते के भी नहीं है श्याम लाल कक्का, सो उनने लड़का के ब्याह में मिली मोटरसाइकिल, उनको लड़का दिन भर पूरी रफ्तार से गांव की गलियन में फर्राटे से दौड़ा उफिरत बिना मतलब के, एते से होते चक्कर लगा उफिरत मोटरसाइकिल से। हमने उखा दो चार बेरी समझा पे काय खा बेमानत काऊ की बेकार में पेट्रोल बारत फिरत, भाई जरूरत की चीज है सो उको मौका बेमौका कायदे से खर्चा करो चाहिए। हे राम उसे बारत फिर रहे पेट्रोल, भाई असल में का है कहूं जाने हैं जरूरी काम है तो वो तो ठीक है, पे बिना मतलब के डीजल पेट्रोल बारबो तो गलत है। कछु जने तो पगई नहीं धरत बिना गाड़ी के, कछु जने गाड़ी ठाड़ी करके और बातन में लगे रात और गाड़ी स्टार्ट है बिना मतलब को पेट्रोल बारत, गप्पे हाकत तो ही गाड़ी स्टार्ट है। अरे भैया रो समार के चलाओ गाड़ी तो बचत हुई है, नहीं तो का। लाला जाना सोचियो कि भौजी बड़ी चिट्ठिया लिख देती कालो पड़े, सो नहीं जा तो कबो सोचियो ही ना, काय से चार बातन में कोनो समस्या को समाधान विस्तार से थोड़ी लिखो जा सकत। मोटरसाइकिल हो चाहे डीजल पेट्रोल से चलबे वाली मशीनें यंत्र सब बिना ऊर्जा के चलबो मुश्किल है, बचत अच्छी होते है, थोड़ी थोड़ी बचत करे से बिलात हो जात कहो नहीं जात, बूंद बूंद से घट भरे। अब थोड़ी दूर जाने होए तो उमे साधन की का जरूरत वाहन की का जरूरत, थोड़ो बहुत पैदल भी चलो चाहिए, जी में पांव भी फरारे हुई है और ऊर्जा की बचत भी हुई है सो अलग। पहले के जमाने में कहा तो आदमी मेहनत कर ले तो हाथ पांव चलाओ तो पैदल चलत तो ज्यादा से ज्यादा जानवरों से खेती होती सो ऊर्जा की खपत भी कम होती। आज को आदमी तो पूरी तरह से ऊर्जा पे निर्भर हो गया है, खेती पाती के अन्य यंत्र भी डीजल से चलन लगे हैं सो बा खपत भी बढ़ गई। बढ़न दो ई में कछु नहीं है, असल में का है जोन काम हाथन से करने वो आजकल मशीनन से होन लगो, सो यांत्रिक फायदा तो होगा अकेले ऊर्जा की खपत भी बढ़ गई। भाई नियम से संसाधन को उपयोग करो तो खुद फायदा ले हो और अपने देश के लाने भी तुम्हारी थोड़ी सी बचत बड़े काम की हुई है। निर्भरता तो कोनो हद तक ठीक है, अकेले लापरवाही बड़ी दुखदायी हो जाती, चाहे बिजली होए चाहे बार रसोई गैस होवे और फिर चाहे डीजल पेट्रोल होवे, सब आजकल महंगे हो चले। अरे ऐसो न सोचो तो फिर जई सोच लो, बचत कहूं भी करो हमेशा फायदे में ही रहो। ई चिट्ठिया में हमने ऊर्जा बचत के संबंध में चर्चा करी, तुम भी लाला

अपनी चिट्ठिया में कोनो देश से जुड़ी भई बात जरूर लिखियो। असल में होत का है, कोनो भी काम जोन हितकारी हुए उसे सुनबे वाले को भी फायदा होत, और जोन बातें चार जन के कानन में पहुंचती उको असर बहुत व्यापक हो, बड़ी मात्रा में हो, लाभकारी भी हो। एक बात सो है, तुम सोचत हुई हो लाला कि अब पहली बेर भोजी ब्याह में आई थी सो उतई थोरो मोरो बोल लेती, पर देखो जब से तुमने थोड़ी बहुत नेतागिरी समारी बातन की फुलझड़ी सी छूटन लगी। ऐसो नहीं है, गांव वारन की समस्या को निराकरण सोई होन लगो लाला। जो चुनाव आ रहे अगर तुम कहो तो इस चुनाव में हम सरपंची को चुनाव लड़ ले। लाला हंसी हो ना, बता दई हम जीत के बता दे हैं। थोरो लिखो है बहुत समझियो और चिट्ठिया डारबो ना भूलियो। अब का है कि ऊर्जा संरक्षण की हमने बात करी थी सो हमें जी चार लेने बहुत ही अच्छी लगी, सो हमने सोची जे भी कायना चिट्ठिया में लिख दई जाए। तो सुनो, ऊर्जा संरक्षण करो, एकी खपत बचाओ, हित हुई है खर्चा बचे, भग है दूर तनाव, भग है दूर तनाव, सबई खा सोच बनाने, बूंद बूंद से घड़ा भरे सबको समझाने, डीजल पेट्रोल रसोई गैस है ऊर्जा के स्रोत, आदत डारो बचत की जलत रहे जा जोत। तो लाला चिट्ठिया तो हमने लिख दी, लिखियो कि कैसी लगी, और आगे अपनी चिट्ठिया में कछु शहर की समस्या लिखियो, अगर हम कछु उके बारे में तुम्हें लिख सके तो अच्छो रहे। तो आगे चिट्ठिया डारबो न भूलियो, तुम्हारी भौजी बसंती।

0: अब अपन जब ये सुन रहे थे चिठिया देवर भौजाई की को भाग पांच,
1: बिल्कुल
0: वाचन स्वरहतो पीति पत्रिका और प्रस्तुति हति शंभुदयाल अहिरवार की, और आज को धारावाहिक हतो ऊर्जा संरक्षण विषय पे आधारित।
1: बिल्कुल। तो रघु भैया अब लेके चलते हैं पंचन खां आज की सीख कोद, और
0: आज
1: आज
0: की
1: को
0: सीख
1: विषय
0: कोद
1: जोन है तन पे नैया लत्ता पान खाए कलकत्ता।
0: भैया सीधो क्या वो जो है
1: हम्म,
0: के पंच भैया जितनी चादर हो उतनी पांव फैलाए,
1: बिल्कुल
0: और जो नैया के दूसरे खां दिखावे के चक्कर में खूब खर्चा करत रहे
1: हम्म,
0: और बाद में दूसरे से कर्जा मांगत रहे।
1: बिल्कुल। केवी को मतलब जो है कि झूठो दिखावो ना करो चाहिए, और अपनी तनक सी जोन आमदनी है ऊख नजरअंदाज करके अनावश्यक खर्चा यानी के बेमतलब को खर्चा को शौक ना पालू चाहिए, क्या नहीं?
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया। और हम तो पंच भैया से यही कह वो है कि अपनी जरूरतें सीमित रखें और ज्यादा दिखावे में ना पड़े। अपन
1: बिल्कुल
0: देखते हैं शादी ब्याह में कई पंच भैया खूब दिखावा करते हैं,
1: बिल्कुल
0: फालतू फिजूल खर्ची कराते हैं। तो भैया ऐसी फिजूल खर्ची ना करके जितनी जरूरत हो तो खर्चा करें।
1: बिल्कुल। और खर्चा के लाने अगर कही जाए तो कई बार अपन देखते हैं कि फिजूल खर्चा जब हमारे पंच करत है ना, तो ई को खामियाजा उन्हें भुगत नहीं आऊ। कई बार कर्जा लेके उन्हें उखा चुकावे की एक ठिया चिंता हो जात, और कई तरीका के व्यवधान जो है जिंदगी में आ जात, के नहीं?
0: और भैया देखो का होत के जब कर्जा हो जात है तो पंच भैया परेशानी में रहने लगते हैं।
1: बिल्कुल
0: कैसे अगर कर्जा है और कर्जा मांगने वालों आ गओ
1: हम्म,
0: और अपने पास नहीं है पैसा
1: हम्म,
0: तो भैया बहुत बुरा लगा।
1: बिल्कुल। यही से अगर ऐसी कई व्यक्ति हैं तो उनकी उन्हीं के लाने जो कहावत है उन्हीं के लाने जो सीखे कि भैया तन पे नहीं है लगता और पान खाए कलकत्ता। तो
0: और
1: रघु
0: देखो
1: भैया
0: अब हो रही चलवे की वीरा,
1: बिल्कुल
0: तो किस भैया बताता जाए कल के कार्यक्रम।
1: बिल्कुल। तो काल अपन सुने सुनवा है पंचन है रमतुला कार्यक्रम, श्रोताओं के पत्रों व फोन कॉल्स पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम, प्रस्तुति रविंद्र कुमार प्रजापति जी की हुई।
0: और पंच सुने कल भेंटवार्ता, अच्छा बीज अच्छी फसल किसान की सफलता की कुंजी, इस विषय पर डॉक्टर रुचि से बात कर रहे हैं अपने रविंद्र कुमार प्रजापति जी।
1: और संगे आज की सीख को विषय सो हुए तोय नहीं निभाऊ तोरे कुल खो निभाऊ। और संगे देखो रघु भैया अपनो तो अपनो बतका हुए, तब तक के लाने लेते हैं पंचन से अनुमति।

अभी ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

दोस्तों, अभी गुलामी फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। शब्द रचना थी गुलजार की और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म स्वयंवर से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, शब्द रचना है गुलजार की और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से मैं संजय खरे आप सबके साथ जुड़ा हुआ हूं। कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत और ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

अभी आप सुन रहे थे स्वयंवर फिल्म का गीत, जिसे आवाज दी थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। शब्द रचना थी गुलजार की, संगीत दिया था राजेश रोशन ने। आकाशवाणी छतरपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, और मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं आपका दोस्त संजय खरे। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है, मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बसेरा से। आवाज है लता मंगेशकर की, शब्द रचना गुलजार की, और संगीत है RD बर्मन का।

आपने बसेरा फिल्म का गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार के लिखे गीत को संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। और लीजिए अब हम आपको सुनवा रहे हैं भूपेंद्र की आवाज में यह गीत।

0: ये गीत आपने सुना, शब्द रचना थी गुलजार की, संगीत दिया था खयाम ने, आवाज थी भूपिंदर की और फिल्म का नाम था थोड़ी सी बेवफाई। और अब हम आपको सुनवाते हैं खट्टा मीठा फिल्म का ये गीत।
1: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे तुम।

अभी आपने खट्टा मीठा फिल्म का गीत सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत लिखा था गुलजार ने और संगीत दिया था राजेश रोशन ने।

0: भूपिंदर की आवाज में आपने सुना मौसम फिल्म का गीत, जिसे लिखा था गुलजार ने और संगीत दिया था मदन मोहन ने।
1: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
2: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
1: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV/AIDS जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
2: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
1: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: और आइए अब सुनते हैं घरौंदा फिल्म का गीत।

0: भूपिंदर की आवाज में घरौंदा फिल्म का आपने गीत सुना। शब्द रचना थी गुलजार की, संगीत दिया था जयदेव ने।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

अभी आपने किशोर कुमार की आवाज में सुना मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का गीत। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने। और लीजिए फिल्म संगीत के आखिर में हम आपको सुनवाते हैं हम सब उस्ताद हैं फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा है असद भोपाली ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

0: ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग-अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गांव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉ जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: विद प्राइम मिनिस्टर्स अराइवल इन इंडोनेशिया,
2: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदे ईदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि

0: जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉ मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
2: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। इस माह के रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ऐसे शहर की कहानी जो न केवल लोहे को पिघलाकर राष्ट्र की रीढ़ बनाता है, बल्कि अपने आसपास के पर्यावरण और लोकगीतों की धुन पर मुस्कुराता है। इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। आलेख है शाहिद अनवर का और इसे प्रस्तुत किया है राजीव रंजन तिवारी ने।

0: जोहार हिंदुस्तान, आज आकाशवाणी के इस राष्ट्रीय क्षितिज पर हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे अनूठे सफर पर जहां पिघलते फौलाद की धमनियों में धड़कता है मिनी इंडिया। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास राष्ट्र के स्वाभिमान का पहला तकनीकी और औद्योगिक घोषणा पत्र है। हर शहर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ शहर इतिहास में दर्ज होते हैं, कुछ भूगोल में और कुछ लोगों के दिलों में। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो कभी जंगल था, जो कभी काली माटी नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां मिलकर धरती को हरियाली का आशीर्वाद देती थी। फिर एक सपना आया, एक दूरदर्शी आँखों में पलता हुआ सपना, और उस सपने ने जंगलों के बीच बसाया एक ऐसा नगर जो आज उद्योग का प्रतीक है, खेलों की राजधानी है, संस्कृतियों का संगम है और आधुनिक भारत के आत्मविश्वास की पहचान है। ये है जमशेदपुर टाटा नगर, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर। वर्ष 1907, भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन एक भारतीय उद्योगपति ने स्वतंत्र भारत का सपना देख लिया था। वो सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। उस सपने का नाम था जमशेद जी नसरवान जी टाटा। उन्होंने कहा था, यदि भारत को मजबूत बनाना है तो उद्योग, शिक्षा और विज्ञान को साथ लेकर चलना होगा। और फिर काली माटी की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे नगर का जो केवल कारखानों का समूह नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक दृष्टि थी, एक भविष्य था। आज वही नगर विश्व में जमशेदपुर और टाटा नगर दोनों नामों से जाना जाता है। ये शहर केवल बसा नहीं है, इसे सपनों ने गढ़ा है, दूर दृष्टि ने सवारा है और लाखों हाथों ने अपनी श्रम की ऊष्मा से जीवन दिया है। किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी ऊंचे इमारतें नहीं बनाती, बल्कि वो रिश्ता बनाता है जो शहर और उसके लोगों के बीच होता है। यही रिश्ता जमशेदपुर को दुनिया के दूसरे औद्योगिक नगरों से अलग बनाता है। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉरपोरेट सर्विसेज डीबी सुंदर रामम बताते हैं कि जमशेदपुर केवल कंपनी टाउन नहीं है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व, सुनियोजित नगरीय विकास और नागरिक साझेदारी का एक वैश्विक मॉडल है।
1: फाउंडर का जो सपना है उसको साकार करने में जितने भी जनरेशन है, जितने भी चेयरमैन आए, जितने भी एमडीज आए हैं और जितने भी लोग हैं साथ में, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, यूनियंस, एवरीवन, सबका अलाइनमेंट एक ही है कि जमशेदपुर का नाम रोशन होना चाहिए। रिसेंटली वी वर डिक्लेयर्ड थर्ड बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी, तो कुछ लोग खुश है, कुछ लोग पूछते हैं कि एक नंबर में क्यों नहीं आ सकता। वो दैट कॉम्पिटेटिव स्पिरिट भी है, यही हम लोगों को आगे लेके चलता है एंड टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर फैसिलिटीज टू द सिटी।
0: अमूमन बड़े औद्योगिक शहरों को प्रदूषण और कंक्रीट के जंगलों से जोड़कर देखा जाता, लेकिन जमशेदपुर में स्टील प्लांट के ठीक बगल में जुबली पार्क और सघन ग्रीन कवर यानी हरियाली है। उद्योग और पर्यावरण के इस बेहतरीन संतुलन और सस्टेनेबिलिटी को लेकर टाटा स्टील का विजन साफ है, विशेषकर जब हम नेट जीरो कार्बन के राष्ट्रीय लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। डीबी सुंदर रामम रेखांकित करते हैं,
1: आज के दिन जमशेदपुर डेफिनेटली वन ऑफ द बेंचमार्क प्लांट्स विद 2.2 टन ऑफ कार्बन इमिशन पर टन ऑफ क्रूड स्टील, बट इसको और हम कम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है सिटीजन्स, किसी का भी घर में, जिसका बंगलो है, घर है, कुछ भी है, अब देखेगा पेड़ पौधा जरूर रहता है, एवरी ईयर गार्डन कॉम्पिटिशन होता है एंड ऑल्सो लोगों में हम लोग लाते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को यू हैव टू लव नेचर। आज के दिन आप हमसे पूछेगा तो अराउंड 28% जो है ग्रीन कवर किए हैं। हमारा टारगेट है कि कैसे हम 33-35% करें। लास्ट 3-4 साल में बहुत सारा ओपन जिम आए हैं, पार्क्स आए हैं, जहां इस सबको हम लोग बढ़ावा देते हैं तो टीएमएच में लोड कम होता है। बाकी जितना हमारा एनवायरमेंट पैरामीटर्स है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। वी आर स्पेंडिंग 1,000-1,200 crores एवरी ईयर टू ब्रिंग इट टू लेवल वेयर पीपल इवन एट 500 meters। अपना भी ख्याल रखना है और शहर का भी ख्याल रखना है, तो इसलिए हम लोग हर कदम उठाएंगे जिससे लोगों को ये नहीं असुविधा हो कि प्रदूषण यहाँ बढ़ा।
0: जमशेदपुर के बारे में एक बेहद मशहूर पंक्ति कही जाती है, यहाँ टाटा स्टील शहर की देखभाल नहीं करती, बल्कि शहर टाटा स्टील की देखभाल करता है। कंपनी और यहाँ के आम नागरिकों के बीच इस बेहद भावुक, आत्मीय और 100 साल से भी ज्यादा पुराने अनूठे रिश्ते की जादुई बुनियाद क्या है, सुंदर रामम कहते हैं।
1: आज के जनरेशन के एम्प्लॉयज से पूछेगा वो जरूर बोलेंगे हम

0: थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, कुछ एम्प्लॉयज मिलेंगे जो बोलेगा फिफ्थ जनरेशन है। नॉट ओनली एम्प्लॉयज, जितना शॉप्स है यहाँ पे, जितना एस्टेब्लिशमेंट्स है, सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जितना भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स है, तो वो उनके अंदर में भी लॉयल्टी है और हमारे अंदर में भी लॉयल्टी है कि जब हमको जरूरत है उस समय लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे। उस समय उनको भी जैसे कंपनी को तकलीफ हुआ, उनको भी तकलीफ हुआ, बट फिर भी वो साथ दिए कंपनी का। इसलिए अभी ये पूरा टाटा फैमिली है। और ये भी बात हो रहा है कि हम लोग कूड़ा से कैसे बिजली को उत्पन्न कर सकेंगे या चारकोल का कैसे उत्पन्न कर सकेंगे। बहुत अच्छा अच्छा आइडिया सर है, जितना भी आइडिया है वो शहर को और कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए।
1: ईंट, पत्थर और लोहे से केवल इमारतें बनती हैं, लेकिन विश्वास, संवेदना और साझेदारी से एक शहर जन्म लेता है। सड़कों के किनारे फैले वृक्ष, साफ सुथरे उद्यान, झीलें, खुले मैदान और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर बढ़ता विकास। यहाँ उद्योग और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहभागी हैं, जैसे इस्पात और हरियाली ने यहाँ एक दूसरे का हाथ थाम लिया हो। यहाँ हर सड़क एक मंजिल की ओर जाती है और हर मंजिल किसी नए सपने का आरंभ बन जाती है। अगर उद्योग किसी राष्ट्र की शक्ति है तो विज्ञान उसकी बुद्धि है। जमशेदपुर की धरती पर विज्ञान ने भी अनेक स्वर्णिम अध्याय लिखे हैं। यहाँ सन 1950 में स्थापित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला यानी CSIR NML ने देश की धातु कर्म में आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी। आज जब दुनिया सतत विकास और ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, तब यहाँ के वैज्ञानिक भविष्य के भारत का निर्माण कर रहे हैं। विज्ञान में युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला NML के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड मेटल्स के प्रमुख सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिलाष उजागर करते हैं।
2: काफी सारे इंडस्ट्रीज ने फायदा उठाया, अभी भी उठा रही है इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल में काम करती है, अपने फेरोलॉयज लेके जाती है, स्पेशलिटी फेरोलॉयज जो यूज होता है डिफेंस में, न्यूक्लियर सेक्टर में, ऑल दैट। ऑब्जेक्टिव ये रहा कि जो कंपनी कोल की माइनिंग, आयरन ओर की माइनिंग या डिफरेंट ओर्स की माइनिंग करती है, उनका ग्रेड अगर लो रहता है तो उसको एक ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रेड पे लेकर किया जाए जहां से लेकर एक कंपनी अपना मेटल एक्सट्रैक्शन खुद से कर लेती है। कोई भी रेल एक्सीडेंट हुआ है, अगले ही महीने वहां का वो रेल पटरी चक्का सब कुछ NML आ जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है कि वो स्टील क्रैक क्यों हुआ, टूट क्यों गया। ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट है या ऑयल रिफाइनरी है, इनमें जो क्रैक्स आती है कभी कुछ, उनका इन्वेस्टिगेशन यहां से होता है ताकि आगे जाकर के ये जो समस्याएं होने वाली है इनको रोका जा सके।
1: भारतीय रेलवे ट्रैकों की मजबूती से लेकर डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र के लिए विशेष अलॉय विकसित करने तक देश के औद्योगिक विज्ञान को आत्मनिर्भर बनाने में जमशेदपुर की इस प्रयोगशाला ने महत्वपूर्ण तकनीकी क्रांतियां की हैं।
2: जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी बन के आए हैं फॉर स्टार्टअप्स, फॉर यंग पीपल हु आर वांट टू एंटर इनटू केमिस्ट्री फील्ड, मैकेनिकल मेटलर्जी, ऑल दिस काइंड ऑफ फील्ड्स।
1: एक भटनागर पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर अभिलाष का दृष्टिकोण हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहा है। आज के दौर में NML इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और औद्योगिक कचरे से लिथियम, कोबाल्ट और सोने जैसे कीमती धातुओं को निकालने की स्वदेशी तकनीक पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण यानी सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी वैश्विक परिदृश्य में इस शोध का काफी महत्व है। डॉक्टर अभिलाष प्रकाश डालते हैं।
2: हमारा उद्देश्य ये है, कचरे में जो बैटरी है उससे लेके जो मेटल आप हाइपर बनाते हैं उससे नई बैटरी अगर बन जाएगी, बैटरी की कॉस्ट 1/8 कम हो जाएगी। कल आपको जो ईवी का कॉस्ट 15 लाख 16 लाख की कार है, शायद कुछ पैसे कम हो जाए उसमें, एंड इंडिया बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। सो दैट इज वॉट वी फील दैट द ग्रीन केमिस्ट्री वॉट वर्क इन मेटलर्जी इज वेरी वेल सूटिंग फॉर ई वेस्ट रिसाइकलिंग।
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्टील और नैनो मटेरियल्स जैसे भविष्य की तकनीक में जमशेदपुर की ये प्रयोगशाला भारत को वैश्विक स्तर पर एक लीडर के रूप में स्थापित कर रही है। विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जन्म लेने वाले विचार जब उद्योगों में उतरते हैं तो राष्ट्र की प्रगति का नया अध्याय लिखते हैं, और यही अध्याय जमशेदपुर दशकों से लिख रहा है। लेकिन विकास केवल कारखानों और प्रयोगशालाओं से नहीं होता, विकास के लिए चाहिए शिक्षित मस्तिष्क, जिज्ञासु युवा और नवाचार का साहस। जमशेदपुर का शैक्षणिक इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। कभी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज राष्ट्रीय महत्व का संस्थान NIT जमशेदपुर। इसके निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर बताते हैं, RIT से NIT तक का ये सफर केवल नाम परिवर्तन नहीं है बल्कि शोध, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की सतत यात्रा है।
3: NIT जमशेदपुर 31 NIT से देश का एक NIT है। क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत ही उपयोगिता है सोलर सेल।

0: तो अभी ये सोलर से रिसाइकलिंग इज ए प्रोजेक्ट, रिसेंटली वी गॉट ए वेरी बिग प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1.5 करोड़। जो जो हम लोग का उधर में सिल्वर रहता है, सिलिकन रहता है, कॉपर रहता है, उसको कैसे मैं डिसइंटीग्रेट करना चाहता है और फिर हम लोग को नया नया में फोटोवोल्टिक सेल में हम लोग फिर उपलब्ध कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है।
1: 1960 में RIT के रूप में शुरू हुई इस संस्था का इतिहास जमशेदपुर के औद्योगिक विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जैसी देश के सबसे बड़ी औद्योगिक इकाइयों के ठीक बीच में स्थित होना यहाँ के छात्रों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और देश के औद्योगिक विज्ञान को मजबूती देने में वरदान साबित हुआ है, प्रोफेसर सूत्रधर कहते हैं।
0: इवन लास्ट ईयर में मैं 4 बंदा को अमेरिका भेजे थे फॉर कॉम्पिटिशन में, गया इधर से, एक लड़की था, 3 लड़का था, वो लोग को हम लोग भेजे थे। तो इधर में देश में बहुत जगह में ये लोग EV, रोबोटिक्स, अभी AI का जो आ गया, IIoT, इसमें बहुत काम चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। हम लोग इसमें इनोवेशन के रूप में हम लोग इसको सपोर्ट भी करता है।
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए NIT जमशेदपुर भविष्य के उन तकनीकी लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल वैश्विक स्तर पर भारत का परचम लहराएंगे बल्कि देश की जमीनी समस्याओं का भी तकनीकी समाधान निकालेंगे, प्रोफेसर सूत्रधर रूबरू कराते हैं।
0: प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है, सपना है, इस टाइप ऑफ स्टूडेंट को पहले से ही तैयार करना बहुत जरूरी है। वो लोग को बोलना है जे भाई ये इट्स ए नॉट ए वन डे कंपटीशन, यू हैव टू टेक इट्स ए लॉन्ग टर्म, यू डोंट रन बिहाइंड द पैकेज। आप ज्ञान अर्जन करो और होलिस्टिक पर्सन बनने के लिए कोशिश करो, वही हम लोग का सबसे महत्व उद्देश्य है।
1: विज्ञान के इस तकनीकी विकास को जब तक मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का साथ न मिले वो अधूरा है। जमशेदपुर का प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान XLRI दशकों से देश को ह्यूमन फेस वाला नेतृत्व दे रहा है। इसके निदेशक फादर सेबेस्टियन जॉर्ज SJ कहते हैं, भविष्य उन्हीं का होगा जो ज्ञान के साथ संवेदना भी रखते हों।
2: मैनेजमेंट विद ह्यूमन फेस केवल एक विचार या नारा नहीं है बल्कि XLRI की एजुकेशन फिलॉसफी का मूल आधार है। हमारा मानना है कि मैनेजमेंट एजुकेशन का उद्देश्य केवल कुशल मैनेजर तैयार करना नहीं बल्कि ऐसा उत्तरदायी और वैल्यू बेस्ड लीडर्स विकसित करना है सो समाज के लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। हमारे करिकुलम में एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक पॉलिसी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसे विषयों को विशेष महत्व दिया जाता है। क्लासरूम के बाहर भी स्टूडेंट्स को रूरल कम्युनिटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और डेवलपमेंट ओरिएंटेड इनिशिएटिव से जुड़ने का अवसर मिलते हैं। ये अनुभव उनमें एम्पति, सोशल अवेयरनेस को समझने की क्षमता विकसित करती है।
1: विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए XLRI भविष्य के कॉरपोरेट लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल आर्थिक प्रगति के संवाहक बने बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के प्रति भी जवाबदेह हों। कुछ शहर वर्तमान में जीते हैं, कुछ अतीत में, लेकिन जमशेदपुर उन विरले नगरों में है जो इतिहास को साथ लेकर भविष्य की ओर चलता है। आदिवासी लोक धुनों से लेकर वैश्विक उद्योगों तक यहाँ विविधता किसी उत्सव की तरह प्रतिदिन सांस लेती है। जमशेदपुर की आत्मा केवल उद्योग नहीं, यहाँ की मिट्टी में बसती है आदिवासी संस्कृति। यहाँ के पर्व, यहाँ के गीत, यहाँ की लोक कलाएं और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान इस भूमि की पहचान है। पद्मश्री चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को जोड़कर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। झारखंड की धरती को हरा भरा बनाने वाली लेडी टार्जन के रूप में मशहूर पद्मश्री चामी मुर्मू ने लाखों पेड़ लगाकर बंजर धरती को हरी भरी चादर ओढ़ा दी है। आदिवासी समाज में तो जल, जंगल और जमीन को भगवान की तरह पूजा जाता है। आज के इस आधुनिक दौर में जब जंगल सिमट रहे हैं, हमारे आदिवासी विरासत और पर्यावरण के इस गहरे रिश्ते को चामी मुर्मू इस तरह देखती हैं।
3: किसान भी समझने लगा कि हाँ, हम अगर पौधा लगाएंगे तो मेरा भी फायदा होगा। उसके बाद यहाँ जितना भी बंजर भूमि था सब ये में लगाए, हम लोग 17 लाख तक पौधा लगाए। हम लोग कम लिए और अपना क्षेत्र में काम किया, उस मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो उसमें और जिम्मेवारी लगा और जोश लगा, तो और लगाने का मन किया। और उसके बाद

0: हम लोग महिला लोग भी जागरूक हो गए, तो उसके बाद हम लोग एसएचजी ग्रुप का काम किया।
1: जामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाया बल्कि लकड़ी माफियाओं और अवैध शिकार के खिलाफ खड़े होने का हौसला भी दिया। इस जमीनी बदलाव और महिलाओं के इस संघर्ष की यात्रा को वो बयां करती हैं।
0: बहुत कोशिश किए, बहुत संघर्ष किए, ये करके बाद में हम लोग बंजर भूमि में लगाना शुरू किए। फल दे नहीं दे, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपना परिवार जैसे ही मानते हैं और उसी को ये करके हम अभी तक जिए हैं पौधा के साथ, और आगे भी करते रहेंगे, लगाते रहेंगे और समाज में सेवा करते रहेंगे।
1: एक सुदूर गांव से राष्ट्रपति भवन तक पद्मश्री सम्मान पाने का जामी मुर्मू का ये सफर देश की करोड़ों ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। अपनी आत्मीय आवाज में वो कहती हैं,
0: आज पद्मश्री में पहुंच गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद दूंगी और आगे जो है वो तो हम पहले से भी बोल रहे करते ही रहूंगी।
1: प्रकृति के इसी जुड़ाव से जब दीवारों पर रंग बोलते हैं तो वहाँ जन्म लेती है सोहराय कला। सोहराय के रंगों में धरती की मुस्कान है और उन रंगों में छिपी है पीढ़ियों की स्मृति। इस कला को विश्व पटल तक पहुँचाने का प्रयास कर रही है स्थानीय जनजातीय कलाकार हीरा मांझी। वो कहती हैं, संस्कृति को बचाना केवल अतीत को बचाना नहीं बल्कि भविष्य को पहचान देना है।
2: सोहराय पेंटिंग प्रकृति से लिया जाता है, उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। हम इंसानों का अस्तित्व पशु पक्षी प्रकृति के बिना अधूरे हैं। आज के जो पीढ़ी है कंप्यूटर मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं। उनको हम बता रहे हैं जो असली दौलत जल जंगल और जमीन है। युवाओं को यही सिखाते हैं, कैनवस और दीवार में बना के समझाते हैं। अपनी भाषा को बचाए रखना है, उनको कहानी लिखना नाटक लिखना सिखा रहे हैं संथाली में। युवाओं को समर्थन मिल रहा है। ये जो लड़ाई है बहुत कठिन है, लेकिन समाज का अगर साथ मिलता है तो आसान हो जाता है।
1: हीरा मांझी की बातें हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाती हैं। उनकी आंखों में सपना है। वो कहती हैं, सोहराय पेंटिंग हमारी परंपरा है, प्रकृति के प्रति हमारा धन्यवाद है।
2: एक और दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, दूसरी तरफ शाम को नगाड़ा मादर की थाप गुजती है। यही सही मानव में मिनी इंडिया है, जहां हर राज्य के लोग रहते हैं। बहुरंगी पहचान को जिंदा रखने में हमारी जनजातियां कलाकारों विचारकों और साहित्यकारों के बहुत बड़ी भूमिका है। हम अपनी कला साहित्य के जरिए इस आधुनिक शहर को उसकी आत्मा से जुड़े रखते हैं। हम याद दिलाते हैं तरक्की की ऊंचाई को छूते हुए जमीन को नहीं भूलना।
1: पर्वतों की चोटियां हो या जीवन की चुनौतियां, विजय उन्हीं को मिलती है जो कदम बढ़ाने का साहस रखते हैं। अगर जमशेदपुर उद्योग का शहर है तो ये खेलों का तीर्थ है। तरक्की और संस्कृति के साथ साथ जमशेदपुर देश की खेल राजधानी भी है। ये वो भूमि है जो युवाओं में साहस का संचार करती है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर विजय पताका फहराने वाली और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के माध्यम से देश को साहसी बनाने वाली पद्म भूषण बचेंद्री पाल की बातें रोमांच से भर देती हैं।
3: आज कोई मुझे पूछे कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए, जो मुझे लगातार पूछते रहते थे गांव में हर जगह, पढ़े लिखे लोग भी, लेकिन आज हमारे पास जवाब है कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए। पहाड़ कौन चढ़ते हैं? जो बहुत साहसिक होते हैं, जो बहुत ब्रेव होते हैं, जिनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, जो अपने लिए बहुत बड़े जोखिम भरा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, क्योंकि जिंदगी में हर जगह ही चुनौती है।
1: रोमांच और खेल इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, जिससे वे जीवन के हर ऊंचे शिखर को फतह कर सकें।
3: मुझे बहुत खुशी होता जब हमारे प्रोग्राम में लड़के लोग आते हैं, यूथ लोग आते हैं, जीटी लोग आते हैं, एमटी आते हैं, रूरल यूथ आते हैं और डरे हुए रहते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, उनमें ब्रेवरी नहीं होता है, लेकिन जब वापस जाते हैं पूरा बदल के जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ लाइफ जिंदगी सार्थक है, और बार बार यही सोचती हूँ कि एक लाइफ एक जिंदगी बहुत छोटा है, बहुत कुछ और भी करने के लिए।
1: साहस की इसी धरती ने विश्व विजेता धनुर्धर पैदा किए हैं, जिन्होंने ओलंपिक तक का सफर तय किया। इस यात्रा में टाटा आर्चरी अकादमी का योगदान अविस्मरणीय है। इसके मुख्य कोच और मेंटर के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो कहती हैं कि सफल खिलाड़ी केवल प्रतिभा से नहीं अनुशासन और निरंतर अभ्यास से बनता है।
4: दीपिका जैसे कैडेट एंड जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है, उसके बाद हमारी एकेडमी से कोमोलिका बनी, हमारी एकेडमी से कैडेट वर्ल्ड चैंपियन भी बनी और जूनियर भी बनी है, तो ये बहुत बड़ी बात है।

0: यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं। दीपिका एक बहुत बड़ा नाम है हमारे एकेडमी का। दीपिका जब कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बनी और पीछे खड़े थे, बहुत अपने आप को प्राउड फील हुआ। मतलब हम तो एक ये मानते हैं कि अब इंडियन आर्चरी को एक जगह लेके गया है टाटा आर्चरी एकेडमी।
1: धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा एक तीर केवल लक्ष्य नहीं भेदता, वो सपनों को भी नई उड़ान देता है। फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, पर्वतारोहण, हर खेल में जमशेदपुर ने अपनी पहचान बनाई है। तीरंदाजी के साथ साथ फुटबॉल के क्षेत्र में भी जमशेदपुर को भारतीय फुटबॉल की नर्सरी कहा जाता है। टाटा स्टील के खेल प्रमुख और जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के CEO मुकुल चौधरी कहते हैं,
2: इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी अकेडमी या किसी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन ने किया होगा। करीब करीब 300 बच्चे TFA से ग्रेजुएट हुए, उससे 150 बच्चे नेशनल खेल चुके हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, उसमें से कुछ 19 अलग अलग एज ग्रुप में कैप्टन हो चुके हैं। बट ये एक एकेडमी करती थी और इनका बेसिकली अगर देखा जाए तो 20 बच्चों को हमेशा लेते थे और क्वालिटी पे हमेशा ध्यान दिया जाता, क्वांटिटी पे नहीं था। कल्याण चौबे है, रणिडी सिंह है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है आज की तारीख में भी जो हर टीम में तीन चार कहीं कहीं मिल जाते हैं। आई थिंक इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी इंस्टीट्यूशन का होगा। एंड इंडियन फुटबॉल में इसको काफी अच्छी तरह सम्मानित भी किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक स्पेशल रिकॉग्निशन दिया हमको, टाटा फुटबॉल एकेडमी को, फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन। और ये सब कब हुआ? 1987 में, जब 83 में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था। तो हम इसका बड़ा सा श्रेय हमारे लीडरशिप को देते हैं जिन्होंने इसका बारे में तब सोचा जब क्रिकेट अपने पीक पे था, वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और सारा कॉन्सेंट्रेशन क्रिकेट की तरफ था। तभी एक रेसिडेंशियल स्कूल पहली बार और वो भी जमशेदपुर में शुरू की गई और पूरे हिंदुस्तान से सबसे बेहतरीन फुटबॉलर्स को यहाँ लाके उनको ट्रेन किया गया। तो आई थिंक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है TFA का।
1: आज वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की तकनीक और गति बहुत बदल चुकी है। 2026 के इस आधुनिक दौर में TFA अपने युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस तरह आधुनिक तकनीकों, विदेशी एक्सपोजर और वैज्ञानिक ट्रेनिंग से लैस कर रहा है, मुकुल चौधरी बताते हैं।
2: शुरुआत से ही सबसे बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है। काफी साल पहले TFA शायद पहला इंस्टीट्यूशन जहां वीडियो एनालिसिस शुरू हो गया एकेडमी लेवल पे। उसके बाद हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है, ये सारी चीजें नई हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं कि जिससे बेसिकली बच्चों को इंजरी ना हो। नॉर्मल बच्चों से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच करके मेहनत करनी पड़ती है ग्राउंड पे और ये फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट है तो इंजरी काफी कॉमन है। हमारी कोशिश यही रहती है कि इंजरी ना हो और अगर हो तो उनको जल्दी से जल्दी फिट करके ग्राउंड पे कैसे लेके आए। तो ये इसके लिए हमारा एक स्पोर्ट्स साइंस टीम है जो कि खासकर जमशेदपुर में, काफी कम है हिंदुस्तान में, उसमें से एक जमशेदपुर में सेंटर है। उसके अलावा फॉरेन एक्सपोजर, हर बैच जो हमारे आता है 4 साल के लिए हमारे साथ रहता है तो एक साल उनको बेसिकली एक महीने के लिए हम यूजुअली फॉरेन एक्सपोजर देते हैं ताकि उनको बाहर किस लेवल का फुटबॉलर, ज्यादातर ये यूरोप में होता है क्योंकि यूरोपियन फुटबॉल अपने आप में बहुत ही इवॉल्व है और हम चाहते हैं कि उसी को देखे और वो अपने एक सेल्फ बिलीफ भी बनाए कि आपको भी इस स्तर पे जाके खेलना है। ISL में भी काफी प्लेयर है, इनफैक्ट टीम में ओवरऑल 8 प्लेयर है जो हमारे यूथ सिस्टम से निकले हैं। तो कोशिश यही है कि हम यूथ को प्रमोट करें, यूथ को एनकरेज करें और उनको बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट दें।
1: हॉकी भारत के दिल में बसती है और जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी अकादमी ने जमीनी स्तर पर काम करके इस खेल को नई ऊर्जा दी है। विशेषकर झारखंड के सुदूर और ग्रामीण इलाकों से आदिवासी प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने में अकादमी की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी के बारे में बता रहे हैं नवल टाटा हॉकी अकादमी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुरमीत सिंह राव।
3: हमारे दो बच्चे एट प्रेजेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पोडियम फिनिश कर चुके हैं, वो भी गोल्ड एशिया कप, और उसी के साथ में एक बच्चा हमारा हाईएस्ट स्कोरर का परफॉर्मेंस उठाता है तो ये एक हमारा एक एग्जाम्पल सेट होता है। आशीष तानीपुरति जिसने हैट्रिक भी मारी है सेमीफाइनल्स और फाइनल्स दोनों मैचेस में और उसी के साथ में उसने हाईएस्ट स्कोरर का भी खिताब उठाया है तो ये एक एग्जाम्पल सेट करता है हमारी एकेडमी किस लेवल पे काम कर रही है।
1: योजनाएं भारतीय हॉकी के सुनहरे दौर को वापस लाने की है।
3: हमारे पास एट प्रेजेंट कुछ 54 ग्रासरूट सेंटर्स हैं टोटल सीनी और टाटा स्टील फाउंडेशन के मिला के जिसमें अराउंड 4000 बच्चे ट्रेन होते हैं। ये एज ग्रुप है 8 साल से 12 साल के बीच में। इसी से बच्चे कुछ सिलेक्ट होके आते हैं रीजनल डेवलपमेंट सेंटर्स जहां पे उनको थोड़ा अच्छा ट्रेनिंग मिलता है, अच्छी किट मिलती है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और टर्फ का एक्सपीरियंस मिलता है। इस RDC लेवल से हम शॉर्टलिस्ट करके नवल टाटा हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे लेकर आते हैं। ये एक्चुअली पूरा रोड मैप है हमारा।
1: मैदान में दौड़ते खिलाड़ी सिर्फ पदक नहीं जीतते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के दीप जलाते हैं। एक शहर को समझने के लिए उसके लोगों की स्मृतियों में उतरना पड़ता है। प्रगति, विज्ञान, खेल, संस्कृति और कला के इन तमाम रंगों को अपने भीतर समेटे ये शहर पिछले 40-50 वर्षों में कैसे बदला, इसकी सबसे खूबसूरत और प्रामाणिक

0: लग हमें मिलती है टाटा मोटर्स से सेवानिवृत्त और विश्व के 40 देशों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके वयोवृद्ध प्रबुद्ध नागरिक प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रेश्वर खां की बातों से, जो इस शहर को मिनी भारत का सबसे सुंदर विजन मानते हैं।
1: जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आँखों के सामने एक बिल्कुल अलग जमशेदपुर तैर जाता है। वह सादगी का दौर था जब सायरन से पूरा शहर अपनी घड़ियाँ मिलाता था, सड़कों पर साइकिलों का तांता होता था। शाम को साक्षी या विष्णुपुर के बाजारों में थके हारे कर्मचारी एक कप चाय पर दुनिया जहान की बातें करते थे। जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी थी लेकिन दिलों में आत्मीयता बहुत गहरी थी। शहर का रूप रंग बदला है लेकिन इसकी आत्मीयता का जो कोर है, जो अंतःस्थल है, वो आज भी वैसा ही महक रहा है, चमक रहा है और आगे बढ़ रहा है। जमशेदपुर में सुबह टाई लगाकर दफ्तर जाने वाला एक एग्जीक्यूटिव शाम को सरहुल या टूसू के अखाड़े में मानदर की थाप पर थिरकता हुआ मिल जाएगा। यहाँ का कॉरपोरेट कल्चर लोक संस्कृति को दबाता नहीं बल्कि उसे स्पॉन्सर करता है, उसे आगे बढ़ाता है। अब टाटा मोटर या टाटा स्टील अपने परिसरों में जनजातीय कला भाषाओं के लिए बड़े बड़े उत्सव करते हैं, जो एक आम नागरिक को लगता है कि उसकी पहचान सुरक्षित है। दुर्गा पूजा के पंडालों की भव्यता और सोहराय की पेंटिंग का सौंदर्य यहाँ एक ही कैनवास पर बिना किसी टकराव के सह अस्तित्व में रहते हैं। हमारी जड़ें मजबूत है, इसलिए चकाचौंध की इस दुनिया में इस आंधी ने कभी भी हमें हिलाया नहीं। जमशेदपुर कारीगरी का, दिमागी काम का और हृदय के आंतरिक भावनाओं का अनोखा त्रिवेणी और संगम है।
0: काली माटी से जमशेदपुर और टाटा नगर तक, जंगलों से विज्ञान तक, इस बात से इंसानियत तक, ये केवल एक शहर की कहानी नहीं, ये आधुनिक भारत की कहानी है। पिघलते लोहे से लिखी जिसने आत्मनिर्भरता की नई इबारत, जहाँ की माटी में बसता है एक मुस्कुराता हुआ लघु भारत, प्रगति की रफ्तार में भी जिसने अपनी जड़ों को संभाला है, वो जमशेदपुर आज पूरे राष्ट्र की आँखों का उजाला है। जमशेदपुर जहाँ कारखानों की चिमनियों के साथ सपने भी उड़ते हैं, जहाँ प्रयोगशालाओं में भविष्य आकार लेता है, जहाँ खेल मैदान में आत्मविश्वास जन्म लेता है, जहाँ संस्कृति अपने जड़ों से जुड़ी रहती है और जहाँ विकास का अर्थ केवल प्रगति नहीं बल्कि मानवता भी है। जमशेदपुर एक शहर नहीं, एक विचार है, एक सपना है और उस सपने का नाम है मिनी भारत। उद्योग, विज्ञान, खेल, संस्कृति, शिक्षा और पर्यावरण का ये अनूठा सह अस्तित्व पूरे देश के लिए एक महान प्रेरणा है। तरक्की की ऊंचाइयों को छूते हुए भी अपनी माटी को चूमे रखना ही जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान है। इसी जोहार और शुभकामना के साथ कि इस शहर की ऊर्जा पूरे हिंदुस्तान को यूं ही रोशन करती रहे, जोहार जमशेदपुर, जोहार हिंदुस्तान।
2: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। आलेख शाहिद अनवर, वाचन स्वर तासीर शाहिद, प्रस्तुतकर्ता राजीव रंजन तिवारी और संयोजन था राजेश कुमार राय का। जमशेदपुर केंद्र के द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: ये था पंडित कैलाश चंद्र शर्मा द्वारा बजाया गया राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद्र शर्मा अपने कार्यक्रम का समापन राग मिश्र खमाज से कर रहे हैं। मध्य लय रचना दादरा ताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद्र शर्मा कंक्लूड्स हिज फ्लूट रिसाइटल विद राग मिश्र खमाज। मध्य लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू दादरा ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित कैलाश चंद शर्मा का बांसुरी पर बजाया राग मिश्र खमाज। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित विनोद लेले। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय पंडित विनोद लेले। विद दैट वी कंक्लूड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड in the studios of Akashvani Delhi. This program came to you from Delhi station of Akashvani.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारत में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अनुसार दिनभर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गईं। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक

0: नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जन भागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and gusty winds. The India Meteorological Department has said conditions are favorable for its further advance into some parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan during the next 4 days. Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day, while scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Chandigarh during the next 2 to 3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state today, triggering rescue operations and rain-related incidents. The weather office has forecast heavy to very heavy rainfall at many places, with extremely heavy rainfall likely at isolated locations over the next 24 hours. Authorities have advised people to remain alert and avoid venturing into vulnerable areas, as the heavy rain is expected to continue. In Gujarat, IMD has forecast heavy rainfall over the next 7 days. A red alert for extremely heavy rainfall tomorrow has been issued for Nang, Navsari, Valsad, Bhavnagar, Amreli, Gir Somnath and Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli tomorrow. Fishermen have been advised not to venture into the sea for the next 5 days. Meanwhile, Delhi NCR witnessed a sudden change in weather this afternoon, with moderate rainfall lashing several parts of the region, bringing much-needed relief from the humid weather. Union Minister Jyotiraditya Sindhya and Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav today laid the foundations to